मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की चौथी तिथि तदनुसार 26 सितंबर सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है।

0: उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होरमूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05:20 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो आइए करते हैं आराधना कार्यक्रम का आगाज। भक्ति का फल स्वयं भक्ति का आनंद है। किसी

सच्ची भक्ति मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र करती है और जीवन में अच्छे कर्मों को प्रेरणा देती है। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

जागिए हे रघुनाथ, सूर्य भी आपको जगाने के लिए आतुर है। पशु पक्षी चिड़िया सभी जाग गए हैं। हे रघुनंदन, अब तो आंखें खोलिए। श्रोताओं, लीजिए सुनिए पंडित राजन साजन मिश्र के स्वर में गाए इस भक्ति रश्मि।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ, 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में, और श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और भजन से मानसिक शांति मिलती है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में अभी आप अनूप जलोटा के स्वर में गए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे और इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप शरद चंद चट्टोपाध्याय के विचार सुनेंगे।
1: एक बार अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। ये करुण स्वर सुनकर अधिकारी महोदय ठिठक गए। बोले, ये कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरत ने उत्तर दिया, मास्टर मुशाय, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके ये उसको खिलाती थी। कल रात इसका वो स्वामी मर गया। ये बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाय, ये सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वो साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वो निश्चय ही मनस तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। एक बार एक विद्यार्थी ने शरतचंद्र से पूछा, लोग कहते हैं श्रीकांत आपकी जीवनी है, क्या ये सत्य है? शरत हंसे, बोले, तुम क्या कहते हो, हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते हैं। वो फिर गंभीर हो गए। कहा, उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता, उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। विद्यार्थी ने फिर पूछा, आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं, इसका क्या कोई विशेष कारण है? ये सुनकर वे अनमने हो उठे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उदासी से भर उठी। कहीं बहुत दूर से जैसे बोल रहे हों, कहा, नहीं जानता विशेष कारण क्या है। मैं बहुतों को जानता हूं, अपनी आंखों से देखा है। उनमें ऐसी वस्तु है जो बड़ों बड़ों में नहीं है। त्याग, धर्म, दया, माया, प्रेम, मनुष्य में जो कुछ अच्छा है उसका उनमें अभाव नहीं है। भद्रता के मोह में पड़कर इसे अस्वीकार करूं तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला ही है, उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार एक साहित्यिक गोष्ठी में एक बंधु ने पूछा, आपने सतीत्व की प्राचीन धारणा के विरुद्ध एक रिवोल्ट खड़ा कर दिया है, क्यों, ये समझाइए। शरतचंद्र ने उत्तर दिया, मैंने रिवोल्ट खड़ा नहीं किया, ये तो युग का प्रभाव है। कोई धारणा

0: यह वस्तु बहुत प्राचीन काल से चली आई है, इसी कारण वो सही नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। सतीत्व परिपूर्ण मनुष्यता का एक अंग है, वो मनुष्यता पर हावी नहीं हो सकता। कर्तव्य और अधिकार का संबंध ऐसा अविच्छिन्न है कि एक न रहे तो दूसरा निरर्थक हो जाता है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में श्रोताओं, भी आप शरदचंद चट्टोपाध्याय के विचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना से किसानों को लाभ, इस विषय पर प्रीति तिवारी से बातचीत की है सुरेश कुमार ने।
1: किसान भैया बहनी हर इनका खेती किसानी के साथे साथ सरकार की ओर से तरह तरह के लाभ मिलत, जोने लाभ में एक ठो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में बहिनी प्रीति त्रिपाठी कृषि विभाग प्रयागराज से आयन हैं, जौन है कि ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में जो उन किसान भैया बहनी हरिन का लाभ कितना मिले, कैसे मिले, ये विषय के विशेषज्ञ हैं। तो बहिनी, अपने कार्यक्रम में हम आपका आज बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना ई का बा और ये बारे में आप बताएं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना,
1: हाँ हाँ,
2: इसका नाम है पीएम कुसुम,
1: हाँ,
2: यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाभियान के नाम से।
1: अच्छा।
2: यह योजना हमारे यहाँ वर्ष 2020-21 से संचालित है।
1: हाँ।
2: यह केंद्र सरकार की योजना है
1: जी,
2: जिसमें किसानों को फसलों की सिंचाई करने के लिए 60% के अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है।
1: हाँ।
2: यह जो अनुदान की धनराशि 60% की है
1: जी,
2: इसमें 30% हिस्सा केंद्र सरकार का, 30% हिस्सा राज्य सरकार का है
1: जी,
2: और जो शेष 40% का अंश है उसे किसान को कृषक अंश के रूप में देना होता है।
1: अच्छा, जैसे कि बहन जी ये बतावे कि आपन किसान भैया बहनी है कि ये कौन कौन से भैया बहनी पात्रता हैं ऐसे की जिनका लाभ मिल सके, तो इस बारे में बताओ।
2: जी बिल्कुल, देखिए ऐसे किसान भाई जिनके पास जमीन ही
1: हाँ,
2: जमीन
1: हाँ,
2: है, जिनकी स्वयं की खतौनी है, जिसकी खतौनी है उसी को हम किसान मानते हैं।
1: अच्छा।
2: तो सबसे पहले जरूरी यह है कि हमारे जो कृषि विभाग का पोर्टल है www.upagriculture.gov.in पर उस किसान को रजिस्टर्ड होना है।
1: अच्छा।
2: रजिस्टर्ड होने के लिए उसके पास खतौनी एक पहला क्राइटेरिया होता है,
1: हाँ,
2: और पीएम कुसुम की जो योजना है उसके लिए एक दूसरी पात्रता ये जरूरी है कि किसान के पास स्वयं का बोर उपलब्ध होना चाहिए।
1: अच्छा, साथ ही साथ हमारे किसान भैया बहनी हर इनकी बहुत से गांव गिरा में कम जानकार होते हैं कि जिनका भरपूर लाभ नहीं मिल पावत है, तो हमारे किसान भैया बहनी हर इन कहाँ कैसे जानकारी लें, किधर जाएं, यह बारे में आप बताओ।
2: जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ हर विकास खंड में कृषि विभाग के ऑफिस हैं।
1: अच्छा।
2: जिसका नाम है, जिसको सामान्य तौर पर बीज गोदाम का ऑफिस बोल दिया जाता है, और
1: जी,
2: इसका जो नाम है प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार होता
1: हाँ,
2: है। वहाँ पर जाएंगे, कोई भी समुचित उनको जो जानकारी चाहिए इस योजना के विषय में
1: हाँ,
2: या कृषि विभाग की किसी भी योजना के विषय में उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वो उन्हें वहाँ पर उपलब्ध हो सकती है।
1: अच्छा,
2: उसके अलावा फिर हमारा जो जिले का एक मुख्य ऑफिस है जो
1: जी,
2: मुंडेरा मंडी परिसर में कृषि भवन उप कृषि निदेशक कार्यालय के नाम पर है,
1: हाँ,
2: यदि ऐसा लगता है।

0: कि कोई भी किसान भाई बहन विकासखंड के ऑफिस से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं
1: जी
0: या संतुष्ट नहीं हुए हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उनका हमारी कृषि भवन मुंडेरा मंडी परिसर में स्वागत।
1: साथ ही साथ बहन जी, हम आपसे यह जानना चाहते थे कि जैसे कि बहुत से किसान भैया बहनी हर इनके खेती बाड़ी जो उन्हें कौनों के कम है कौनों के ज़्यादा है, तो ऐसे कौन किसान भैया बहनी हर इनका ये सुविधा माने अच्छे तरीके से जल्दी से मिल सके।
0: जी देखिए, जो हमारी आज की योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें तो ऐसे जमीन का कोई निश्चित मापदंड नहीं दिया गया है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: आपके पास इतने एकड़ या इतने हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए।
1: अच्छा
0: लेकिन एक मैं आपको मतलब आधारभूत जानकारी कहूँ
1: जी
0: तो आपके पास जो भी जमीन है,
1: हाँ
0: जितना
1: हाँ
0: भी आपकी खतौनी है, उस सब को मिला के ही आपको कृषि विभाग में अपना पंजीकरण कराना है।
1: अच्छा
0: क्योंकि पंजीकरण एक कॉमन होता है, एक ही बार होता है, लेकिन
1: जी
0: विभाग की जो सारी योजनाएं होती हैं वो उसी पंजीकरण के आधार पर फिर आपको उसका लाभ मिलता है। मैं
1: अच्छा
0: थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि किसान भाई जिनका पंजीकरण तो हो चुका है उन्हें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनके मन में एक सवाल आएगा कि साहब अब हम पंजीकरण कैसे कराएं।
1: जी
0: तो इसका एक बहुत ही मतलब सरल तरीका है, ये पब्लिक डोमेन पर है। पब्लिक डोमेन मतलब आप कहीं से भी अपने मोबाइल से अपने घर पर बैठे किसी भी सीएससी यानी सहज जन सेवा केंद्र से जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
1: अच्छा
0: वहाँ पे आपको जो जरूरी कागजात लगेंगे उसमें बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी ले जानी होगी,
1: हाँ
0: आधार
1: हाँ
0: कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले जानी होगी
1: जी
0: और खतौनी की फ़ोटो कॉपी ले जानी होगी। इतना
1: अच्छा
0: ले जाकर आप उनसे कह दें कि भैया हमारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर दीजिए, वो आपका कर देंगे। बस उसके बाद आपका वो जो पंजीकरण है किसान भाई बहन का,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: हमारे उप कृषि निदेशक कार्यालय की लॉगिन पर आ जाएगा जिसे हम आगे बढ़ा देते हैं और वहीं से ये पंजीकरण मान्य हो जाता है।
1: तो हम आपसे यह जानना चाहते कि जैसे कि किसान भैया बहनी हर इनके जौन हैं तरह तरह की, जैसे कि हॉर्स पावर के जो है यह सुविधा है कि जैसे कि 1 हॉर्स पावर है, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, तो ये तरह तरह के हॉर्स पावर की कैसे की कीमत बा और कैसे कहाँ पर एक जमा करी हैं, कैसे जौन है एक जौन है लाभ मिली, यह बारे में बताएं।
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सरकार की मुख्य मंशा क्या चलती है ना,
1: जी
0: जितनी ज़्यादा पारदर्शिता आ सके।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: पारदर्शिता मुझे लगता है तभी संभव है जब किसान अपना बहुत सारा काम स्वयं के माध्यम से कर सके, अगर
1: हाँ
0: वो पढ़े लिखे और जागरूक हैं। वो
1: जी
0: नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो उनके घर में जो उनके बेटे बच्चियां जो भी पढ़ी लिखी हैं वो ये काम कर सकते हैं।
1: हाँ
0: तो आपको जो हमारे यहाँ सोलर पंप उपलब्ध हैं वो 2 HP से लेके 10 HP तक के सोलर पंप हमारे यहाँ उपलब्ध हैं,
1: अच्छा
0: जिसमें 2 HP में AC/DC, 3 HP में AC/DC,
1: जी
0: 5 HP में AC, 7.5 HP में AC और 10 HP में भी AC का सोलर पंप हमारे यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा
0: थोड़ा इसके विषय में मैं अपने से जानकारी देना चाहूँगी कि
1: जी
0: इसके लिए पात्रता क्या है।
1: हाँ
0: मतलब
1: हाँ
0: जैसे किसान आते हैं और कहते हैं कि हमको 3 HP का सोलर पंप चाहिए,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसके लिए एक निर्धारित है कि किस किसान को ही 3 HP का सोलर पंप मिलेगा,
1: जी
0: या अगर उनको 3 HP का सोलर पंप लेना है तो जैसा मैंने पूर्व में ही बताया है आपको कि आपके यहाँ बोरिंग होना अनिवार्य है। तो
1: अच्छा
0: कैसी बोरिंग होनी चाहिए जिससे आपका सोलर पंप का चयन किया जा सकता है।
1: हाँ
0: यदि आप 2 HP का सोलर पंप लेना चाहते हैं तो
1: जी
0: आपके यहाँ 4 इंच का बोर होना चाहिए और जल स्तर 50 फुट तक उपलब्ध होना चाहिए।
1: अच्छा
0: 50 फुट तक उपलब्ध मतलब कि जैसे जमीन की सतह पर गए, खुदाई किए, अगर 50 फुट पर पानी मिल गया
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वहाँ पे 2 HP का सोलर पंप काम करेगा।
1: अच्छा
0: 3 HP का सोलर पंप चाहे वो AC हो या DC हो के लिए कम से कम 6 इंच का बोर होना चाहिए और जो जल स्तर है वो 150 फुट पर उपलब्ध होना चाहिए। इसी
1: अच्छा
0: प्रकार बिल्कुल यही क्राइटेरिया हमारा, यही निर्धारण 5 HP के सोलर पंप के लिए भी है।
1: जी
0: जब हम 7.5 एवं 10 HP के सोलर पंप को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 8 इंच का बोर होना चाहिए और जो पानी है वह 300 फुट तक पर उपलब्ध होना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी
1: ये तो आप जो उन्हें बहनी जानकारी बहुत अच्छी दीन कि जौन किसान भैया बहनी है ने जय HP की जरूरत हो, 2 HP के, 3 HP के, 4 HP के से लेके जाओ।

0: उन्हें
1: जी
0: 10 HP तक के जो उन्हें सोलर पंप किसान भैया बहनी हरिन लगवा सकत हैं।
1: जी
0: और किसान भैया बहनी हरिन का अपन खेती के सिंचाई बदे भी अपना जो उन्हें भरपूर लाभ ले सकत हैं। जो उन तरह तरह के बिजली के तरह तरह बिल आवत है,
1: जी
0: किसान भैया बहनी हरिन परेशान रहते हैं,
1: जी
0: तो इस बारे में बहन जी आप बहुत अच्छी जानकारी दीं। साथे साथ हम आपसे एक बात और जानना चाहते थे कि और जो उन कुछ बात जैसे कि ध्यान
1: जी
0: जरूरत वाली बात है,
1: जी
0: तो वह बारे में बताओ।
1: जी बिल्कुल। एक बार यदि आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसके लिए कृषक अंश के विषय में बताना चाहूँगी,
0: हाँ,
1: क्योंकि
0: बताइए।
1: कई किसान भाइयों के हमारे पास फोन आते हैं कि कौन सा सोलर पंप कितने रुपए में मिल रहा है।
0: जी।
1: तो जैसे यदि हम 2 HP का सोलर पंप लेना चाहते हैं तो लगभग 64,000 रुपये, 3 HP का लेना चाहते हैं तो लगभग 87,000 रुपये,
0: हाँ
1: 5 HP का लेना चाहते हैं तो लगभग 1,26,000 रुपये,
0: जी
1: 7.5 HP का लेना चाह रहे हैं तो 1,72,000 रुपये, और
0: जी
1: 10 HP का लेना चाह रहे हैं तो 2,86,164 रुपये है। जी
0: अच्छा, यानी कि जय हॉर्स पावर के किसान भैया बहनी पंप इस व्यवस्था लेवा चाहें,
1: जी
0: तो एक तरह तरह के जो उन कीमत बताएं,
1: जी
0: किसान भैया बहनी
1: हाँ
0: हरिन ध्यान से सुनी हैं, गुनी
1: जी
0: हैं और एक लाभ उठाई
1: हाँ
0: हैं। तो बहनी प्रीति त्रिपाठी जी, आप हमारे पंचायती कार्यक्रम किसान कृषि कार्यक्रम में आयन और अपने किसान भैया बहनी हरिन का भरपूर जानकारी दीन।
1: जी
0: ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी किसान भाई सुन रहे थे प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किसानों को लाभ, और इस विषय पर प्रीति तिवारी से बातचीत की सुरेश कुमार ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको वैद्य आशुतोष मालवीय की वार्ता सुनवाएंगे। वार्ता का विषय है बदलते मौसम में त्वचा सुरक्षा के आयुर्वेदिक उपाय।
3: इस बदलते मौसम में त्वचा की रक्षा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आजकल सुबह शाम की ठंडक और दिन में उत्पन्न होने वाली गर्मी के कारण त्वचा शुष्क होने लगती है। क्योंकि मौसम में नमी का भाव होने लगता है, अतः वातावरण की एलर्जी भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे आमतौर से लोगों में शरीर में खुजलाहट होती है, छोटे छोटे महीन महीन दाने निकल आते हैं, चेचक के दाने भी आते हैं और त्वचा में सूखापन होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे मौसम में आहार विहार पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और त्वचा की रक्षा करनी चाहिए। इस मौसम में मिर्च, मसाले, तेल, अचार आदि के आहार से बचना चाहिए, क्योंकि ये तीक्ष्ण आहार पाचन को तो बिगाड़ते ही हैं, अम्लपित्त की शिकायत बढ़ाते हैं एवं त्वचा को कुप्रभावित करते रहते हैं। इन मौसम में प्रतिदिन स्नान से पूर्व जैतून के तेल की हल्की मालिश करने से त्वचा की रक्षा होती रहती है और त्वचा की शुष्कता भी खत्म हो जाती है। हल्दी और चंदन को घिसकर थोड़े दूध की मलाई में मिलाकर चेहरे पर उपटन की तरह लगाना लाभदायक होता है। संभव हो तो हल्दी का उपटन सायंकाल सूर्यास्त के बाद ही लगाना उचित होता है, क्योंकि हल्दी के प्रयोग से सूर्य की किरणें आपको दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल गिलास जल पीना लाभप्रद होता है, साथ ही साथ पूरे दिन में पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इससे शरीर की गर्मी सामान्य बनी रहती है तथा विजातीय द्रव्य निकलते रहते हैं। नियमित आहार में सलाद, फल, अंकुरित अनाज बढ़ा देना चाहिए। मसाले वाले भोजन का सेवन छोड़ देना चाहिए। सूर्य की तेज किरणों से रक्षा करना चाहिए। जो भी सनस्क्रीन आपको सूट करती हो उसको लगा सकते हैं। गुलाब जल में 3 या 4 बूंद ग्लिसरीन को डालकर त्वचा पे लगाने से भी त्वचा की रक्षा होती रहती है। कहीं भी बाहर से घर आकर के चेहरे को और त्वचा को सामान्य जल से धो लेना चाहिए, क्योंकि धूल त्वचा की दुश्मन होती है। एंटीऑक्सीडेंट आहार का प्रयोग अधिक करना चाहिए, जैसे अखरोट, बादाम, संतरा, अंगूर, पपीता, गाजर एवं ताजी हरी सब्जियां लाभप्रद होती हैं। त्वचा के लिए कच्चा दूध अत्यंत लाभदायक होता है। यदि त्वचा आपकी फट रही है तो सिर्फ कच्चे दूध को स्नान से पूर्व पूरे शरीर पर हल्का सा लगाना चाहिए और आधे घंटे के बाद स्नान करने से त्वचा की रक्षा होने लगती है। चेहरे पर उत्पन्न होने वाले दानों पर खीरे का प्रयोग अत्यंत लाभदायक होता है। खीरे को मिक्सी में खूब महीन पीस लें, इसमें थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच दूध डालकर लेप बना लें। सायंकाल इसका लेप 30-40 मिनट तक लगाना चाहिए। इससे चेहरे पर होने वाले दाने तो ठीक हो ही जाते हैं, चेहरे की कांति भी बढ़ने लगती है। यदि चेचक आदि के दाने

0: उत्पन्न हो रहे हों तो नमक का प्रयोग बहुत कम कर देना चाहिए। नीम की पत्ती को कूटकर 2 लीटर पानी में पका लें। आधा पानी शेष रहने पर इसी जल से रुमाल द्वारा पूरे शरीर पे लगाना चाहिए। त्वचा को दानों के दाग पर आलू का रस अत्यंत प्रभावी होता है। आलू को काटकर दाग पर रोज लगाना हितकारी होता है। इसी प्रकार चिरौंजी त्वचा के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। चिरौंजी को पीसकर थोड़े दूध में मिलाकर लगाने से त्वचा की रक्षा होती है, साथ ही साथ त्वचा की कांति भी बढ़ने लगती है। चिरौंजी एक एंटीऑक्सीडेंट होते हुए त्वचा रक्षा करती है और छोटे दाग धब्बों को भी दूर करने लगती है। ग्रीन टी नियमित प्रयोग करना चाहिए, इससे भी आपकी त्वचा की रक्षा होती है। बादाम और अखरोट, ये दोनों विटामिन्स और मिनरल्स से परिपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ इसमें मिलने वाले सारी मिनरल्स और विटामिन्स आपकी त्वचा की रक्षा करते हैं। इनका नियमित प्रयोग आपकी त्वचा को बचाए रखता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप वैद्य आशुतोष मालवीय की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था बदलते मौसम में त्वचा सुरक्षा के आयुर्वेदिक उपाय, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा, रात 10 बजे प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन सुनेंगे और दोपहर 12:15 बजे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन।

नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:45 पर, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है। साथ ही सुबह 9 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गाए गीत और भजन सुनिए। सुबह 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में आपके कलाकार हैं डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव और तीरसलाल और साथी, और दोपहर 2:25 पर हरिश्चंद्र पांडे और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत सुनिएगा। सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से पूर्व न्यायमूर्ति तथा आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व नाट्य कलाकार पालोक बसु से विपिन टंडन की भेंटवार्ता सुनिएगा। एक ही कलाकार कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 11 बजे किया जाएगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिए दिन में 12:30 पर, प्रस्तुति है मधु कुमार की। दोपहर 1:15 पनघट कार्यक्रम में बात एक अच्छी आदत जिंदगी बदल सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना पांडे की बातचीत, ग्रामीण महिलाओं के लिए जरूरी वित्तीय साक्षरता। सुनिए लोकगीत संदीप मां वर्मा से और रसोई घर में कम तेल में स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाएं। शाम 5:15 युववाणी कार्यक्रम में चर्चा युवा और सिनेमा मनोरंजन से सामाजिक बदलाव तक, प्रेरणा पुंज में एलन ट्यूरिंग पर बात। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में चर्चा हर घर जल योजना और जीरो टिलेज से खेती, डॉक्टर सपना श्रीवास्तव से बातचीत कैंसर एक जागरूकता पर। शाम 7:00

31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान सुनिएगा।

ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। अब हम आपको ले चलेंगे दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सञ्जातम् अस्तव्यस्तम् आसन्नां भीषणवृष्टिं विलोक्य प्रशासनपक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवातप्रभावेन राजधान्यां लखनौनगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्व्योत्तरप्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः, विद्युत्पातः, तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीतसुरुचि युग्मेन स्वर्णं, गुलवीरसिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेत्री क्रीडकेभ्यः वर्धापनसन्देशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं शागिर्द फिल्म से, और इस भजन को भी अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

अब जो भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस भजन को हमने लिया है गोपी फिल्म से और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने। राजेंद्र कृष्ण की रचना है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। आनंद लीजिए इस भजन का।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले ही कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बनी रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी नागपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से किया संवाद, कहा सबकी भागीदारी से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया शुभारंभ, कहा कानून व्यवस्था और अनुकूल औद्योगिक नीतियों से प्रदेश में बना निवेश का आकर्षक वातावरण। रेलवे ने भुज से बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को दी मंजूरी, प्रदेश के मथुरा, बरेली और पीलीभीत समेत कई स्टेशनों से गुजरेगी ये ट्रेन। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा के बीच रुक रुक कर हो रही वर्षा, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट, जिला प्रशासन ने दिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षाध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है। तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के

0: पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। श्री शाह ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं, दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहां मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनका उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है।
3: हमने टैलेंट और ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर बनाया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज UPITS इसी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने का एक ऐसा बड़ा मंच बना है जहां उत्तर प्रदेश की लोकल स्ट्रेंथ ग्लोबल मार्केट के सामने अपनी पहचान बना रही है।
1: उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार 90 देशों से 600 से अधिक विदेशी खरीदार पहुंचे हैं। इसमें भागीदार देशों के रूप में जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और बेलारूस शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली यह रेलगाड़ी 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। ये रेलगाड़ी प्रदेश के मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत आदि कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। प्रदेश की समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ODOC के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के विशिष्ट पाक परंपराओं, स्थानीय व्यंजनों, खाद्य उत्पादों और इससे जुड़े उद्यमियों को एक साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बीते 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवा के चलते लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से ही प्रदेश के पूर्वी जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही और रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम के इस बदलाव के कारण कई जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रेड अलर्ट वाले जिलों में स्कूल बंद रखने को कहा है और आकाशीय बिजली तथा अतिवृष्टि से हुई क्षति का तत्काल आकलन कर प्रभावित परिवारों को अतिशीघ्र हर संभव सहायता देने को कहा है। प्रदेश के राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने अधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय रहने और स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर

0: रखने तथा आम जन से संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से किया संवाद, कहा सबकी भागीदारी से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया शुभारंभ, कहा कानून व्यवस्था और अनुकूल औद्योगिक नीतियों से प्रदेश में बना निवेश का आकर्षक वातावरण। रेलवे ने भुज से बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को दी मंजूरी, प्रदेश के मथुरा, बरेली और पीलीभीत समेत कई स्टेशनों से गुजरेगी यह ट्रेन। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा के बीच रुक रुक कर हो रही वर्षा, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट, जिला प्रशासन ने दिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन सुनाएंगे, राग है तोड़ी। और आपके साथ तबले पर संगत किया है संपत लाल ने, सारंगी पर हैं हमीद खान।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन सुन रहे थे। राग था तोड़ी, आपके साथ तबले पर संगत किया संपत लाल ने, सारंगी पर थे हमीद खान। और इसी के साथ

सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बनी रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं।

0: जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु

0: कुलतंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की

0: बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दो दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने खलीज, बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तश्वीश का इजहार किया है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। और डी गोकेश ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के नवे राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 साल के दौरान भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने गांवों के बुनियादी ढांचे में काबिले जिक्र बेहतरी को उजागर किया और कहा कि मुल्क भर की ख्वातीन भी लगातार खुद इन्हिसार और इक्तसादी तौर पर बाख्तियार बन रही हैं। जनाब मोदी ने यह रायजनी सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल वसीले से बात करते हुए की। ये यात्री सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे थे। उन्होंने समाजी खिदमत, समाजी इसलाह और मुस्बत तब्दीली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत को हकीकी शक्ल उसी वक्त दी जा सकती है जब इसमें हरेक का तआवुन और शिरकत हो। जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि वडनगर ने उन्हें ऐसी अकदार अता की हैं जिनसे उनकी जिंदगी को एक शक्ल मिली, जबकि काशी ने नकदार को मुख्तलिफ किस्म के खिदमात के बेशुमार रंग अता किए। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवान इन खिदमात से सफर को और ज्यादा अहम बना रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: यात्रियों ने बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात का इजहार किया। जनाब मोदी ने यात्रियों से जोर देकर कहा कि वो एक डायरी रखें और इसमें यात्रा के अपने तजुर्बात लिखें। उत्तर प्रदेश में मुसलसल जारी शदीद बारिश के सबब कई अजला में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से कई अजला में 12वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत की राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में तूफान की सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता 24 घंटे से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में रखना पड़ा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हादसे भी पेश आए। रियासत के राहत रसानी के काम से मुतालिक कमिश्नर डॉ ऋषिकेश भास्कर यशवंत ने मौसमी सूरत हाल और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने अफसरान को फील्ड में सरगर्म रहने, मकामी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी है। भारतीय महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इसी तरह की मौसमी सूरत हाल आज और कल भी जारी रहेगी। मशरक़ उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में भी 27 सितंबर तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुज़िश्ता दो दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। शदीद बारिश के सबब अंदरूनी अंद्रावती, महानदी और शिवनाथ समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कई शहरों और कस्बों के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वजीर आला विष्णु देवसाई ने सैलाब और पानी भरने की सूरत हाल के तनाजुर में बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टरों को चौकसी बरतने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो पानी की सतह में इजाफे या सैलाब के खतरे की सूरत हाल में लोगों को फौरी तौर पर खबरदार करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। उत्तराखंड में आज और कल मुतअद्दिद मकामात पर शदीद से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने लोगों

0: 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और सुन रहे होंगे अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। मैं आपकी रेडियो हमराह नीलम श्रीवास्तव आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। तो जी श्रोताओं, सुविचारों से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे एक श्रोता सुनना चाहते हैं गोलमाल फिल्म का गीत। ये हमें लिखे हैं कि धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपनी फरमाइश हमें भेजी है। ये चंदूलाल पटवा हैं, श्रीमती सुनीता पटवा हैं, हर्ष कुमार पटवा हैं, विनीत कुमार पटवा हैं, कुमारी क्रिस्टी पटवा हैं। तो भाई श्रोताओं, आपके फरमाइश पूरा करना हमारा फर्ज है और सुविचार भी हम आपको बीच बीच में सुनवाते चलेंगे। सबसे पहले पटवा जी, आपकी फरमाइश।

है और सुविचारों की बात करते हैं तो नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है, विनम्रता का अर्थ समर्पण नहीं है या अपनों से रिश्तों संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली प्रयोग है। क्या बात है नीरा जी। और श्याम बाबू सोनी लिखते हैं कि इनकी एक गुजारिश है कि AIR प्रयागराज के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच श्याम बाबू। और ये कहते हैं कि बीच में जो आप लखनऊ के प्रोग्राम चला देते हैं ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो श्याम जी आपकी ये गुजारिश जो है मैं अपने आला अधिकारियों तक पहुंचा दूंगी और फिर आपकी ये गुजारिश वो यथासंभव पूरी करेंगे। नीरज त्रिपाठी जी का एक और सुविचार हमें प्राप्त हुआ है कि काश जिंदगी में दुख नहीं होता पर तब शायद जिंदगी नहीं होती, काश भावनाओं में जहर नहीं होता पर तब शायद भावनाएं नहीं होती। क्या बात है नीरा जी, आपका सुविचार बहुत ही खूबसूरत है। और ये एक सुविचार और लिखते हैं कि जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल लो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ता बदलता है जड़ नहीं। नीलम जी नमस्कार। तो नीरा जी और हमारे सभी श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस पोस्ट को जिन श्रोताओं ने लाइक किया है उनका नाम है अतुल कुमार गुप्ता, दुर्गेश यादव महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी और नीरा त्रिपाठी जी। तो भाई श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में अपने सुविचार भेजे, इस पोस्ट को लाइक किया, थैंक यू सो मच। और आने वाला पल जाने वाला होता है भाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो भाई आज का विषय आपको बता दूं, उससे पहले

श्रोताओं, आप मुझे ये बताइए कि आपको फिल्में देखना पसंद है या मेरी तरह खाली टाइम में किताबें पढ़ना। आई नो दैट बहुत से लोग बोलेंगे कि मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, और सही भी है कि पर्दे पर बहुत सी रोमांचक घटनाएं दिखाई जाती हैं जो बहुत अच्छा लगता है। तो जी, आप सभी को बता दूं कि आज हम बात करेंगे किताबें बनाम फिल्म पर। ये एक ऐसा विषय है जिस पर दशकों से बहस चली आ रही है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही कहानी कहने के दो सबसे सशक्त माध्यम हैं। जहां किताबें हमारी कल्पनाशीलता को पंख देती हैं, वहीं फिल्में उन कल्पनाओं को पर्दे पर जीवंत कर देती हैं। इन दोनों माध्यमों का अपना अपना आकर्षण, अपनी अपनी खूबी और अपनी सीमाएं हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दूं, किताबें पढ़ने का अनुभव बेहद व्यक्तिगत और गहरा होता है। जब हम कोई उपन्यास या कहानी पढ़ते हैं तो कहानी के किरदारों का चेहरा कैसा होगा, उनका पहनावा कैसा होगा और उनकी पृष्ठभूमि कैसी दिखेगी, यह सब पाठक अपनी कल्पना से तय करता है। दूसरी ओर फिल्में एक विजुअल ऑडियो का माध्यम है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो शब्दों को पढ़ने की बजाय दृश्यों को देखना पसंद करते हैं। एक बेहतरीन फिल्म अपने बैकग्राउंड स्कोर, बेहतरीन अभिनय और शानदार सिनेमेटोग्राफी से चंद सेकंडों में ही दर्शकों को भावुक या रोमांचित कर सकती है। तो भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि रोमांचित कर सकती है, तो एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है और ले चलते हैं आपको संगीत यात्रा पर, और बातें और भी करेंगे किताबें बनाम फिल्म पर। तो आपको सुनवाते हैं ये गीत।

बताऊं, जब एक साथी ऐसा मिल जाए जिसके साथ सुख और दुख बिल्कुल सहनशील हो जाए, मतलब आदत बन जाए उसकी। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं किताबें बनाम फिल्म पे। तो हम आपको बता दें कि फिल्में समय की बचत करती हैं और किताबों को पढ़ने में जो समय लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये समय सीमा कम कर देती हैं फिल्में। तो भाई हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हिंदी में देवदास, थ्री इडियट जैसी कालजयी कृतियों पर जब फिल्में बनी तो पाठकों का कहना ये था कि फिल्में उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितनी किताबों को पढ़ने पर लगता था। यानी भाई देखिए, ये पाठक अपनी कल्पनाशीलता की बात कर रहे थे और जब बात होती है निर्देशक की और डायरेक्टर की तो उनकी एक अपनी सीमाएं होती हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों को काट छाट करके वो फिल्में बनाते हैं। तो एक बात यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है श्रोताओं की, किताबें और फिल्में एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। किताबें जहाँ हमारी आत्मा और सोचने की क्षमता को समृद्ध करती हैं, वहीं फिल्में हमें एक जादुई दृश्य यात्रा पर ले जाती हैं। किसी कहानी का असली आनंद तब आता है जब उसे पढ़ा भी जाए और फिर पर्दे पर बदलते भी देखा जाए। यानी यूं कहा जाए कि किताबें हैं तो फिल्में हैं और फिल्में हैं तो एक अच्छी और बेहतरीन किताब है। और अब आपको ले चलते हैं एक छोटे से संगीत यात्रा पर।

वही श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।

0: आज बस इतना ही, कल फिर मिलने के वादे के साथ आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आपसे कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहती है। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। और अब चलते चलते हंसते और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर

0: में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि अपनी धुन और शब्दों के साथ सीधे दिल तक पहुँचते हैं। कभी कोई गीत प्रेम की खूबसूरत अनुभूति कराता है तो कभी किसी की यादों में ले जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज का अपना पहला गीत, फिल्म कॉलेज गर्ल से आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अगला गीत है फिल्म वीर ज़ारा से आवाज उदित नारायण की, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत मदन मोहन का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म मैं हूं ना से, आवाज़ है सोनू निगम की, बोल जावेद अख्तर के और संगीत

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म मैं हूं ना से, आवाज़ है सोनू निगम की, बोल जावेद अख्तर के और संगीत अनु मलिक।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: के कार्यकारी अधिकारी के रूप में एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने 21 सितंबर को आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इसे अहम बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या में भाजपा के सेवा संकल्प माह की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के पाटेश्वरी देवी मंदिर परिसर में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे महीने स्वच्छता, वृक्षारोपण और जन कल्याण से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। उधर भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत अयोध्या की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में नमो सेवा अनकही कहानियां नाट्य मंचन किया गया। नाटक के जरिए गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा को प्रस्तुत किया गया। आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक राज्य भर में अभियान के तहत 100 नाट्य मंचन कराने का लक्ष्य रखा गया था। बीते दिनों अयोध्या आए श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने रामकथा संग्रहालय को लेकर बताया कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और अब अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निर्माण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से संग्रहालय की 20 गैलरियों के लिए टेंडर जारी होंगे और अक्टूबर के अंत तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि गैलरियों में 3D समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। साथ ही 5,00,000 रुपये सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर, साड़ी के लिए 500 रुपये अतिरिक्त और स्मार्टफोन देने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए टेक होम राशन के प्लांट महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किए हैं और स्मार्टफोन से रियल टाइम डाटा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को प्रतिवर्ष उनको और उनके परिवार को 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की कवर उपलब्ध करवाने को लेकर उनको वर्ष में जो 2.5 उपलब्ध होती थी उसकी संख्या को बढ़ाने को लेकर और साथ ही साथ स्मार्टफोन की सुविधा से आच्छादित अब हमारे आंगनबाड़ी हो चुके हैं।
0: 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात ने रामकथा पार्क और राम की पैड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने दीपोत्सव स्थल, दर्शक दीर्घा, सरयू आरती घाट, मुख्य मंच और दीप प्रज्वलन वाले घाटों की व्यवस्थाएं भी देखी और कमियों को समय रहते दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार दीपोत्सव का और विस्तार किया जाएगा और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाकर इसे जन भागीदारी का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। अमृत अभिजात बताते हैं कि
2: सबसे बड़ा फंक्शन ये दीपोत्सव के नाम पे ही होता है और बहुत ही भव्य छटा देखने को मिलती है। उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोग आए हैं क्योंकि काफी घाटों पे भी कार्य हो रहा है, सभी विभागीय अधिकारी साथ में मौजूद है, सब लोग अपने अपने कार्यों को हम लोग मुआयना कर रहे हैं और जिस प्रकार से तैयारी होनी है।
0: अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के रीजनल हब की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मिल्कीपुर तहसील के पूरे लालखां गांव में करीब 26 हेक्टेयर भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में मंजूरी दी है। वहीं कैंट क्षेत्र के मीरन घाट में 8 एकड़ भूमि NSG सेंटर के लिए पहले ही दी जा चुकी है। ग्राम प्रधान प्रदीप यादव क्षेत्र की जनता ने इस फैसले पर खुशी जताई है। जिलाधिकारी अयोध्या शशांक त्रिपाठी ने इसके बारे में जानकारी साझा की।
3: सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जनपद है और यहाँ पर राम जन्म मंदिर भी है तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बड़ी चाक चौबंद होनी चाहिए। इसी दृष्टिगत यहाँ पर चूंकि NSG का भी एक हब स्थापित किया जाना था तो उसके लिए भूमि की खोज चल रही थी, तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही NSG हब की स्थापना का कार्य यहाँ पर चालू हो जाएगा।
0: अयोध्या के पूरा बाजार स्थित भगवान बख्श सिंह महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें 78 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे। हाई स्कूल से लेकर बीटेक तक की योग्यता वाले युवाओं ने विभिन्न पदों के लिए स्क्रीनिंग और साक्षात्कार में हिस्सा लिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि एक ही जगह पर कई कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलने से नौकरी की तलाश आसान हुई।
4: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
5: गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में उत्कर्ष नारी सम्मान युवा स्वाभिमान एवं प्रेरणा विमर्श 2026 कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केशव संवाद और प्रेरणा विचार पत्रिकाओं का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने प्रेरणा विमर्श के आयोजकों और पदाधिकारियों का अभिनंदन

0: करते हुए कहा कि यह आयोजन भारतीय सनातन चेतना, ऋषि परंपरा और समाज से जुड़े ज्वलंत विषयों पर सार्थक संवाद को आगे बढ़ाने का अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सम्मान और गरिमा का स्थान प्राप्त रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारीबाई और वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर 3 महिला PSC बटालियनों का गठन किया जा रहा है। UP ट्रैक्स 2026 के कर्टन रीजन एवं रोड शो कार्यक्रम का आयोजन नोएडा में हुआ, जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 8 समूह बनाए थे। इन समूहों में मंत्री और अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर निवेशकों से संपर्क किया। मंत्री ने कहा कि दुबई में भी लगातार 4 दिनों तक निवेशकों के बीच रहकर उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को बताया गया। वहां करीब 23,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए। इसके बाद निवेशकों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया और कई परियोजनाओं में निवेश शुरू हुआ। फ्रेंड्स, आप यूपी की तरफ से नोएडा में आयोजित यूपी डायलॉग चैप्टर 3 में 150 से अधिक युवा स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यूपी डायलॉग का उद्देश्य युवाओं को उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक के दौरान हुए परिवर्तन, विकास कार्यों और नए अवसरों से जोड़ना तथा विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद का मंच उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर यूपी डिकोड के तहत राज्य की विकास यात्रा, नीति निर्माण और बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर लेखक और राजनीतिक विश्लेषक संतन गुप्ता ने कहा कि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश ने जिस गति से विकास और सुशासन का मॉडल स्थापित किया है, वह आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से शारदा यूनिवर्सिटी में फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक के नवीकरण कक्ष का उदाहरण राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान व गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और सुलभ न्याय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि पारिवारिक विवाद अक्सर महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक एक सफल पहल है, क्योंकि यह कानून लागू करने वालों, कानूनी पेशेवरों, मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों को एक ही छत के नीचे लाता है। इस सेंटर के माध्यम से बहुत सारे परिवारों को टूटने से बचाया गया है। इसके सफलता का प्रतिशत 90% से अधिक है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग गौतम बुद्ध नगर की जमीनी कार्रवाई ने जिले में बदलाव की एक उल्लेखनीय कहानी लिखी है। पिछले एक वर्ष में 18,364 बच्चे कुपोषण की श्रेणी से निकलकर सामान्य श्रेणी में पहुँच चुके हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि 18,364 बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और हजारों परिवारों के चेहरे पर आई एक राहत की कहानी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने परिवारों से निरंतर संवाद करते हुए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए उन्हें जागरूक किया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवा योजन विभाग गौतम बुद्ध नगर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में पिंक रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। पिंक रोजगार मेले में कुल 17 प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रतिभाग किया एवं 300 से अधिक ऑनलाइन एवं 186 ऑफलाइन कुल 486 छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया, जिसमें 263 छात्राओं को साक्षात्कार के उपरांत चयनित किया गया। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि यह एक अनूठी पहल है। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक विकास में अहम भागीदारी निभाने वाले अप्रवासी श्रमिकों को बेहतर जीवन शैली देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 3 अहम फैसले लिए हैं। शासन के निर्देश पर प्राधिकरण बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा में श्रमिक आवास, लेबर हॉस्टल और सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर नोएडा में ये तीनों ही परियोजनाएं अब मूर्त रूप में आ सकेंगी। सभी औपचारिकता पूरी कर इस साल के अंत तक निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की खबरें। हम
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सच के करीब।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: शुरू है बनामे खुदाए ताला कि जो मेहरबा है बहुत रहम वाला। सामीन अदब, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर आपकी मेजबान रबाब अंजुम रामपुर रेडियो मरकज से आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब सुबह कबूल करें। समीन, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब में जहां बहुत सारी रिवायात और खसूसियात हैं, उन्हीं में एक समाज की सबसे छोटी इकाई खानदान भी है, जहां गुज़िश्ता कई दहाइयों से

0: यूरोपीय ममालिक में खानदानी निजाम दरहम बरहम हो गया है, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत सी जगह पर तो मादर पिदर आजाद समाज का रिवाज जोर पकड़ने लगा है। वहीं आज भी हमारे मुल्क में खानदान की अहमियत और इफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। भले से आज बड़ी हवेलियां छोटे घरों में रहने लगी, बड़ी हवेलियां छोटे घरों में रहने लगी, अलग अलग हुए चूल्हे, बिखर गया पानी, जरूरत और हालात के तहत मुश्तरका खानदानी निजाम का चलन कम होता जा रहा है। फिर भी मुख्तसर खानदान और उसके अलावा खानदानी रिश्तों, घर के बड़ों का अदब, उनका एहतराम आज भी हमारे वतन अजीज में अहमियत का हामिल है और उसे बनाए रखने के लिए हमारा समाज भी पूरी तरह कोशा है। आज के इस भागते दौड़ते दौर में डिप्रेशन के शिकार इंसान में सब्र बर्दाश्त की कमी उसे कभी कभी उस मोड़ पर ले जाती है कि जब वो जज्बात की रौ में बहक कर अपने ही घर को तोड़ने के दरपे हो जाता है। ऐसे में शहरों में बने फैमिली कोर्ट उन घरों को जोड़ने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं।
1: तो इसी की अहमियत को उजागर करते हुए आपको सुनवाते हैं अपने स्टूडियो में मुनक़िद एक नशेशुदा गुफ्तगु,
0: जिसका मौजू है सुलह में पहलकर्ता फैमिली कोर्ट। और इस मौजू पर गुफ्तगु करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदु किया है ऐसी शख्सियात को जो समाज से कई तरह बराह रास्त जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफी जनाब फजल शाह फजल और साबिक लेक्चरर डॉक्टर शहनाज रहमान। आप दोनों हजरात पुलिस मीडिएशन के मेंबर्स रह चुके हैं और नामालूम कितने घरों को टूटने से बचा चुके हैं। तो आइए समाप्त करते हैं इन दोनों के माबैन ये गुफ्तगु, जिसका मौजू है सुलह में पहलकर्ता फैमिली कोर्ट।
2: आज का जो माहौल है उसमें बदनज़मी या कुव्वते बर्दाश्त न होने का सबब यह है कि घरों में रोज नाइतफाकियां होती हैं। बहू सास से लड़ती है, सास बहू से लड़ती है, देवरानी जिठानी से लड़ती है, नंद भावई से लड़ती है, देवर भाभी से लड़ता है। इस तरह के रोजाना वाकयात होते रहते हैं। इन वाकयात को कभी कभी इतनी तकवीत मिलती है कि थानों में और अदालतों तक में पहुंच जाते हैं। हुकूमत ने मुकदमात का अंबार कम करने के लिए और अदालतों और पुलिस के दरमियान चक्कर लगाने के रोकने के लिए पुलिस कप्तान ने एक परिवार परामर्श समिति का गठन किया था, जिसके मैं और डॉक्टर शहनाज साहिबा मेंबर भी रहे हैं। वहां हर हफ्ते एक काउंसलिंग होती थी जिसमें तमाम मामले आते थे और बहुत मामूली वाकयात पर घर में तनाजात पैदा हो जाते थे और इतने हो जाते थे कि तलाक की नौबत तक आ जाती थी। इन मामलात को निपटाने के लिए ही हमने 5 साल तक बहुत से उजड़ते घरों को बसाया, बहुत से जुल्म करने वाले शोहरों को जेल भिजवाया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन मामलात को कैसे खत्म किया जाए। बताइए शहनाज साहिबा।
3: फजल भाई, छोटी छोटी बातें जिनका कोई भी वजूद नहीं होता है, यानी घर में ही बैठकर वो तय हो सकती हैं, इतनी तूल पकड़ लेती थी वो बातें कि हमें समझाना पड़ता था कि देखो इतनी छोटी सी बात है। लेकिन वो कई कई बार उनकी डेट भी देते थे, उन्हें समझाते थे, बुलाते थे, लेकिन फिर भी नहीं मानने को तैयार होते थे। तो फजल भाई, कैसे हम लड़कियों को समझाते थे, कितने प्यार से समझाते थे कि देखो भाई शादी एक ही बार होती है, सास को तुम अपनी माँ समझ लो, ऐसी शिकायतें मत करो, अपने घर को घर समझो। और देखो जिस घर में सुकून होता है, सास और बहुएं एक होती हैं, तो उस घर में बरकत भी होती है, इस हिसाब से भी समझाते थे। और वैसे भी कि भाई अगर नंद है, अगर उसने कुछ कह दिया वाइट करो, बहन है, बहनें भी तो कभी कभी आपस में लड़ जाती हैं, तो उन्हें ऐसा छोड़ा नहीं जाता है। तो फजल भाई, कितना हम लोग समझाते थे, कितना वक्त देते थे उनको समझाने में कि देखो बहुत प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो, यही जिंदगी अच्छी जिंदगी।

0: है,
1: लेकिन इन मामलात को वो समझ जाती थी, मान भी जाती थी,
0: मानती भी थी,
1: लेकिन उनको जो दूसरे लोग थे जो शर पैदा करने वाले थे वो उनको वरगला देते थे
0: जी जी
1: कि नहीं मत मानना, तुम मुकदमा कर दो
0: जी,
1: तुम उसके खिलाफ अदालत में चले जाओ
0: जी।
1: ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि आपस में बैठ के पंचायत करो, घर में, बाहर भी मत जाओ।
0: सही है,
1: लेकिन अगर बाहर जा रही हो तो फिर उसमें परिवार परामर्श समिति में आओ
0: जी,
1: वहां सुनी जाएगी।
0: हम लोग बिल्कुल कितने प्यार से उन लोग की बात सुनते थे।
1: हालांकि हुकूमत ने इसके अलावा भी रखा है, जब हम उनसे गुफ्तगू करते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे, उसके बाद हम कार्रवाई कर दिया करते थे उस मुकदमे के लिए, वो मुकदमा तब तक दर्ज नहीं होता था जब तक वह फैमिली कोर्ट में न चला जाए
0: जी।
1: फिर उसके बाद जज साहब कोशिश करते थे उसके लिए तो वो तय हो जाए, नहीं होता था तो फिर आखिरकार यही होता था। इसके लिए आप बताइए कि क्या होना चाहिए, किस तरह से लोगों को मुतमईन किया जा सके, और खास तौर से खवातीन को वो ज्यादा शिद्दत पसंद होती हैं।
0: फसल भाई, इसमें हकीकत तो ये है कि मैं तो ये कहती हूँ बजाय इसके हफ्ते में एक दिन खवातीन के लिए तो एक एक मीटिंग करना चाहिए, जहाँ ऐसी लड़कियां जिनके घरों में थोड़ी सी भी टेंशन होती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: उसमें मीडिएटर बने
1: जी,
0: और कहें कि भाई चलो उस जगह चल के बात सुनते हैं, और उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जिनकी शादी को एक एक साल छह छह महीने होते हैं, और बेचारी इतनी, बेचारी तो नहीं कहूंगी, किसी के बरगलाने में इतनी आगे आ जाती हैं कि अपने घर को घर नहीं समझती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अब शादी ब्याहों में थोड़ी सी जो सास लेवल की औरतें होती हैं उनको भी प्यार से समझाया जाए कि देखो भाई, ताकि ये जो मुकदमे हैं ये कहीं जाएं ही नहीं, आपस में ही मिलके बैठ के सुलझ जाएं। उन माओं को भी समझाना चाहिए, उन लड़कों को समझाना चाहिए, उन लड़कियों को समझाना चाहिए कि देखो भाई, ये एक सामाजिक रिश्ता है, इसे सामाजिक रिश्ता ही समझाओ, बेइज्जती से कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि देखिए वहां जितने भी लोग आते हैं वो देखते हैं एक दूसरे को, अरे इनके घर में ऐसा हो रहा है, जो मजे लेने वाले होते हैं वो मजे लेते हैं, बरगलाते हैं और आगे पहुंचाते हैं, तो वो लड़कियां बेचारी कोर्ट के चक्कर लगाती हैं फिर।
1: मेरी एक राय ये है
0: जी,
1: इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए
0: जी
1: हमें हर मोहल्ले में एक कमेटी कायम करना चाहिए
0: जी,
1: जो हर हफ्ते कोई न कोई मीटिंग करे खातीन के साथ
0: जी,
1: और उनको समझाए, चाहे वो झगड़ा उनके यहाँ होता हो या न होता हो, लेकिन वो बैठकर समझाएं ताकि वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और इस तरह के कोई वाकये हों तो वो उनको रोकें।
0: ये वाकई आपकी बात समझ में आ रही है कि एक ऐसी मीटिंग हो जिसमें जाकर समझाया जा सके बच्चियों को।
1: इस वक्त जो समाज में बुराई फैली हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तहजीब का न होना। पहले बुजुर्ग औरतें लड़कियों के साथ बैठकर तहजीब सिखाती थी, उन्हें मशवरे देती थी किस तरह से तुम्हें शौहर के घर जाकर अपना जिम्मेदारी संभालना है, किस तरह से उनको खानदान को लेकर चलना है। अब वो तहजीब बिल्कुल खत्म हो गई
0: जी,
1: अब वो दम तोड़ती जा रही है। थानों और अदालतों से मुकदमात का अंबार कम करने के लिए एक समिति बनाए रखी है। उस समिति के लिए अगर कोई औरत, चाहे वो सास हो, बहू हो, बेटी हो, वो परेशान है घर के माहौल से या आपस में लड़ाई झगड़ों से, खाना जंगी से, तो वो एक दरख्वास्त एसपी को दे सकते। एसपी उस दरख्वास्त को परिवार परामर्श समिति को भेजते हैं, जहां पर उनकी तीन काउंसलिंग होती हैं। तीन काउंसलिंग में वो अपना पूरा मामला रखती हैं, शौहर और बीवी को सामने बिठाकर काउंसलर उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनकी शिकायत पूछते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उनको तीन मर्तबा बुलाया जाता है, और जब वो मामला तय नहीं हो पाता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, या तो मामले को खारिज कर दिया जाता है या फिर वो उसमें एफआईआर दर्ज कर दी जाती है।

0: जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो थाने को जाती है, थाने में एफआईआर तो लिख दी जाती है, लेकिन कार्रवाई उस पर उस वक्त तक नहीं होती है जब तक वो फैमिली कोर्ट में मामले को न रखा जाए।
1: जी
0: वो फैमिली कोर्ट जाता है, वहां एक जज साहब मुकर्रर होते हैं, वो फिर बुला के तीन काउंसलिंग करते हैं, और तीन काउंसलिंग करने के बाद अगर उसमें फिर भी तय नहीं होता है तो वो फिर कार्रवाई करने के ऑर्डर कर देते हैं।
1: हाँ फजल भाई, एफआईआर के बाद तो मेरे उससे तो किसी भी तरह से लड़की को या लड़के को बताया नहीं जाता है। जो अगर लड़की बहुत ज्यादा ही परेशान होती है, उसके लड़के के, उसके हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर हो जाती है।
0: जो ज्यादती करता है बहुत,
1: जो बहुत ज्यादती करता है। जज साहब का भी कहना यही होता है, फैमिली कोर्ट में समझाने का तरीका यही होता है कि किसी भी तरीके से पूरी कोशिश तो यही करते हैं कि ये दोनों लोग आपस में सुलह समझौता कर लें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके खिलाफ आखिरी मौका यही होता है।
0: लेकिन होती है समझौते, करार भी दिए जाते हैं, हो
1: लेकिन
0: भी जाते हैं।
1: बहुत ज्यादा तेजी दिखाते हैं जो लड़के, उनके खिलाफ फिर एफआईआर भी की जाती है और उन्हें समझाया भी जाता है।
0: पहली काउंसलिंग में तो लड़की बेइंतहा गुस्से में होती है
1: जी,
0: कोई बात मानने को तैयार नहीं होती है, इसीलिए उसको दूसरा मौका दिया जाता है कि वो शायद उसका गुस्सा कम हो जाए, नरम पड़ जाए, और तीसरे में वो तैयार भी हो जाती है।
1: लेकिन लड़की को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाता है। अगर हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का उसका कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है कि इसको कोई परेशानी हो, या ये धमकाने में आए, या किसी भी तरीके से उसका कुछ भी बुरा हो। उसका केस बाकायदा लड़ा जाता है, जैसे भी होता है। अब आखिर में आके चाहे वो समझौता करे या ना करे, लेकिन मुकदमा करना उसका हक हो जाता है, और उसके हक को फैमिली कोर्ट के जरिए दिया जाता है, उसकी हक तलफी नहीं होती है।
0: हम दोनों काउंसलर रह चुके हैं और हमारा मशवरा यही है कि सब्र से काम लिया जाए, आपस के ताल्लुकात रखे जाएं और घर का माहौल खराब न होने दिया जाए। लड़कियां या औरतें इस बात को तूल न दें, और ये ज्यादा बेहतर यही है कि मामले को घर पे ही तय कर लिया जाए, अदालत या थाने तक न पहुंचा जाए, यही हमारा मशवरा।
1: और फैमिली कोर्ट में भी यही कोशिश की जाती है, हालांकि वहीं से यह है कि फैमिली कोर्ट ही शुरुआत करती है आपस में सुलह और समझौता करने की।
2: सुने में पहल करता फैमिली कोर्ट। अभी इस मौजू पर आपने गुफ्तगु समाप्त की। गुफ्तगु कर रहे थे जनाब फजल शाह फजल और डॉक्टर शहनाज रहमान। और सामिन, आइए अब फिजाए महफिल को तब्दील किया जाए और चलें शायरी की दुनिया में। आपको सुनवाते हैं अपने आर्काइव्स में महफूज हसीब सोस का नशशुदा कलाम। समाप्त कीजिए उनका संजीदा कलाम।
3: देखिए, बतला हाजिर करता हूं कि कभी तो जहन में इतना बवाल होता है, कभी तो जहन में इतना बवाल होता है कि एक सांस भी लेना महाल होता है, कि एक सांस भी लेना महाल होता है, और तेरी तरह हमें इज्जत तो मिल नहीं सकती, तेरी तरह हमें इज्जत तो मिल नहीं सकती, हम उतना खाते हैं जितना हलाल होता है, तेरी तरह हमें इज्जत तो मिल नहीं सकती, हम उतना खाते हैं जितना हलाल होता है, और हमारे गांव में मकड़ी के जाले होते हैं, हमारे गांव में मकड़ी के जाले होते हैं, तुम्हारे शहर में माया का जाल होता है। अब एक तेरी बुराई का क्या बुरा माने, अब एक तेरी बुराई का क्या बुरा माने, गरीबे शहर का अक्सर ये हाल होता है। एक गजल के चल चेहरा मुलादा करें, मतलब यूं कहा है कि कांच के टुकड़ों को मुट्ठी में दबाता कौन है, कांच के टुकड़ों को मुट्ठी में दबाता कौन है,

0: जिंदगी तू ही बता तुझको निभाता कौन है। और हम भी गैरतमंद थे, मजबूरियां कुछ भी करें। इतनी आसानी से सरवरना झुकाता कौन है। और कह कहे मुलाजा कीजिए शेर खास तौर से, कह कहे बिकने लगे हैं आजकल बाजार में, रोज अपने आंसुओं में अब नहाता कौन है। और शेर हाजिर करता हूं कि आप ही मुजरिम नहीं, मैं भी इसी चक्कर में हूं। सर बचा लेते हैं सब, पगड़ी बचाता कौन है। और आपकी जर्रा नवाजी आपने पूछा हमें, जेब खाली हो तो फिर खातर में लाता कौन है। एक गजल के चंचल और मजा कर लें, अर्ज किया है कि डायरी में कोई तारीख लिखा देता है, डायरी में कोई तारीख लिखा देता है और कुछ रोज मेरी उम्र बढ़ा देता है। और ये तेरा शहर तो सीमेंट का जंगल है, यहां धूप तो धूप है साया भी जला देता है, धूप तो धूप है साया भी जला देता है। और शेर मुलाजा करे कि मैंने ये सोच के ठुकरा दी नवाजिश उसकी, रिस्क पत्थर में भी कीड़ों को खुदा देता है। और शेर हाजिर करता हूं कि एक माइल दिन में बनाता हूं मैं जैसे तैसे, एक एक ईंट कोई शब को गिरा देता है। अशर मुलाजा कीजिए कि ये अगर इश्क नहीं है तो बताओ क्या है, दिल में कांटा सा खटकता है मजा देता है। एक और गजल के चंद शेर मुलाजा कर लीजिए, मतलब यूं है कि आंख पागल है जो हर बात पे रो देती है, ये मुरव्वत भी मियां आबरू खो देती है। और शेर सुनिए हजरत कि मेरी भीगी हुई आंखों पे कोई तंज न कर, तेज बारिश हो तो छतरी भी भिगो देती है, और सिर्फ दरिया के थपेड़ों से पनाहे मत मांग, खाके सहरा भी कभी शहर डुबो देती है। और ये शेर के आपका जिक्र नहीं सैकड़ों दामन है गवाह, ये जो दौलत है ये हर दाग को धो देती है। और ये आखिरी शेर कि मौत एक रोज बस एक रोज अजियत देगी, जिंदगी रोज मगर कांटा चुभो देती है, जिंदगी रोज मगर कांटा चुभो देती है। एक गजल के दो तीन शेर और हाजिर करता हूं, मैंने लगा लीजिए। अर्ज किया कि मेरा लहजा अगर थोड़ा सा कड़वा हो गया होता, वो इतने तैश में था रात झगड़ा हो गया होता, और तेरी महफिल में इतने मोहतरम लोगों की शिरकत थी, मैं कुछ पर लाओ रुक जाता तो गूंगा हो गया होता। ये शेर भी सुने खास तौर से, किसी के साथ हमने वो भी दिन बर्बाद कर डाले कि जब मिट्टी उठा लेते तो सोना हो गया होता, और मोहब्बत अपने हिस्से में न आई थी न आई है, किसी दिन ख्वाब में ही ख्वाब पूरा हो गया होता। और ये आखिरी शेर कि ये तन्हा रात तो मेरी किसी दिन जान ले लेगी, अगर तुम साथ आ जाते सवेरा हो गया होता। शुक्रिया बहुत बहुत।
1: ये थे जनाब हसीब सोस, जो अपने खूबसूरत कलाम से अपने मुनफरिद अंदाज में हम सबको महसूस कर रहे थे। और उनके इस कलाम के साथ ही मेजबान महफिल रवाब अंजुम को रामपुर मरकज पर तैयार आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दें। अलविदा।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या

0: दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गाया ये भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गाया ये गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित

0: करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा शांति, गरिमा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया है। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक अपने नाम किया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर काबिज है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05:16 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अनुराधा श्रीवास्तव और तेरस लाल और साथी। आप इनके स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा श्रीवास्तव के स्वर में गाया ये देवी गीत।

अब सुनिए तेरसलाल और साथी का गंगा गीत।

0: इसी गीत के साथ हमारा लोकमात्री कार्यक्रम यही समाप्त होता है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। पूर्व न्यायमूर्ति तथा आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व नाट्य कलाकार पालोक बसु से विपिन टंडन की भेंट वार्ता।
1: पालोक जी नमस्कार।
2: नमस्कार विपिनदा,
1: आपको आकाशवाणी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी आपको भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है।
1: पालोक जी, आप हमें और हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि आपने आकाशवाणी से कब से जुड़े आप और नाता जोड़ा और कब से और क्या क्या फिर आपको इस नाटक
2: वैसे तो
1: अनुभव प्राप्त हुआ।
2: विपिनदा, आप स्वयं इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से, आज भी जुड़े हुए हैं, तो आप स्वयं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर मैं अपनी बात जरूर इतना कहना चाहूंगा कि शायद जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 1951-52 की बात थी।
1: अच्छा।
2: तो यहाँ चिल्ड्रंस प्रोग्राम, बच्चों का कार्यक्रम हुआ करता था, बाल वाटिका नाम से इलाहाबाद में होता था, जो बाल संघ के नाम से लखनऊ में होता था, फिर वो एक ही तरह से प्रोग्राम होने लगा, यही का प्रोग्राम वहां भी होता था, वहां का प्रोग्राम यहाँ होता था, बहुत से उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते थे उस जमाने में, लोग परीक्षाएं इधर से उधर करते रहते थे। तो हमने 1952 में जो यहाँ पर श्री नरेश मेहता जी उस जमाने में आकाशवाणी में पेक्स के रूप में थे,
1: हाँ।
2: आज वही नरेश मेहता जी की मैं बात कर रहा हूँ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पा चुके हैं,
1: हाँ।
2: तो उस जमाने में वो बिल्कुल इंग्लिश ड्रेस में रहा करते थे और टाई बो के बगैर वो चलते नहीं थे,
1: हाँ।
2: तो सिगार पीते थे जी, हाँ, सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे। बहरहाल उन्होंने 5 रुपए का मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था और हमारे गुरु जो आकाशवाणी में है वो श्री विजय बोस

0: हैं जो बड़े भैया का, बड़े भैया का रोल उसमें रोल करते थे, रोल तो नहीं है, बड़े भैया का ही चरित्र हमेशा, आज भी हम लोग उनको बड़े भैया ही कहते हैं। तो जितने लोग यहाँ से हमसे आपसे जुड़े हुए हैं वो सभी उनको बड़े भैया के रूप में ही कहते हैं।
1: हाँ, तो फिर उसके बाद वो आपको 5 रुपया मिला उसका आनंद आपने कैसे उठाया?
0: तो हमारे ताऊ जी जो हमको यहाँ लेकर आते थे तो उन्होंने एक आइसक्रीम पार्टी की थी। अच्छा। और वो 5 रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए शायद 500 रुपए खर्च किए थे। और उस जमाने में ड्यूटी ऑफिसर हुआ करते थे श्री मुनीर आलम जी।
1: हाँ हाँ।
0: और गोपाल कौल साहब और नर्मदेश्वर जी यहाँ पर अनाउंसर वगैरह थे। तो ये देखिए पुराने लोगों की बात इतनी ताजा है, क्यों?
1: हाँ।
0: क्योंकि हम एक छोटे बच्चे थे, 9-10 साल के बच्चे थे। इतना प्यार, इतना अफेक्शन इन लोगों से मिला था कि आकाशवाणी आने की एक उत्कंठा सी होती थी, इच्छा सी होती थी कि हाँ भाई जरूर जाए, जरूर पहुंचे।
1: अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये नाटकों में, जब आप बच्चों के प्रोग्राम के अतिरिक्त जब आप नाटकों में भाग लेने लगे, कब से आपने इसमें प्रवेश किया?
0: तो उसमें ऐसा हुआ कि एक ऑडिशन हुआ करता था उस जमाने में, जो बच्चों के प्रोग्राम से बड़े आर्टिस्ट के रूप में जाएंगे तो उनके लिए एक ऑडिशन होता था। तो एक जमाने में जब शायद विनोद रस्तोगी जी उस समय आ चुके, 60-60 की बात है शायद, या और पहले की बात है, थोड़ी सी और पहले की बात है। हाँ, तो मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट में उससे पहले जाता था और कई नाटक स्कूल ब्रॉडकास्ट में भी हो जाया करते थे उस जमाने में, मगर रियल ओपनिंग जो बड़े आर्टिस्ट के रूप में या बड़े रोल्स में कोई अभिनय करने का मौका मिले वो विनोद रस्तोगी जी ने हमको दिया।
1: अच्छा।
0: और देविंदा, आपसे क्या छुपी है बातें, आप तो जानते हैं कि गिरजा कुमार माथुर जी जो यहाँ पे आकाशवाणी में यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर केंद्र निदेशक थे, उन्होंने 2 प्लेस किए थे। 2 प्लेस के बारे में हमें आज तक याद है। तो थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी बात उसकी बताना चाहूंगा, कितनी किस कदर लगन के साथ हम लोग करते थे। उसमें तो रोटी और कमल का फूल उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी, जो नेशनल प्रोग्राम में भी ब्रॉडकास्ट हुआ था
1: बाद में
0: ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसमें आप मुख्य अभिनय कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि एक उसमें एक सीन था जहां वो इंग्लिश कैरेक्टर जो भी था वो बूट पहनकर चल रहा था, तो वो बूट पहनकर चलने की आवाज उनको पसंद नहीं आ रही थी गिरजा कुमार जी को,
1: दूर से
0: वो आती हुई होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्पिरेटर को जो उसमें जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उस अंग्रेज को मारना था, उसको एक ताक पे बैठे हुए थे, उन लोगों को उन्होंने माइक के पास रखा, दोनों जो कॉन्स्पिरेटर थे, तो माइक के पास ऐसा बोलते थे, वो देखो वो आ रहा है, देखा वो ताइने क्या, अरे नहीं भाई भाई क्या, अच्छा भाई हाँ अंधेरा है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा, अच्छा उसकी आवाज सुनो। तो अब इतने पर वो बूट की आवाज थोड़ी थोड़ी तेज होती जाती थी और पास होता जाता था,
1: फेड इन करते जाते थे।
0: वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हमने देखा। तो उन्होंने चूंकि आवाज उनको ठीक पसंद नहीं आ रही थी तो स्टूडियो से जितने दरी और कारपेट सब बिछे थे सब निकलवा दिए गए,
1: हटवा दिया गया,
0: दरवाजा खोल दिया गया। और रात के 11:30 बजे आपने रिकॉर्डिंग की थी, आपको याद होगा, और वो जूते की आवाज वाकई में फिर जो जो डायरेक्टर चाहते थे, जो इफेक्ट चाहते थे वो, चूंकि विजुअल तो था नहीं, आंख से देखने की बात तो थी नहीं, सिर्फ चूंकि ऑडिबल था तो ऑडियो वर्क कर रहा था, यानी सिर्फ सुनकर आपको उस बात का आवाज होना चाहिए कि हाँ कोई आदमी जूता पहनकर आ रहा है, कोई आदमी ऐसा कॉन्स्पिरेसी कहीं और जगह पे कर रहा है, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने की थी हाँ, कभी भूलेंगे नहीं।
1: अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे
0: जी,
1: जो आर्टिस्ट सीखता था
0: जी, उसे सीखते
1: सीखने को मिलता था। जैसे कि वो आवाज याद होगी आपको कि वो आवाज निकलवाई थी उन्होंने,
0: वो सिकंदर से डाल करके आवाज, उसको बंद कमरे में आवाज।
1: और आर्टिस्टों को भी ऐसा वो करते थे कि जो करेक्टर वो पोर्ट्रेट करता था उसमें वो चीजें वो ऐसा निकलवाते थे जिससे कि हम आर्टिस्ट सब बड़ा सीखने का मौका मिल जाता था उस समय में। बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते। अच्छा, कुछ उस जमाने के और नाटक आपको याद हो जो कि बहुत
0: उस जमाने के एक, एक, एक, जी हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद आ रहा है मुझे, देखिए एक शरद चंद्र का वो था देवदास, उसमें भी आप थे, आप हीरो थे
1: देवदास की भूमिका की।
0: हाँ, उसमें हीरोइन का रोल किया था। अब इस वक्त तो वो रहे नहीं, हम लोग आंटी आंटी

0: बोलते थे श्रीमती सादिका सरन, वो उर्दू में पूरे नाटक
1: में इसमें शुभा पंजाबी ने भी किया था पारो का रोल एक दफे।
0: हाँ एक बार किया होगा, मगर मैं उस जिसमें मैंने भाग लिया था, मैंने महेंद्र का रोल किया था, वो आपने देवदास का रोल किया था और सादिका जी ने उसमें रोल किया था पारो का। तो उसमें महेंद्र
1: आशा ब्राउन जी हुआ
0: जी, आशा दीदी का रोल किया, चंद्रमुखी
1: बड़े भैया भी थे उसमें,
0: बड़े भैया भी थे उसमें, विजय बोस जी थे और दो चार और जे के बैनर्जी साहब भी थे, कई लोग थे उसमें।
1: ये विनोद रस्तोगी जी के टाइम का
0: जी है, ये विनोद रस्तोगी जी के समय का है। तो उसमें हमको याद है कि हमने जब महेंद्र का रोल किया था तो लास्ट में लास्ट सीन उसमें था जो कि माँ कहकर उसको, चूंकि दरवाजा बंद होता है और उस दरवाजे से जाकर पार्वती का सर टकराता है और उस पर लड़का विवश होकर चिल्लाता है माँ, तो वो माँ का जो शब्द उच्चारण था वो शायद इतना अच्छा हुआ,
1: अच्छा
0: मगर रिकॉर्डिंग जो कर रहे थे उसको इतना ड्राउन कर दिया कि आप लोगों ने फिर से ये बात कही कि यहाँ पर इस सीन को ऐसा होना चाहिए, फिर से रिकॉर्ड करो, तो वो दोबारा फिर से रिकॉर्ड किया उस एक शब्द के लिए, ठीक है ना।
1: अच्छा, और जो यहाँ के पुराने कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छे रहे हैं जिनके साथ आपका संपर्क रहा हो, उनके बारे में या उनके साथ जो आपने किया कुछ का कुछ स्मरण हो तो आप?
0: हाँ देखिए, वो 60 के बाद से तो विनोद रस्तोगी जी यहाँ के ड्रामा प्रोड्यूसर हुए और मैं ये कहता हूँ और कह सकता हूँ कि आकाशवाणी के माइक के विधा को उच्चतम स्तर तक लाने में विनोद रस्तोगी जी का बड़ा भारी अवदान है, अवदान है उनका। और विशेष रूप से नौटंकी शैली को तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से इस प्रकार प्रचलित कर दिया जैसे आज जगह जगह लोग नौटंकी करते हैं। तो जो एक कॉमन पार्लेंस में सामान्यतः नौटंकी को थोड़ा नाटक से नीचे दर्जे की कोई एक परंपरागत बात समझी जाती थी, मगर उस नौटंकी को मेन स्टेज पर अच्छी जगह पर रेडियो के जरिए से ब्रॉडकास्ट करके उन्होंने एक बड़े ऊंचे स्थान पर रख दिया।
1: सही बात है।
0: तो मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि सबसे पहले, मगर नौटंकी से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक एक एक प्ले किया था हम लोगों ने जिसमें आप भी हीरो थे और मैं भी हीरो था। तो दोनों हीरो और दो हीरोइन,
1: आइए घर आपका,
0: आइए घर आपका, जी हाँ जी हाँ, वो एक महाराष्ट्रियन प्ले से अडैप्टेशन
1: था।
0: अच्छा, उसमें आपको ध्यान होगा कि मेन थीम जो उस कथानक थी उस पूरे नाटक की, एक घंटे का नाटक था वो, उस कथानक में हमारा किसी एक हमारे जो हीरोइन थी उनसे इन्वॉल्वमेंट था, तो मैं आपसे छुपाना चाहता था और आपका किसी अपने हीरोइन में इन्वॉल्वमेंट था, सो आप छुपाना चाहते थे और हम दोनों बहुत दोस्त थे, हम और आप बहुत दोस्त थे, तो उसमें आपको तो मेन रोल था, हमको एक मेन रोल था, तो आपको स्ट्रेट रोल दिया गया और आप स्ट्रेट रूप से बात करते रहे। हमको रस्तोगी जी ने कहा कि तुमको ऐसा करना है कि थोड़ा बेवकूफ, जरा सा बेवकूफ टाइप का रोल करना पड़ेगा,
1: ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ेगा
0: कि तुम थोड़ा सा मंद बुद्धि के हो, जैसे बहुत लाडले लोग होते हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा भाई, नहीं नहीं, अरे भाई सुनो ना सुनो ना, इस तरह बोलते हैं ना, जो सामान से थोड़ा हट जाता है। तो उन्होंने मेरा वैसा चरित्रण किया, तो मैंने विजय बोस जी से शिकायत की अकेले में कि बड़े भैया ये क्या हुआ, विपिन दा के सामने, इतने बड़े आर्टिस्ट विपिन टंडन जी, उनके सामने मुझे रोल दिया जा रहा है, वो भी मैं एक बेवकूफ के रूप में स्टेज पर खड़ा होऊंगा तो मुझे कौन रिसीव करेगा। तो बड़े भैया ने कहा देखो प्रोड्यूसर क्यों ऐसा कर रहा है, अभी तुम्हें समझ में बात नहीं आएगी, तुम उसको करो और करके देखो। तो ठीक है, मैंने जैसा उन्होंने बताया उसे करना चाहा, बाद में मेरी समझ में आई जब प्ले एकदम से, जिसे हिट प्ले अगर बोला जाए, और यहां तक कि आज भी शायद वो कहीं ना कहीं से बचता रहता होता है, अभी 4-6 साल पहले की बात है, सिर्फ केवल 4-6 साल पहले बात, हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी विभाग में है, उन्होंने बॉम्बे से फोन किया, भाई तुम्हारा प्ले बॉम्बे से आज मैंने सुना, आइए घर आपका, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा कि ये तो आज कम से कम 15 साल पहले की बात है,
1: लोगों ने सराहा है।

0: बहुत आज भी वो शायद रखा होगा, कभी न कभी बजता रहता है।
1: अच्छा, उस जमाने में स्टेज के ऊपर जो आकाशवाणी का प्रोग्राम करा करते थे
0: जी,
1: हाथ में स्क्रिप्ट लेकर
0: देखिए
1: प्रभावित करते थे आर्टिस्ट।
0: बिपिन, ऐसा था, मेरा आज भी ये विश्वास है और मैं ये कहना चाहूंगा, हर दर्शक को कहना चाहूंगा और इस आपके हमारे बातचीत के जरिए से यहाँ के प्रोड्यूसर से भी निवेदन करना चाहूंगा, आकाशवाणी का कंपैरिजन आर्ट एंड ड्रामा डिवीजन या टेलीविजन से नहीं होना चाहिए। हमारा जो माध्यम है वो केवल कान है, वो आंख नहीं है। तो और यदि कान है तो जो लोग हमारा अभिनय देखते हैं वो देखते नहीं है, वो विशेष रूप से उसे सुन रहे हैं,
1: सुन करके उसको
0: विजुलाइज कर लेते हैं। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आप स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए और रेगुलर नाटक की तरह से स्टेज नाटक का मंचन करिए, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। हम लोगों ने नौटंकी की है, नौटंकी में नाच का पूरा अभिनय किया है, पूरे गाने गाए हैं, मगर वो भी स्क्रिप्ट हाथ में रहा करता था। और नाच या गाने की जो सीन्स होती थी उसका जो मंचन होता था वो इसलिए होता था कि वो उसमें है, तो वो जो सुन रहे हैं उसी को देख रहे हैं।
1: सही बात है।
0: तो चूंकि देख रहे हैं तो धोती पहन ली जाती थी या कोई बात पहन, जैसे अगर हमको किसी बुजुर्ग मौलाना का रोल करना है तो अगर थोड़ी सी दाढ़ी लग जाए या एक अचकन पहन ले तो अच्छा लगेगा। पंडित जी का रोल करना है तो एक धोती और एक जरा सा चंदन टीका लगा ले,
1: स्टेज पर कर रहे हैं,
0: स्टेज पे कर ले, इसलिए
1: स्टूडियो में अगर रिकॉर्डिंग हो रही है
0: तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टेज पर जब भी आकाशवाणी के प्रेजेंटेशन होते हैं तो ऐसा हमारा निवेदन रहेगा कि इस तरह के ही प्लेज हमारे सामने होने चाहिए ऑडियंस के सामने।
1: अच्छा, और मजा ये है कि जो ऑडियंस हुआ करती थी उसने कहीं से शिकायत ये न करी कि स्क्रिप्ट हाथ में लेकर के क्यों,
0: कभी नहीं की,
1: कभी नहीं,
0: वो भूल जाते थे,
1: वही मिलता रहा है।
0: जी हाँ, वो भूल जाते थे कि स्क्रिप्ट सचमुच हाथ में है, ऐसा नहीं होता था कि उनके स्क्रिप्ट की वजह से कोई, देखिए ना, डायलॉग चूंकि और फ्लुएंटली बोला जाता था, उसके एक्सप्रेशंस जितने आकाशवाणी के रूप में जरूरी है वो सब दिए जाते थे, तो वो तो सुनने में ही मग्न हो जाते थे।
1: सही बात है।
0: जो ऑडियंस हुआ करती थी वो ये समझते थे कि हम आकाशवाणी का नाटक सुन रहे हैं, पर चांस देख भी रहे हैं, तो उसका एक इफेक्ट पड़ता था।
1: अच्छा पालोक जी, कोई और ऐसा आपको नाटक स्मरण हो जो आपके बहुत मन भाया हो और जो आपके इस आकाशवाणी की जो समय बीता है उसमें बहुत ही अच्छा लगा हो आपको, उसके बाद
0: जी हाँ, कई कई नाटक हैं ऐसे। एक तो मैं फिर वही गिरिजा कुमार माथुर जी के समय में वापस जाऊंगा, जब उन्होंने अवांतर ग्रह नाम से एक प्ले किया था, वो भी नेशनल प्रोग्राम में,
1: फिर
0: उसमें आपने रोल किया था। देखिए उस जमाने में जितने बड़े प्लेज होते थे उसमें आप तो रहते ही थे, कुछ कुछ हम लोगों को मौका मिल जाता था। तो आपकी अपनी गरिमा इलाहाबाद आकाशवाणी के एक बहुत ही उच्च स्तरीय कलाकार के रूप में बनी हुई थी, बनी हुई है और बनी हुई रहेगी, मगर हम लोगों को कुछ नौकरी वोकरी ऐसी लग गई जिसकी वजह से समय का थोड़ा अभाव पड़ जाता है, वरना आकाशवाणी से जुड़े रहने की लगन तो आज भी हृदय में है।
1: हाँ,
0: तो उसमें अवांतर ग्रह में ऐसा कुछ थीम था कि एक जैसे आज उपग्रह छोड़े जाते हैं, उस समय में परिकल्पना की बात थी, कोई सोच भी नहीं सकता था क्या ऐसा होगा, मगर गिरिजा कुमार माथुर जी ने ऐसा किया था। ऐसा उनका प्ले बोलता था कि वो कहां गए, मंगल में गए, कहां गए वो सूर्य में गए, कहां गए वो बुध से बोल रहा है। तो वो सारी चीजें बोलते बोलते मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, तो उन्होंने रेडियो के जो ब्लैंक इफेक्ट आते चू ची कभी कड़कड़ कड़कड़ सब आवाजें आती है ना, उन्होंने कई आवाजों को रिकॉर्ड एक साथ करके कई जगह पर प्रयोग करना शुरू किया। तो वहां पर जब ये चीज हो रही थी और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना तो आप या किसी ने वहां पे बड़े जोर से बोला था कि गिरिजा कुमार जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब डिस्टरबेंस वाला पार्ट प्ले होता रहेगा तो लिसनर उसे हटा देगा, कहेगा कि रेडियो में डिस्टरबेंस हो रहा है।
1: हाँ, ये तो बात सही थी। अच्छा, और एक आपको स्मरण होगा पंत जी का नाटक हम लोगों ने किया था कल्पांतर करके।
0: जी हाँ, कल्पांतर चला था काफी।

0: तक चला था।
1: हाँ,
0: और देखिए कई ऐसी, हाँ पंत जी के उसमें हमको पूरा ध्यान नहीं है क्योंकि छोटा कोई रोल रहा होगा, हमें उसका ध्यान नहीं है, मगर उपेंद्र नाथ अश्क जी का उनके गिरती दीवारें वो सीरियल में चला था, शायद 23 या 25 सीरियल चले थे, तो उसमें जो चेतन का रोल था, चेतन यानी चेतन हमको अश जी ने बाद में रोल होने के बाद घर पे बुलाया, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, नीलाभ जी आज भी है, नीलाभ जी थे, तो भाभी जी भी यानी वो
1: कौशल्या जी,
0: तो कौशल्या जी ने हमें चाय पिलाया, मिठाई खिलाया, खाना खिलाया, एक दिन हम के आई विल नेवर फॉरगेट क्योंकि इतना अफेक्शन मिला था, और वो एक आध दफे ऐसा बोलने लगे कि भाई वो तो चेतन तुमने तो एक आध दफे ऐसे कर दिया, मैं भूल गया कि मैं कहा हूं अपने जीवन के ऊपर चुके लिखा हुआ था ना, तो गिरती दीवारों के बारे में बहुत फैस्टिडियस थे, और आशिक जी उनके डायरेक्शन में काम करके मैंने ये सचमुच जाना, क्योंकि वो बहुत पुराने आकाशवाणी जुड़े थे, वो मोंटो को और किसका किसका सब कहानी बताया करते थे हम लोगों के सामने, इवन केएल सहगल साहब के साथ उनके कई बार एनकाउंटर्स हुए थे, सब वो बताते थे। तो आशिक जी ने जैसे बोलना है कि एक डायलॉग है तो कहाँ जा रही है, तो कहते नहीं ऐसा नहीं, तू कहां जा रही गले से नहीं निकलेगा, तुम ऐसे उंगली करो, तू कहां जा रही, तू देखो हाथ के साथ जो झटका होगा उस झटके साथ फिर वो आवाज निकलेगी, वो आवाज फिर वो सुन लिसनर जब सुनेगा उसे लगेगा तुमने उंगली ऐसे की होगी।
1: सही बात,
0: अब इतना परसेप्शन कोई आदमी इतनी मेहनत करता है आज, ये सोचने की बात है, ये तो हमारा जीवन, मैं सचमुच बताता हूँ, ये जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और कलाकारों के साथ हमको मौका मिल गया था काम करने का, तो अश्क जी की बात हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने डायलॉग डिलीवरी के बारे में बहुत ज्यादा हमको रेडियो विधा का प्रयोग करना सिखाया था।
1: जी, अब जैसे मुझे याद है, स्मरण है कि एक कुल्फी वाले का एक रोल हुआ करता था, जो कुल्फी की आवाज लगाया करता था,
0: मिलाई
1: तो वो वहां पर लाहौर की वो बात बताने लगे कि ऐसे बोलता था वो, और यहाँ के आर्टिस्टों को बेचारे वो बताते हैं कि देखो ऐसी आवाज निकलनी चाहिए जैसे वहाँ आवाज हमने सुनी है उस टाइप से आवाज।
0: वैसे ही नरेश मेहता जी ने यहाँ पे प्ले किया था, उस पे भी हमें मौका मिल गया था, उनका था वो एक कंठ विश्वाई था और वो दूसरा जो प्ले था मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ इस वक्त, एकाएक चूंकि नरेश मेहता जी की बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने जिस तरह से ड्रामा हमको सिखाया था, डायलॉग डिलीवरी बताने की बात की थी, तो हमें अपने जीवन में उसका अनुकरण करना बड़ा लाभप्रद बाद में सिद्ध हुआ। उसका मैं देखिए शायद नाम याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको, उनके तो बहुत से प्लेज हैं।
1: तो अच्छा, और कुछ और जो यहाँ के कलाकार और रहे हैं जिनसे आपका संबंध रहा, जिनको कि आप अच्छे स्तर के मानते हैं?
0: जी ऐसा ना कि वो
1: कुछ
0: जी
1: बताएं,
0: तो वो तो इधर जे जब से नौटंकी का वो चला तो एक नौटंकी जो रस्तोगी जी ने लिखी थी, श्री विनोद रस्तोगी जी ने, नई लहर के नाम से वो बहुत फेमस हुई
1: जी।
0: रेडियो प्ले के हिसाब से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर अल्टीमेटली उन्होंने उसकी नौटंकी का की रूपरेखा दी, और जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि 2-4 प्रेजेंटेशन के बाद ही उसकी इतनी व्यापक प्रशंसा लोगों के मुंह से होने लगी कि दिल्ली से हम लोगों का कॉल आया कि भाई इसका टेलीविजन में 26 जनवरी के दिन इसका, या 26 जनवरी या 15 अगस्त हमको ये नहीं, 26 जनवरी का दिन था, यानी 25 जनवरी की रात को इसका टेलीकास्ट हो नई लहर। तो हम लोग सब दिल्ली गए थे और वहां पर रुके थे, रोज रिहर्सल होती थी, उसके बाद फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई, चमन बग्गा जी उसके डायरेक्टर थे वहां पर, उन्होंने उसको डायरेक्शन दिया था और कितना अच्छा वो बना था, बहुत ही अच्छा बना था, वहां के उस जमाने के न्यूज़पेपर्स जो होते थे उन्होंने भी काफी सराहा था।
1: अच्छा, और एक बात बताएं कि कभी यहाँ की टीम जाया करती थी बाहर नाटक करने के लिए, तो कई जगहों पर गए नाटक, मैं भी आपके साथ
0: कई जगह गए
1: और वहाँ का क्या अनुभव रहा, कैसा लगा आपको?
0: ऐसा था, पहले मैं इसको जरा नौटंकी वाली बात 2 मिनट में खत्म कर लूं, क्योंकि उसमें हमारे साथ ऐसे ऐसे कलाकार

0: जुड़े हैं जो आज किसी न किसी फील्ड पर बहुत ही सुनाम अर्जन कर चुके हैं। और पहले जैसे एक नौटंकी लिखी गई थी, उसका नाम तो ठीक से याद नहीं है, मगर बेस कुछ न कुछ ऐसा एक घरेलू प्रॉब्लम समस्या लेकर रस्तोगी जी लिखते थे और उसका एक समाधान ढूंढते थे जो समाज के लिए उपयोगी होता था और जो सामयिक हुआ करता था। तो उसमें एक प्ले में तो हमारी वो हीरोइन थी शोभना गुलवाड़ी। तो शोभना गुलवाड़ी जी आजकल मैं टीवी में भी देखता हूँ, रेडियो में भी सुनता हूँ, तो शोभना राव के नाम से बहुत ही अच्छा गजल गा रही है। वो
1: उसकी शादी हो गई।
0: हाँ जी हाँ, वो उनकी शादी हो गई है और कभी कभी मुलाकात हो जाती है। तो वी मीट ईच अदर जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। तो जो हम लोगों का वो उस समय का एक ऐसा फैमिली वातावरण था वो आज भी अपनी जगह पर कायम है। और वही प्ले सेकेंड टाइम चूंकि शोभना जी नहीं मिली तो वो बनारस में होना था और वो DLW के ग्राउंड पर होना। तो वहां आप समझिए विपिनदा कि जनता शायद 10-12-15 हजार की भीड़ वहां थी और उन्हें पता चल जाए कि इलाहाबाद रेडियो स्टेशन के लोग आज यहाँ कुछ करेंगे, तो ऐसे ही वहां के लेबरर्स, वहां के बाशिंदे, आसपास रहने वाले लोग सब आ जाया करते थे। तो उसमें वो रोल मेरे साथ हीरोइन वाला किया था श्रीमती, आज तो वो श्रीमती शुभा मुडगल जी है, मगर उस जमाने में हमारे बड़े भाई, हाँ हमारे बड़े भाई स्कंद गुप्त जी की वो लड़की हुआ करती थी और है भी। तो शुभा गुप्ता जी तो उन्होंने हीरोइन का रोल किया था और इतना अच्छा निभाया था, इतना अच्छा निभाया था कि वो लोगों ने कहा एनकोर एनकोर एनकोर की आवाज आ गई फिर से क्योंकि वो तो हो नहीं सकता था क्योंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग चलती थी।
1: ये तो बात ही है।
0: अच्छा, और तीसरी बात ऐसा हमको जो ध्यान पड़ता है कि हीरोइंस में शूरी सॉन्डर्स जो आजकल शायद शादी के बाद जयपुर में हैं और श्रीमती दीपा रानी जी जो आजकल शायद मथुरा में है, मथुरा में है, तो ये दोनों हमारी बड़ी बहुत से प्लेज में ये लोग हीरोइन रही। और जब ये लोग किन्हीं कारणों से प्ले पर नहीं आ पाए तो मुख्य रूप से नट और नटी का रोल हम लोग करते थे। हम लोग के माने नंदिनी चैटर्जी रोल करती थी इसका नटी का और मैं रोल करता था नट का। जी हाँ, बहुत से गाने हमको गाने पड़े और वो डांसिंग पॉस्चर्स होते थे, बहुत अच्छा एक माहौल बनता था। तो हमें याद तो बहुत सताती है उन सब क्योंकि ऐसे एक कर्म जीवन में आज हम लगे हुए हैं, हम इस कला के लिए समय नहीं दे पाते हैं, इसका मुझे खेद है, अफसोस है।
1: सही बात है।
0: तो आपने पूछा कि वो नाटक और नौटंकी जो बाहर होते थे वो कैसे होते थे, तो आपको याद होगा कि हम लोग जालंधर गए, आपको याद होगा कि हम लोग जयपुर गए, हम लोग फिर कश्मीर पहुंचे थे श्रीनगर में, और श्रीनगर में प्ले करते करते वहां कारगिल के किनारे बॉर्डर तक में हम लोगों से प्ले कराया गया और उसका नाम होता था एक वो चिरंजीत जी हुआ करते थे,
1: चिरंजीत ड्रामा
0: का वो सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग यूनिट दिल्ली से आते थे। तो दिल्ली की टीम आती थी, दीनानाथ जी आया करते थे उसमें, के श्रीवास्तव आया करते थे उसमें, और हीरोइन का नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त याद नहीं है, मगर बहुत अच्छा रोल करती थी वो पांडे जो आजकल न्यूज पढ़ती हैं, उषा पांडे या रमा पांडे आजकल न्यूज पढ़ती हैं, तो उन्होंने हमारे साथ प्ले किया है। और एक उनका क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत ह्यूमरस रोल करते थे वो, बहुत ही ह्यूमरस रोल करते थे।
1: दुआ की बात तो नहीं कर रहे हैं आप?
0: दुआ जी तो लखनऊ के थे,
1: वो तो दिल्ली की बात कर रहे हैं।
0: दिल्ली की बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो ऐसा था कि इन सब यानी बॉम्बे तक भी हम लोग गए थे और कामिनी कौशल जी ने हमारा प्ले वहां पे जितना हुआ था उसके कंपेयरिंग की थी, तो उन लोगों ने इलाहाबाद के प्ले को बहुत सराहा और कामिनी जी से कभी मुलाकात होती होगी तो लोग सोचते होंगे कि यहाँ क्या इतना बड़ा एक आर्टिस्ट रेडियो के लिए कंपेयरिंग कर सकता है, मगर रेडियो की अपनी एक विधा है, रेडियो का अपना एक स्थान है, इसलिए रेडियो के लिए मैं समझता हूँ कितना भी बड़ा आर्टिस्ट होगा, मैंने उत्पल दत्त को भी रेडियो में पार्टिसिपेट करते देखा है, उत्तम कुमार जी को भी देखा है, अशोक कुमार जी को भी सुना है, दिलीप कुमार जी को भी सुना है, ऐसा नहीं है कि रेडियो विधा किसी विधा से कम है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी विकलांग लोग हैं जिनकी आंखें नहीं।

0: है, उनके पास तो ये आकाशवाणी रेडियो यही तो विधा बचेगी।
1: सही कहा। अच्छा आप यहाँ आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए
0: धन्यवाद
1: मैम।
0: विपिन दा, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना पूर्व न्यायमूर्ति तथा आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व नाट्य कलाकार पालोक बसु से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे विपिन टंडन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रा श्रीवास्तव हाजिर हूँ लेकर हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये संगीत कार्यक्रम समर्पित है उस अभिनेता को जिसके अंदाज में रोमांस था, चाल में मस्ती थी, आंखों में सपने थे और आवाज में जिंदगी का भरोसा था। एक ऐसा सितारा जिसे दर्शकों ने सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा बल्कि अपने दिल में बसाया, नाम था देव आनंद। देवानंद यानी भारतीय सिनेमा के एवरग्रीन स्टार।

दोस्तों आज देव आनंद का जन्मदिन है। 26 सितंबर 1923 को जन्मे देव आनंद ने 1940 के दशक में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय, निर्माण और निर्देशन से हिंदी सिनेमा को प्रभावित किया। देवानंद का असली नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। शिक्षा पूरी करने के बाद वे मुंबई आए। शुरुआती दिनों में उन्होंने नौकरी भी की और फिल्मों में अवसर तलाशते रहे। 1946 में उन्हें फिल्म हम एक हैं में अभिनय का अवसर मिला। 1948 की फिल्म जिद्दी उनकी शुरुआती बड़ी सफलताओं में रही और इसके बाद 1951 की फिल्म बाजी ने उन्हें एक प्रमुख सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। इसी दौर में उनकी दोस्ती और रचनात्मक साझेदारी गुरुदत्त जैसे फिल्मकारों के साथ बनी और फिर आया वह दौर जब देव आनंद का नाम संगीत, रोमांस और युवा ऊर्जा का पर्याय बनने लगा।

दोस्तों, देव आनंद की स्क्रीन पर्सनालिटी की खासियत थी, वे नायक को स्थिर चरित्र की तरह नहीं बल्कि सपने देखने वाले, प्रेम करने वाले और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान की तरह प्रस्तुत करते थे। 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। आगे चलकर यह बैनर नए निर्देशकों, कलाकारों, संगीतकारों और टेक्नीशियंस को अवसर देने के लिए जाना गया। देव आनंद केवल अभिनेता नहीं रहे, वे निर्माता बने, निर्देशक बने और सिनेमा में नए विषयों के साथ प्रयोग करते रहे। इसी दौर में एसडी बर्मन के साथ उनका लंबा और अत्यंत महत्वपूर्ण संगीत संबंध बना। बाजी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटोश, 9-2-11, काला पानी, काला बाजार, गाइड, ज्वेल थीफ और अन्य फिल्मों में इस साझेदारी ने यादगार संगीत दिया।

दोस्तों, 1950 और 1960 के दशक में देव आनंद हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में शामिल थे। राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ उनका नाम उस दौर के स्टार में लिया जाता है। 1954 में उन्होंने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह किया। दोनों की मुलाकात फिल्मों के दौरान हुई थी और उनकी जोड़ी ने कई फिल्मों में दर्शकों तक श्रोताओं का मनोरंजन किया। दोस्तों, देव आनंद को देखकर दर्शक कहते थे, ये आदमी चलता नहीं, स्क्रीन पर तैरता है।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

श्रोताओं, 1965 की गाइड देव आनंद के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी। आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने राजू गाइड का किरदार निभाया। फिल्म का निर्देशन उनके भाई विजय आनंद ने किया और संगीत दिया एस डी बर्मन ने।

वाह क्या खूब गीत है ये। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। देव आनंद की स्क्रीन पर मौजूदगी और किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज का ये संगम आज भी श्रोताओं को उसी दौर में ले जाता है। 1967 में आई ज्वेल थीफ ने रहस्य, रोमांच और संगीत को एक साथ पेश किया। विजय आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में देव आनंद के साथ वैजंती माला, तनुजा और अशोक कुमार जैसे कलाकार थे। देव आनंद का अंदाज ही कुछ ऐसा था, तेज चाल, गर्दन का खास अंदाज, मुस्कुराहट और संवाद बोलने का अपना तरीका। उनकी यही विशिष्ट शैली उनके अभिनय की पहचान बन गई। दोस्तों, 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम देव आनंद के करियर की एक और बड़ी सफलता रही। इसके बाद आई हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि युवाओं के बदलते जीवन और सामाजिक परिस्थितियों को भी पर्दे पर प्रस्तुत किया। फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गीत जैसे ही पर्दे पर प्रस्तुत हुआ, देव आनंद साहब दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए।

दोस्तों, देव आनंद को उनके लंबे और महत्वपूर्ण फिल्मी योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। उन्हें 1959 में काला पानी और 1967 में फिल्म गाइड के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम

अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2002 के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, देव आनंद ने अपने जीवन के अंतिम दौर तक काम करना जारी रखा। उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट 2011 में रिलीज हुई। उनका निधन 3 दिसंबर 2011 को मुंबई में हुआ। उनका फिल्मी सफर 6 दशकों से अधिक लंबा रहा, लेकिन कुछ कलाकार पर्दे से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते।

दोस्तों, एक ऐसा सितारा जो हिंदी सिनेमा के आसमान में आज भी चमक रहा है, देव आनंद सिर्फ एक नाम नहीं, एक अंदाज थे, एक दौर थे, एक मुस्कान थे और हिंदी सिनेमा की अमर कहानी का एक खूबसूरत अध्याय थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम आधारित था जाने माने अभिनेता देव आनंद पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, ये वो सेगमेंट है जहां आज धड़कने थोड़ी तेज और यादें थोड़ी ताज़ा होने वाली हैं, क्योंकि आज हमारा स्पेशल सेगमेंट फिल्म म्यूज़िक में हम महसूस करेंगे मिलेनियल्स की धड़कन। वो दौर जब इंटरनेट नया नया था, कैसेट से सीडी का सफ़र शुरू हो रहा था और हमारी फीलिंग्स को शब्दों में पिरोने का काम कुछ जादुई आवाज़ें कर रही थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र उस आवाज़ के साथ जिसके बिना 90s और 2000s का बचपन अधूरा है, द वन एंड ओनली सोनू निगम। याद है जब दिल टूटता था तुम रोते नहीं थे, बस वॉकमैन पर ये गाना लूप पर लगा देते थे। सुनिए फिल्म तुम बिन से सोनू जी की मखमली आवाज़ में ये नगमा।

सोनू निगम की आवाज़ में वो कशिश है जो सीधे दिल के पार जाती है। वैसे जब हम स्कूल और कॉलेज में कदम रख रहे थे तो हमारी दोस्ती, हमारा पहला क्रश और विदाई के आंसुओं को एक ही शख्स ने अपनी आवाज़ दी थी। वो आवाज़ जो आज भी मिलेनियल की धड़कन में जिंदा है, यानी केके। जब यारों के साथ हम बाइक पर ट्रिप प्लान करते थे या कॉलेज का आखिरी दिन होता था तो बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही गाना बजता था। चलिए अपनी कॉलेज लाइफ की यादों की गैलरी को एक बार फिर खोलते हैं केके की जादुई आवाज़ में।

वो दिन भी क्या दिन थे। लेकिन बॉस, मिलेनियल्स की लाइफ सिर्फ इमोशनल गानों तक सीमित नहीं थी। जब कॉलेज फेस्ट में डांस फ्लोर पर आग लगानी होती थी या हेडफोन लगाकर अपना एटीट्यूड दिखाना होता था, तब एक लेडी बॉस की आवाज़ गूंजती थी, क्वीन ऑफ वर्सेटैलिटी यानी सुनिधि चौहान। उनकी आवाज़ में वो पावर है जो शांत बैठे इंसान को भी नचा दे। तो चलिए थोड़ी एनर्जी बढ़ाते हैं और सुनते हैं सुनिधि का वो ट्रैक जिसने हमारे डांस स्टेप्स को हमेशा के लिए बदल दिया।

डांस तो हो गया, लेकिन उस दौर की बात कैसे ना करें जब ब्लूटूथ से गाने शेयर हुआ करते थे और हर किसी की कॉलर ट्यून पर एक ही सिंगर का कब्जा था। जी हाँ, वो हाई नोट्स, वो गिटार की धुन और वो बेमिसाल दर्द, आतिफ असलम। अगर आपने अपनी लाइफ में आतिफ के गानों पर अपनी क्रश को याद नहीं किया तो बॉस, आप मिलेनियल हो ही नहीं सकते। चलिए लौटते हैं फिर से उस 2000s के एरा में, जब खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए हम सब ये गाना गुनगुनाते थे।

सच में वो लम्हे आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं। अब दिल थोड़ा सा भारी और पुरानी यादों में खो गया है, तो इस शो के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं एक ऐसी आवाज़ की तरफ जो भागदौड़ भरी कॉरपोरेट लाइफ में मिलेनियल्स के लिए एक थेरेपी की तरह काम करती है। जब भी सुकून की तलाश होती है, सफ़र पर निकलना होता है या फिर बस चाय की चुस्की के साथ खुद से मिलना होता है, तो हमें याद आते हैं पहाड़ों की वादियों जैसी ताजगी से भरे मोहित चौहान। इम्तियाज़ अली की फिल्म से उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, तो आइए सुनते हैं जब वी मेट से ये खूबसूरत गाना और खो जाते हैं सुकून के सफ़र में।

0: आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया।

0: ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jayashankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York and discussed bilateral issues as well as a number of ongoing issues. Mr. Jayashankar also met Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on the margins of the high-level UN General Assembly session. They discussed the latest developments with regard to the Gulf conflict. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Garapatridis. During the event, Dr. Jayashankar reaffirmed that AI

दिन में 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन। 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी अर्चना पांडे से की गई बातचीत, ग्रामीण महिलाओं के लिए जरूरी वित्तीय साक्षरता और संदीपमा वर्मा से लोकगीत। साथ ही रसोई घर से जानेंगी कम तेल में स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाएं।

2:30 पर हरिश्चंद्र पांडे और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे लाल केशवर प्रसाद। 5:15 युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी।

6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे हरिश्चंद्र पांडे और साथियों से लोकगीत और डॉक्टर सपन श्रीवास्तव से की गई बातचीत कैंसर एक जागरूकता। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी लखनऊ केंद्र से। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता सुनिएगा भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे आदित्य राय। रात 8 बजे चित्रपट संगीत और 8:30 बजे सबरस। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। आकाश शुक्ला पुत्र राजेंद्र शुक्ला निवासी झलवा जनपद प्रयागराज सूचित करते हैं कि इनके भाई सूरज शुक्ला पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी गिठुरा थाना पिपरी उम्र 32 वर्ष ये 28 अगस्त 2026 से लापता हैं। इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच दोहरा बदन रंग गेहुआ चेहरा गोल बाल काले हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 7388202933। नंबर एक बार फिर से सुन लें 7388202933। एक और सूचना सुनिए। शिव बलि सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी गेंटी देवी उम्र 25 वर्ष लंबाई 5 फीट दुबली पतली है ये रंग गोरा चेहरा गोल है। इनकी विशिष्ट पहचान है कि इनके नाक पर दाहिने तरफ तिल का निशान है। ये 28 अगस्त 2026 से दोपहर 12 बजे से लापता हैं। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9060205369। नंबर एक बार फिर से सुन लें 9060205369। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग शुद्ध सारंग में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है ग्लैडविन चार्ल्स ने स्वर मंडल पर राकेश प्रसन्ना। तो लीजिए सुनिए पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग शुद्ध सारंग में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग शुद्ध सारंग में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ग्लैडविन चार्ल्स और स्वर मंडल पर राकेश प्रसन्ना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार।
1: हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से
0: जी। राकेश जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: परदेसी बाबू फिर कोई सा गाना सुना दीजिए मैडम।
0: अच्छा जी बिल्कुल।
1: सारे गाने
0: अच्छे हैं और गोविंदा की फिल्म थी ये।
1: जी मैडम जी।
0: तो गाने तो बहुत अच्छे थे इसके और फिल्म भी अच्छी थी। इसमें से हम लेते हैं ये वाला गाना और उम्मीद करते हैं राकेश जी को पसंद आएगा।
1: हेलो मैडम जी।
0: जी बोलिए।
1: हमारे श्रोता हैं शारदा प्रसाद जी, अशोक कुमार जबलपुर से
0: जी,
1: और विविध भारती मैडम आप लोग चालू करिए तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हम सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग कहें विविध भारती चालू करें।
0: जी बिल्कुल। तो अभी हम आपको सुनवाते हैं गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते, मैं मौसम बोल रही,
0: जी
1: गांव का नाम
0: मौसम जी,
1: जिला मिर्जापुर से बोल रही।
0: जी मिर्जापुर से मौसम जी हमारे साथ हैं। तो मौसम जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: बड़े मियाँ छोटे मियाँ,
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: ये ताजी जोड़े मिला।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रही हैं अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपकी गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हवलिया झुंसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दाता सुनूंगा, सुनना है मैडम। गाने के बोल हैं, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: प्रयागराज से काव्या सरोज बोल रहे हैं, गांव अवतार प्रसाद।
0: हाँ
1: नमस्ते
0: जी,
1: मैम।
0: नमस्कार जी। काजल जी, कौन सा गीत सुनेंगी
1: मैम
0: जी?
1: कयामत मूवी मैम।
0: कयामत मूवी का कौन सा गाना? गाने के बोल याद है?
1: जी मैम, कभी मुझको हंसाए कभी मुझको
0: वो
1: रुलाए।
0: लड़की बहुत याद आती है।
1: जी।
0: हाँ अच्छा जी, चलिए तो काजल जी सुनवाएं कि आप किसी का नाम लेना चाहती हैं?
1: जी मैम, भाइयों का नाम ले लें।
0: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: मैम सूरज शेखर।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं कयामत फिल्म का ये गाना।

0: फरमाइश कार्यक्रम। अपना नाम बताएं।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव मुगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है।
0: अच्छा जी,
1: और गाने के बोल हैं दिल दिया कल्ला।
0: बड़ा ही अच्छा गाना चुना है प्रेमचंद जी आपने।
1: जी मैम, नाम लेने हैं मैम?
0: हाँ हाँ ले लीजिए।
1: बांका जलालपुर से सुरेंद्र यादव जी हैं, निधि कला बनबुकरा से पवन निषाद, पिंटू निषाद और गुटली कुंदा, प्रतापगढ़ से राजेंद्र कुमार जी हैं, दादनपुर प्रयागराज से विकास जी हैं, नीतीश आर्या जी हैं, मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, सभी को समर्पित है ये गाना।
0: अच्छा, आपने सबके एड्रेस भी याद करके रखे, कौन कहाँ से फरमाइश करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: ठीक है प्रेमचंद जी, तो आपको सुनवाते हैं टाइगर जिंदा है फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जनकेंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है।

0: ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastav, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate Women's Empowerment

0: government initiatives in the cooperative sector at Kundara in the late afternoon. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri in Kollam district. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said Dr. Singh spent many years in public life and served the nation with dedication. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has said that due to the depression over South Chhattisgarh and adjoining South Interior Odisha, very heavy rainfall is likely to prevail at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Indian women's kabaddi team clinched gold after beating Iran. The Indian women went on an unbeaten run throughout their campaign. This historic victory marked India's third gold medal of the ongoing Asiad competition, following earlier triumphs by the women's cricket team and the shooting duo of Suruchi Singh Phogat and Kamaljeet in the 10-meter air pistol mixed team event. India won the silver medal in the women's 50-meter rifle three positions team event at the Asian Games today. The trio of Tilotama Sen, Vidarsha Vinod and Ashish Chokse scored 1,763 points, finishing behind China, which secured gold with the game's record 1,773 points. Meanwhile, Indian squash players delivered a strong performance at the Asian Games, with teenager Anahat Singh reaching the women's singles final after a remarkable comeback against Japan's world number 6 Satoma Watanabe. With this, India stands on 12th position with a total of 27 medals, including 3 gold, 11 silver and 13 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो.
2: रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में गुज़िश्ता दो दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं ने कई मकामात पर अवामी ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है. महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. आज सुबह से ही रियासत के मशरक़ी अज़ला में तेज़ हवाएँ चल रही हैं और वक्फ़े से बारिश हो रही है. मौसम की इस तब्दीली के बाद कई अज़ला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत गिर गया है. महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान दर्ज हरारत 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है. उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कई अज़ला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है. भारी बारिश की वार्निंग के पेश नज़र लखनऊ, गोरखपुर, बलरामपुर, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, कानपुर नगर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उरई, मथुरा, फर्रुखाबाद अज़ला में 12वीं जमात तक के स्कूल बंद हैं, जबकि संत कबीर नगर, चंदौली, बाराबंकी, बलिया, बदायूं, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर और जौनपुर में आज 8वीं जमात तक के स्कूल बंद हैं. आकाशवाणी के नुमाइंदे ने इतला दी है कि तूफानी हालात की वजह से रियासत की दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कई अज़ला में शदीद बारिश हो रही है. निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है और सड़कों पर ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर है. रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से बारिश से मुतालिक कई हादसात की भी इतला मिली है. रियासती रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर हृकेश भास्कर यशोद ने मौसम की सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट अज़ला के ज़िला मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद की. उन्होंने अहदेदारों को जमीन पर मुतहरिक रहने, मकामी हालात की मुसलसल निगरानी करने और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है. महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रियासत में मौसम के मुतासिर रहने का इम्कान है. मशरकी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है. मगरबी उत्तर प्रदेश में 27 सितम्बर तक मूसलाधार बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की भी उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम को देखते हुए योगी हुकूमत को मुकम्मल अलर्ट पर है. शदीद बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग दी गई है. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुतल्लिका अज़ला के ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के इम्कान को देखते हुए खुसूसी चौकसी इख्तियार करें और मुतासर इलाकों का दौरा करें. वज़ीर आला ने रेड अलर्ट और फ्लड वाले अज़ला में स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया है. उन्होंने आला अहकाम को मुकम्मल चौकसी बरकरार रखने, आसमानी बिजली और मूसलाधार बारिश से होने वाले नुकसान का फौरी तौर पर जायजा लेने और

0: गंगा। अरे ओ गंगा बहनी, हम कहा राम राम।
1: राम राम चंपा बहनी, अपन घर सुने बैठी सब बहनी हरन के गंगा और
0: चंपा के राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और बताओ गंगा बहनी, घरे द्वारे का हाल चाल।
1: देखा हाल चाल बहनी तो एकदम ठीक बा, लेकिन देखा 2-3 दिन से बोनी ना टूटी बा, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहती हूँ।
1: तो
0: हवा
1: इतना
0: देखो कितना तेज हवा चलत है, इधर से
1: हाँ,
0: आधी आवत हो।
1: और आज की देर बहरे बैठ जे ना तो सहलावन लागे लागत
0: बिल्कुल
1: ना
0: सही
1: कि
0: कहती,
1: कुछ
0: रोवा
1: ओढ़
0: रोवा
1: ले।
0: खड़ा, ठंडी लागे रे, मना करते कुछ ओढ़ के तब बैठी तो
1: और
0: कितना
1: आज
0: नीक
1: देखा
0: लागे।
1: कितना पानी बरसत रहा, गदेलन के छुट्टी हुई है।
0: हाँ
1: और हमें तू देर के आऊ, हम लागत भीजत भीजत आऊ का। हाँ
0: तो घर से निकले देखे तो बरसत ना रहा एकदम, मतलब
1: हाँ
0: मौसम तो बना रहा बारिश वाला।
1: हाँ
0: मुना देखे जब घर से निकले लागे 5 मिनट बाद ऐसा बारिश होए लगा।
1: वह
0: वो तो
1: तो
0: कहा हम छाता लई के निकली रहे, ना
1: कब
0: तो
1: कब
0: भीज
1: बुनी परे लागे,
0: गए।
1: कब बंद हो जाए कोनो पता ना
0: बिल्कुल सही कहते
1: भी।
0: बहनी।
1: सही बात है। देखा ये है कि खेते कियारी के फायदा बाटे, यही बारिश से धान बढ़िया हुए, अब की धान के फसल है ना।
0: बिल्कुल
1: तो हम एक चीज आवत रहे तो देखे सरला काकी के,
0: हाँ
1: तो हमारे दिमाग में एक चीज आए कि ये कितना नियमित हैं। नियमित हैं मतलब कि वो सवेरे रोज जल्दी उठतीन, चाहे कोनो मौसम
0: हाँ देखो
1: रहा
0: इतना
1: है।
0: बुजुर्ग हो गए
1: कि
0: बादो।
1: हाँ कितना बुजुर्ग हो गए हैं, चाहे कोनो मौसम रहा है, ठंडी गर्मी।

0: बरसात जाड़ा, लेकिन वो सवेरे उठ के 4 बजे उठे के बाद नहाए धोए के पूजा पाठ कई के जल जल उल डारा थी नौका कुल कई के थोड़ के योग जरूर करथिन।
1: अच्छा
0: और तो मनबू न बहनी उनकर उम्र जौन बा 80 से ज्यादा बाटे, लेकिन
1: लेकिन
0: उनके
1: मतलब नियम
0: कौनो
1: तो एक तो
0: रोग
1: अपन
0: दोख
1: बनाए
0: नहीं।
1: हैं कि
0: हाँ
1: हमें इस समय पे उठे के बा या समय पे हमें पूजा पाठ करे के जल
0: करे के
1: चढ़ावे
0: बा
1: के
0: वो
1: योगा
0: उनकर
1: करे के
0: एक
1: जो।
0: आदत होई के बा कि उनकर दिनचर्या में शामिल बाटे। और
1: बिल्कुल
0: बहनी देखबो तो कि हमरे सबके अब कुछ न कुछ कतो गोड़
1: हाँ
0: पिरात बा, मूड़ पिरात बा,
1: घुटना
0: हाथ
1: दर्द
0: पिरात।
1: करता कुछ दर्द
0: हाँ
1: करता।
0: लेकिन उनकर अब है मतलब इतना फिट अहिनो कि उनका कोनो दिक्कत ना इन्हें।
1: बिल्कुल
0: तो यह नाते हम सोचे कि पनघटी पे चली और यह विषय पे चर्चा हम सभी जरूर करब कि
1: एक
0: एक
1: अच्छी
0: अच्छी
1: आदत
0: आदत
1: जिंदगी बदल
0: जिंदगी
1: सकती
0: बदल
1: है।
0: सकत है। तो
1: बिल्कुल
0: देखा उनकर ये अच्छी आदत उनकर जिंदगी बदल दिए बा। कहा
1: बिल्कुल
0: से कि देखा अच्छी आदत तो आजकल मनई छोड़ीन देह वजह से है
1: सही
0: ना।
1: बात है। और देखा गंगा बहनी, कहा जाता ना कि कोनो बड़ी सफलता के लिए पीछे मतलब हमेशा कोनो बड़ा रहस्य नहीं होता है,
0: हाँ
1: बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदत का लगातार साथ होता है।
0: बिल्कुल
1: कहीं हमारे जिंदगी में बहुत सी ऐसी
0: हाँ
1: चीज
0: ऐसा
1: होत
0: चीज
1: है
0: होता है।
1: कि जेका हम छोट समझित है
0: हाँ
1: और उका नजरअंदाज कर देत है। जैसे कि समय पर उठब, जैसे कहूँ ना सरला काकी के, समय
0: हाँ
1: पर उठब और बड़न के सम्मान करब, रोज कुछ नया सीखब, अपने काम के समय पर पूरा करब और सच
0: बिल्कुल
1: बोलब। कहे कि आदमी देखो आजकल फोन का जो युग है कि कहो आदमी बाय यहाँ और बोली कि हम कहूँ और है।
0: कहूँ और है बिल्कुल बनी देखा। तो धीरे धीरे मन इनके सोच बदलत बा, और जब सोच बदलत है ना तो व्यवहार बदल जात है,
1: बिल्कुल सही कहा तू
0: और जब
1: बनी,
0: व्यवहार बदलत है तो पूरी जिंदगी बदल जात है। यही वजह
1: बिल्कुल
0: से कहा गया बा कि बीज छोटा होत है लेकिन वही बीज बरगद बनत है ना।
1: बिल्कुल
0: तो देखा वही तरह एक छोटी सी आदत बहुत बड़ा परिणाम दे रही थे मन
1: सही
0: के।
1: बात है।
0: और कितना लोग हैं देखा, एक चीज तो अंदाजे होबू कि अलार्म लगाए के सोई गन ठीक बा, लेकिन जब वो
1: जब
0: सवेरे
1: बजी
0: बजे तो
1: तो
0: ओका
1: का बंद
0: बंद कह
1: करके
0: के
1: फिर
0: फिर
1: सोई
0: सोई गए है
1: गया।
0: ना। तो कितना लोग कहीं अच्छा बस 5 मिनट और सो जाइए,
1: और
0: आधा
1: पांच
0: घंटा
1: मिनट एक घंटा आधा
0: आधा
1: घंटा
0: हाँ
1: वैसा बदल
0: आधा
1: जाता
0: घंटा
1: है कि पता नहीं चला, लागत
0: पता
1: अभी
0: ना।
1: हम 5 मिनट नहीं सोए।
0: तो यही देखा फर्क होते जिंदगी में कि बड़ा बदलाव हम हमेशा बड़े फैसले से ना होते बल्कि छोटी छोटी आदत से शुरू होते है ना।
1: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी, अरे गंगा बहनी।
0: तो देखा जमुना बहनी की याद
1: हमसे
0: करे
1: मिली
0: तो
1: रही आज ना,
0: एकर मतलब तू
1: हम
0: गंगा
1: घर से
0: बहनी के
1: निकलत
0: कम
1: रहे,
0: याद करे तो
1: हम घर से निकलत रहे, हम रास्ता मिली गई।
0: अच्छा
1: हाँ देखा जब कोनो गदेल छोट है ना, वो रोज सुबह समय पर उठ के कोनो अच्छा आदत डालत है, जैसे उठत है तो अपन नहात है धोवत है सब कुछ अपन काम कर लेते हैं, अपन बस्ता जमाई लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं, तो उनके आदत बन जाते हैं। तो पहले तो
0: बिल्कुल
1: लागत है कि उन्हें 2-4 दिन कहे तो लागत है कि हम तो एक बेकार में उठ जाए थे थोड़े
0: बिल्कुल
1: और 5 मिनट और सो लिया कर, लेकिन जब ऐसा धीरे धीरे करे लागत है ना तो का होता है उनका आदत बन जाता है
0: आदत बन
1: और उनके
0: जाते बहनी।
1: दिनचर्या में
0: और
1: शामिल हो जाता है।
0: हाँ और उनका आदत कैसे बने कि जब महतारी बाप करी है तब आदत बने। और देखा हर एक हम तो सोचे थे कि हर एक मनई के एक मतलब रोज खाली 10 मिनट पढ़े और
1: हाँ
0: एक
1: कौनो
0: साल में मनई कितनी नई बातें सीख जाए है ना।
1: बिल्कुल सही कहा
0: और
1: तू
0: अगर क्यों 10 मिनट अपने माता पिता से दिल से बात करे तो रिश्ता कितना मजबूत होता है,
1: बिल्कुल
0: व्यायाम करे तो अगर शरीर कितना बदल जाता है
1: सही
0: ना।
1: बात है,
0: तो
1: एकदम सही कहा तू
0: अच्छी
1: बहनी।
0: आदत से खाली एक क्षेत्र ना बदलत बल्कि पूरी जीवन शैली बदल जाता
1: देखा
0: है।
1: कहा भी जाता ना कि आदत हमरे चरित्र के बनावत है
0: बिल्कुल
1: और चरित्र हमरे भविष्य के।
0: बिल्कुल बहनी
1: कहे कि अक्सर हम सब है ना जिंदगी बदले के लिए कोनो बड़ा मौके का इंतजार करी थे कि कोनो बड़ा मौका आवे तब वो का हम सब ओकर नियमित रूप से
0: हाँ बा
1: निभाएं।
0: कुछ बड़ा मौका मिले
1: हाँ
0: तब तब हम झंडा गाड़
1: सही बात है। और सोची था
0: दे।
1: कि जब सही समय आई तब हम मेहनत करब, मुना का कहा जाए ये तो जिंदगी के जोन है
0: हाँ
1: कोनो बड़ा मौका इंतजार ना ही करत है,
0: बिल्कुल ना
1: छोट
0: बहनी
1: छोट चीजें कोनो मिलत रहा है ओका अपनी जिंदगी में
0: और
1: लेत रहा है ओकर नियम बनावत रहा है कि हमें ये चीज करे के है।
0: वह तो हम कहे देखा वहीं के कुछ जने होते हैं देखा कहा से देखा वो बहुत बुद्धिमान बा है ना। लेकिन सच तो ये है कि बुद्धिमानी के शुरुआत जोन बा मतलब छोटी छोटी आदत से शुरू होत है और मंजिल तक पहुंचावत है आदत।
1: बिल्कुल सही।
0: तो देखा प्रेरणा मिलत है कि हो कि देख लिया सुन लिया थोड़ी देर के लिए आएगी मन में कि अरे हम तो इन्हीं के जैसे बनब, कितनी अच्छी बात है मतलब इनसे हमें
1: हाँ
0: प्रेरणा
1: क्यों कि
0: मिली।
1: देख के लगा था कि जैसे
0: हाँ
1: ये करते हैं वैसा हम करें तो
0: लेकिन
1: हम वो
0: एक दिन करे
1: आगे
0: मनई,
1: जावे
0: एक दिन करे मनई, 2 दिन करे, 3 दिन करे,
1: फिर छोड़ दे तो कुछ
0: लेकिन
1: नहीं मिले।
0: आदत जो है आदत रोज करवावत है। और जब
1: बिल्कुल
0: रोज मनई करवाए तो ओका सफल

0: में क्यों
1: रोक
0: रोक
1: नहीं
0: नहीं
1: सकत।
0: सकत। बिल्कुल देखा, बहुत लोग सोचा थे कि सकारात्मकता जोन बा वो जन्म से आवत है ना। हम तो ये सोचे थे कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज होती हैं जैसे हमारे अंदर सकारात्मक चीज के मतलब उत्पादन होते मन में, है ना। तो हर परिस्थिति में शिकायत करे की जगह समाधान ढूंढा, है ना,
1: बिल्कुल
0: हार माने की जगह दोबारा कोशिश करा।
1: सही बात ही ना कि एक बार गिर गए तो उठे ना, उठे
0: बिल्कुल
1: और आगे बढ़े।
0: बिल्कुल। तो आज ऐसे शुरुआत की हूँ तू और बहनी हरण भाई की, कोनो बड़ा वादा मत करा कि हम बस अब कल से एकदम, लेकिन एक अच्छी आदत चुना, समय पर उठा, रोज कुछ
1: बिल्कुल
0: ना कुछ अच्छी चीज पढ़े के चाहिए, व्यायाम करे के चाहिए और भगवान
1: परिवार
0: के धन्यवाद कहे के
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: परिवार के साथ समय बितावे के चाहिए,
0: समय
1: सबसे
0: बितावे
1: जरूरी
0: के
1: चीज जोन
0: चाहिए।
1: है।
0: बिल्कुल। तो कहे से कि देखा, बूंद बूंद से घड़ा भरत है और कदम कदम से सफर पूरा होता है
1: बिल्कुल
0: और आदत से इंसान महान बनत है।
1: सही बात कहो बहनी। तो चला हम तुम्हें ये बात पे एक ठो निक के गौने सुनवाई दी संदीप वर्मा बहनी से।
0: चला सुना जाए, बहनी हरण भी सुने।

0: सहारा
1: था, सही कहते हो।
0: तो अब एक ठो बातचीत पर अपने पनघटे पे, ग्रामीण महिलाओं के लिए जरूरी वित्तीय साक्षरता, अर्चना पांडे बहनी से जयश्री गुप्ता बहनी के बातचीत है, चला सुना
1: चला सुन लिया जा। बहनी अरे भी सुना।
2: देखा बहनी, आज की महिला घर संभाले के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति का मजबूत करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं बचत, स्वयं सहायता समूह, छोटे व्यवसाय और खेती किसानी से जुड़ी आर्थिक गतिविधि में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पैसे की सही योजना, बैंकिंग बचत, डिजिटल लेन देन और सरकारी योजना की जानकारी हो भी उतने आवश्यक। इसलिए आज हम बात करब ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता पर। आखिर वित्तीय साक्षरता का है? महिला अपने पैसे का सुरक्षित रखे, सही तरीके से इस्तेमाल करे के लिए किन बातन का ध्यान रखे? बैंक और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय किन सावधानी की जरूरत है? इन सब सवाल का जानने के लिए आज हम अपने पनघटे पे बुलाए हैं अर्चना पांडे बहनी का। अर्चना बहनी, आपके हमारे पनघटे पे बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना बहनी, सबसे पहले तो हम ये पूछे चाहब कि आखिर वित्तीय साक्षरता है का?
3: जी बिल्कुल, जैसा कि गाँव में जो हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनको धन की कमाई करना, बचत के तरीके, ऋण, बीमा, पेंशन और निवेश से जुड़े सही वित्तीय अर्थात पैसे रुपए के बारे में जानकारी प्रदान करना और उनको जागरूक करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए उन्हें वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, इसमें बैंकिंग एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित उपयोग, धोखाधड़ी से बचाव, साइबर फ्रॉड और अनावश्यक कर्ज से बचने में ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करना है।
2: बिल्कुल जी। तो अर्चना जी, वित्तीय साक्षरता तो हम लोग समझ लिए, पर हमारा अगला प्रश्न ये है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता आखिर जरूरी का है?
3: जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो हमारी महिलाएं हैं, आज महिला पुरुष दोनों को कमाना जरूरी हो गया है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि एक पुरुष ही कमा लेता था, घर का आय मतलब पूरा हो जाता था, खर्च चल जाते थे। लेकिन आज महिलाएं भी कमाना चाह रही हैं और ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। ऐसे में जो है बहुत सारे तरीके हैं, इसमें जो है महिलाएं बचत के तरीकों को अपनाती हैं, आपातकाल के समय उनकी जो निधि है वो किस तरह से वो मतलब कि खर्च करें, बैंक खाते का स्वयं संचालन करना सीखती हैं और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि पहले पुरुष ही निर्णय लेते थे,
2: बिल्कुल,
3: आज महिला भी निर्णय लेने लगी है। ठीक, और महिलाएं इससे साक्षर हो रही हैं वित्तीय रूप से, इसमें उचित जो है बीमा और पेंशन का लाभ ले रही हैं और महिलाएं साइबर धोखाधड़ी से बचाव, जैसे ऑनलाइन खाते से कैसे पैसा निकाला जाए, उनका पैसा निकालते समय कोई देख ना पाए, यूपीआई डिजिटल भुगतान की जानकारी, ये सब चीजें हैं जिससे महिलाएं जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर वित्तीय साक्षर होंगी, जागरूक होंगी तो ठीक रहेगा।
2: बिल्कुल
3: जी।
2: तो अश्विनी, एक बात और कि जैसे ग्रामीण महिला है तो उनके लिए जो वित्तीय साक्षरता में आवे वाली कुछ बाधाएं भी हैं।
3: हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बाधाएं तो हैं, रुकावटें तो बहुत सारी हैं। इसमें बहुत सारी बाधाओं में दो चार मैं बताती हूँ आपको, जैसे महिलाओं का कम पढ़ा लिखा होना, उनमें जागरूकता की कमी होना और डिजिटल तकनीकी अर्थात फोन सही रूप से न चला पाना या उसको कम मात्रा में सीखे हुए होना और साइबर ठगी का खतरा उनको लगे कि हाँ हमें कोई ठग ना ले, इस तरह से आय का नहीं होना, आय का अनियमित होना और ऋण और बीमा की कम समझ होना, ये सारी जो बाधाएं हैं वो वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सारी बाधाएं हैं।
2: बिल्कुल, देखा हमारा बहनी और उनका जो है पढ़ा लिखा भी आवश्यक होगा, लेकिन देखा पिछले कुछ समय में शिक्षा पर इतना जोर दिया गया है कि बहनी अरन चाहे तो अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते आसानी से भी। जैसे कि हम लोग वित्तीय साक्षरता के बारे में बात करें, पर अब हम लोग बात करब कि जो इनसे जुड़ी कुछ योजनाएं भी हैं वित्तीय साक्षरता से, है ना?
3: देखिए, हमारा जो हमारी जो सरकार है वो भी चाह रही है कि महिलाएं वित्तीय रूप से साक्षर हों, उनको पैसे के लेन देन, ऋण, बीमा, पेंशन, ये सारी सब कुछ चीजें आए
2: मिले
3: और वो सीख सके, ठीक है, अपने रोजगार को अपने ग्रामीण स्तर पे ही अपना सके। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें से दो चार योजनाओं की मैं बात करूंगी, जिनमें से कि ई सखी योजना है, बीसी सखी योजना है, प्रधानमंत्री

0: गंगा बहनी
1: हाँ बहनी
0: गौने कैसन रही?
1: एकदम बढ़िया, मन खुश हो। ये देखा बातचीत के साथ एक गीत गौने होत रहा था, तो पनघट एकदम गुलजार।

0: जनधन योजना है और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है। इनमें से मैं पहले बीसी सखी योजना की बात करती हूँ। तो ये योजना जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, जो बीसी सखी योजना है। इसमें इसका मतलब होता है बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग, जिसमें कि बैंक बैंक का एक संवाददाता या एजेंट या प्रतिनिधि कह लीजिए। इसका कार्य होता है कि बैंक और ग्राहकों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करे। इसमें मिशन वन ग्राम पंचायत वन बीसी सखी मॉडल को अपनाया गया है। इसमें जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करके बीसी सखी बनाया जाता है, ठीक। और ये बीसी सखी जो है एक ऐसी, मतलब कि चाहे महिला कह लीजिए या एक एजेंट कह लीजिए, जो कि ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में बैंक की सेवाओं को मतलब पहुंचाने का कार्य करती हैं,
1: जी
0: ठीक। और बीसी सखी को जमा करना, यानी कि पैसा जमा करना, पैसे को निकालना, और ग्रामीण महिलाओं को जो है कैसे साक्षर बनाया जाए या इस योजना के बारे में किस तरह से बताया जाए, ठीक। तो बीसी सखी योजना में महिलाओं को जो है एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है प्रशिक्षण का। और बीसी सखी योजना को शुरुआत के 6 महीनों तक 4,000 रुपये उनको तनख्वाह के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। और फिर उसके बाद में उनको 6 महीने के बाद जो है जब उनका लेन देन बढ़ जाता है तो उन्हें कमीशन की व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक। और इसका सीधा जो प्रभाव है ग्रामीण महिलाओं की बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता पर पड़ता है,
1: जी
0: ठीक। मार्च 26 की जो रिपोर्ट आई है बहन जी, उसमें यूपी में लगभग 40,000 महिलाएं बीसी सखी के रूप में कार्य कर रही हैं इस समय, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से।
1: अमर बनी रहने में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही
0: जी
1: है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ठीक। और इसी तरह से मैं इसी सखी योजना की बात करती हूँ, ठीक है, जिसे राजस्थान में चलाया गया, क्योंकि राजस्थान बहुत पिछड़ा इलाका है।
1: जी
0: और ई सखी का मतलब होता है कि मोबाइल से ही सारा कार्य करना है, जैसे पैसे का लेन देन, पैसा ट्रांसफर करना और ऑनलाइन करना या कोई रोजगार अपनाना,
1: यानी
0: ये
1: कि
0: सब
1: मोबाइल
0: कुछ।
1: पर ही सब कुछ उपलब्ध है उनके
0: जी
1: लिए।
0: सब कुछ, इसीलिए ई सखी योजना इसे कहा जाता है, ठीक। अब मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में मैं आपको बताऊं, राज्य की करीब 1,06,00,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर सीधे वित्तीय प्रणालियों का हिस्सा बनाया गया है।
1: जी
0: वित्तीय प्रणाली का मतलब कोई रोजगार, रोजगार में जैसे इस योजना में उद्यम के रूप में या रोजगार के रूप में डेयरी योजना है।
1: जी
0: डेयरी योजना आप समझ रही होंगी।
1: बिल्कुल समझे। दूध
0: हाँ
1: उत्पादन के लिए
0: हाँ
1: कुछ
0: हाँ
1: ना।
0: ठीक। सिलाई है, हस्तशिल्प है और सौर ऊर्जा के उत्पादों, ठीक है, जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसमें महिलाओं को। इसमें एक राज्य एक उत्पाद,
1: जी
0: ठीक, महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। हम लोग कभी शिल्प मेले वेले में गए हैं
1: जी
0: तो वहां पर हाथ से बनी हुई बहुत सारी
1: हस्तकला के
0: चीजें।
1: कई सारे हुआ
0: जी
1: जो ना
0: हाँ,
1: ऐसे मेले में
0: इससे,
1: मिल जाते
0: हाँ, इसके
1: उदाहरण।
0: माध्यम से हस्तकला को भी बढ़ावा दिया जा रहा है
1: जी
0: और एक राज्य एक उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर भी बनाया जा रहा
1: बिल्कुल। और
0: है।
1: देखा वित्तीय रूप से साक्षर भी बनाते हैं, वित्तीय रूप से
0: जी
1: मजबूत भी बनाते हैं।
0: जी और इसमें जान लीजिए कि जो ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, इसमें हम कह सकते हैं कि इससे नियमित बचत को बढ़ावा मिलता है। महिलाएं लगातार अपने पैसे का बचत करती हैं क्योंकि वो लगातार रोजगार मिल रहा है उनको,
1: जी
0: ठीक है, और छोटे छोटे उद्यम अपना ही रही हैं। इसमें बीमा भी होता है, पेंशन भी होता है। और मैं आपको बताऊं कि यह जो है, ये जो योजना है सरकार की, वित्तीय साक्षरता के साथ साथ बेरोजगारी को समाप्त करता है। और मजबूत राष्ट्र की सशक्त नींव रखता है।
1: बिल्कुल रचना जी, जब बहनिया ऋण मजबूत हो तो राष्ट्र मजबूत हो बे करे।
0: जी जी हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है।

0: और इसी के साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ठीक, ये भी ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम
1: कदम
0: है,
1: है
0: ठीक
1: बिल्कुल।
0: है। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसे जीरो बैलेंस खाता कहते हैं, ठीक। इसमें ये होता है कि अगर महिला के खाते में न्यूनतम धनराशि या जीरो बैलेंस है, तब भी उसका खाता खुल जाएगा।
1: ये तो बड़ी अच्छी
0: हाँ,
1: बात है,
0: मतलब अगर उसके पास पैसे नहीं, तब भी वो अपना खाता खोल
1: खुल
0: सकती है,
1: बिल्कुल।
0: ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें डीबीटी एक पॉइंट है, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर। इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत बिचौलियों की समाप्ति हो गई है, सरकार और जनता के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता है इस।
1: यानी कि पहले बीच में कोनो
0: हाँ
1: इस तरह से एक
0: हाँ
1: फायदा
0: दलाल
1: भी
0: होते
1: उठा,
0: थे,
1: बिल्कुल फायदा
0: हाँ,
1: उठाए
0: लोग
1: सकते।
0: पैसा, जनता का पैसा लोग ले लेते थे, तो इसलिए सरकार ने आधार से जो है बैंक अकाउंट को जोड़ दिया है। तो जो पैसा होता है, जो काम का जो उनको अधिकार मिलता है महिलाओं को, वो सीधा उनके खाते में आ जाता है।
1: जी।
0: इस योजना की जो बहुत बड़ा लाभ है यही है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है, इसको शुरू किया गया था 1 जनवरी 2013 को,
1: जी।
0: ग्रामीण महिलाओं के लिए ही शुरू किया गया, ठीक है। और इसमें जो है स्कॉलरशिप, पेंशन और अन्य जो वित्तीय सहायता है, वो लाभार्थी के खाते में आता है सीधे सीधे रूप में,
1: जी।
0: ठीक। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन में, वित्तीय रूप से साक्षर करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है,
1: भूमिका है।
0: ठीक।
1: अर्चना जी, जब हम लोग वित्तीय साक्षरता के बारे में जानें, ओके, योजनाओं के बारे में भी जानें, पर अब हम आपसे एक प्रश्न ये भी करब कि देखा, जब वित्तीय साक्षरता जो ना बढ़ावे के
0: जी
1: कुछ तरीका भी होता है
0: जी
1: ना, तो
0: हाँ हाँ
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: ऐसे कुछ तरीका जो उनकी,
0: हाँ
1: जैसे कि
0: हाँ
1: वित्तीय साक्षरता बढ़े आगे और ज्यादा से ज्यादा लोग एक बारे में जानकारी प्राप्त
0: जी
1: करें, हमारे
0: जी
1: बहनी लोगों के ज्यादा से
0: जी
1: ज्यादा फायदा हो, एक के
0: जी
1: बारे में भी बतावें।
0: बिल्कुल। देखिए, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रमुख तरीके हैं, जैसे ग्रामीण महिलाओं के स्तर पर ही बात हो रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इनको सही वित्तीय, सही जानकारी और सही निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। और इसमें बीसी सखी जो योजना है, वो महत्वपूर्ण पहल के रूप में है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में चलाई जा रही है।
1: ठीक।
0: और इसमें जो है, जैसे डिजिटल वित्तीय साक्षरता में यूपीआई, ओटीपी, पिन और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह में जो बैठकों में जो वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाती है, और डोर टू स्टेप बैंकिंग योजना, यानी कि बीसी सखी जो हमारे द्वार से द्वार तक जाती हैं, लोगों को साक्षर करती हैं, ये जानकारी प्रदान करती हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक। और ऋण और ब्याज दर रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था है इसमें, साइबर अपराध से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है,
1: जी,
0: साइबर ठगी तो आज,
1: आजकल
0: हाँ
1: आम बात हो गई है अर्चना
0: जी
1: जी की। देखा
0: हाँ
1: साहब, हमारे बहनी रे बड़ी सीधी सादी होते
0: हाँ
1: तो
0: बहुत
1: वो,
0: भोली भाली
1: हाँ,
0: होती
1: भोली
0: हैं,
1: भाली होते और
0: किसी
1: उनका
0: के ऊपर
1: देखा
0: बहुत जल्दी विश्वास कर
1: विश्वास कर
0: लेती
1: लेते,
0: हैं
1: तो एक तरह में तो उनका अधिकतर जो ने धोखाधड़ी के सामना करे
0: जी।
1: पड़ा थे।
0: हाँ
1: तो अर्चना बहनी, बहनी और इनके लिए कोई संदेश है आपके पास?
0: हाँ देखिए, हम बहुत अच्छी बात है, मैं कहना चाहूंगी कि जो ग्रामीण में हमारे महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनको वित्तीय साक्षरता, आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन, ये सब महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हैं, जिसमें महिलाएं बचत करें, ऋण करें, बीमा और पेंशन और डिजिटल भुगतान का बेहतर उपयोग करें, सीखें उन चीज़ों को।
1: बिल्कुल।
0: और इससे क्या होगा, उनके वित्तीय समावेशन के साथ ही उनमें, महिलाओं में आर्थिक निर्णय लेने की
1: क्षमता
0: क्षमता
1: बढ़ जाए,
0: बढ़ेगी,
1: बिल्कुल।
0: आजीविका बढ़ेगा और ग्रामीण अंचलों में वे रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी,
1: जी,
0: ठीक है।
1: बिल्कुल।
0: इससे बेरोजगारी दूर होगी, और जब बेरोजगारी दूर होगी तो हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित कर पाएंगे।
1: अर्चना जी, आप हमारे पनघटे पे आई और वित्तीय साक्षरता से जुड़ी इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे बहनी लोगन के दी। हम आशा करी थी कि ऐसे उनका काफी मदद

0: मिली और अपने आप का वित्तीय रूप से साक्षर भी बनाई है और मजबूत भी बनाई है। तो आप हमारे पनघट्टे पे आई, एक के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चंपा बहनी,
3: हाँ गंगा बहनी,
2: देखा अर्चना पांडे बहनी से जयश्री गुप्ता बहनी कितना फरियाए फरियाए के पूछिन और अर्चना बहनी बताइन भी,
3: बिल्कुल
2: है ना। उम्मीद है कि बहनी हरन सुने हुई हैं ओका अब ओका
3: अमल
2: अमल करी हैं। अब देखा इतनी बढ़िया बातचीत तू सुनो है तो अब एक ठो गव नहीं तो बनत है,
3: बिल्कुल
2: है ना। तो चलो एक ठो झूमर सुन लिया जाए संदीप मां वर्मा बहनी से,
3: चलो सुन लिया जाए।

0: चंपा
1: गंगा बहनी तन ही गौ नहीं रहा
0: बहुत नहीं गौ नहीं देखा, गीत गौ नहीं होत रहा था, मन कितना हरियर हो जाता है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बतावा, गीत गौ नहीं तो हो ही है, अब चलो अपने पनघटे के रसोईया पे चला जाए।
1: बिल्कुल, हम तो सभी अपने पनघटे पे आई और रसोईया में नहीं जा नहीं सकत।
0: तो ये बतावा कि आज अपने पनघटे के रसोईया से कौन जानकारी तू ले आए हो?
1: आज हम लाए पनघट रसोईया में कम तेल में स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनावे।
0: अच्छा, तो जल्दी जल्दी बताओ कहाँ से, कि देखा तेल मसाला ज्यादा आजकल नुकसानों बहुत करत है ना, तो कम तेल में बतावा जैसे बहनी हरन भी बनावे और हम सब बनावा जाए कम तेल में। तब
1: बिल्कुल देखा, सामग्री है, तेल ले लें 1-2 चम्मच और आधा चम्मच जीरा।
0: अच्छा।
1: एक चुटकी हींग और एक प्याज ले लें बारीक कटा हुआ।
0: अच्छा।
1: अब 1-2 हरा मिर्चा।
0: अच्छा।
1: एक टमाटर कटा हुआ।
0: हाँ।
1: और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच धनिया पाउडर।
0: अच्छा।
1: आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक ले लें स्वाद के अनुसार।
0: अच्छा।
1: और आधा चम्मच गरम मसाला
0: ओ।
1: और हरी धनिया पत्ती ले लें। अब देखा सब्जी कौन बनावे के है हम सबके, वो तो अपने हिसाब से ले लें। आलू गोभी बनाई है, आलू टमाटर बनाई है, या फिर लौकी बनाई है, लौकी भुजिया बनाई है, फिर रस्से वाली
0: परवल
1: बनाई
0: हो
1: है,
0: गया।
1: भिंडी बनाई है।
0: हाँ।
1: हाँ, जो भी सब्जी बनावे को है
0: हाँ।
1: वो हिसाब सब्जी अपन ले लें।
0: हाँ।
1: अब बनावे की विधि है, कढ़ाइया में 1-2 चम्मच जो तेल डाले को है ओका डाल दें। वाके बाद जीरा डाल दें, जीरा चटक जाए हींग डाल दें। ओके बाद से प्याज डाल दें, जन बारीक कटा हुआ प्याज है, हरा मिर्चा डाल दें, जब सुनहरा हो जाए।
0: तब
1: ओके
0: तो
1: बाद
0: को
1: में
0: खूब अच्छे से भून लें।
1: हाँ उसका भून ले सुनहरा हो जाए, और मैं मसाला डाल दें।
0: अच्छा।
1: मसाला के 2-3 मिनट तक बढ़िया से भून लें। अब टमाटर डाल दें, टमाटर के टमाटर जब डालें तो हल्का सा नमक डाल दें, जिससे टमाटर बढ़िया से गल जाए।
0: अच्छा।
1: ओके बाद से सब्जी जौन भी डाले को बताए ना, गोभी
0: हाँ,
1: डाले
0: जौन भी
1: आलू, हाँ
0: सब्जी
1: जौन भी
0: बनाओ एक
1: सब्जी
0: बने
1: डाले
0: के।
1: है
0: हाँ।
1: रसे वाली मसाले वाली, ओका डाल दें। और सब्जी डाल के बढ़िया से मिला लें,
0: अच्छा।
1: ओका थोड़ा सा पानी डाल दें, जैसे रसा रखे हुए वही हिसाब से।
0: हाँ, रसा रखे हुए, रसे वाले नहीं तो
1: नहीं
0: सूखी
1: तो
0: खाए के
1: हाँ
0: वो तो
1: मसाला
0: सूख।
1: में सूखा
0: हाँ।
1: जैसे खाए हुए तो वो डाल दें। ओके बाद से पानी डाल दें थोड़ा सा और नमक डाल दें।
0: अच्छा।
1: नमक वही हिसाब से डालें से टमाटर डालें ना, टमाटर जब
0: हाँ
1: गलत
0: हाँ हाँ
1: गले के
0: हाँ
1: लिए
0: हाँ
1: वही हिसाब से नमक डालें। ओके बाद उसका ढक के पका लें, और जब सब्जी पक जाए तो मैं गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल के मिलाई के गैस बंद कर दें।
0: कितना बढ़िया
1: हाँ,
0: बताओ
1: सब्जी
0: देखा।
1: बन गई कम तेल में।
0: और आजकल तो तेल इतना, तेल और मसाला ज्यादा डाल दे तो कितना नुकसान करत है मन
1: बिल्कुल।
0: इनके।
1: और देखा अगर लौकी की भुजिया बनाओ है तो का जीरा मिर्च का तड़का दें, थोड़ा सा तेल डाल के 1-1.5 चम्मच जो डाले को है ओका जब लौकी डालें कढ़ाई में तो ही साथे नमक डाल दें, जिससे वो
0: अच्छा।
1: पानी छोड़त रही
0: हाँ हाँ
1: और लौकी बढ़िया से गल जाए।
0: अच्छा। तो देखा कितना बढ़िया बढ़िया बताओ कि चाहे जो सब्जी बनाओ लेकिन कम तेल मसाला
1: हाँ
0: बनाओ
1: थोड़ा
0: तो
1: सा तेल डाल,
0: फायदेमंद भी
1: हाँ
0: हुए।
1: फायदेमंद भी हुई।
0: तो तू इतना बढ़िया के बताओ, तो हम तो कब बढ़िया से सोचे थे एक ठो गीत सुनवाई दी दिल्ली 6 फिल्म से रेखा भारद्वाज जी की आवाज में, चला सुना जाए, बहनी हरन भी सुने।
1: चला सुन लिया जाए।

0: गंगा
1: चंपा
0: बहनी
1: कितना नी गाने सुना हूँ मैं तू
0: तो हमारे इतनी अच्छी सखी हो कि दोनों जनी एक के साथ बोली थे
1: इनका नाम ले था
0: देखा सखी सहेली रहे तो ऐसे रहे ना तो डर रहा है
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही तो देखा कितना नेक गीत रहा ना
1: बिल्कुल कहा तो बहुत बढ़िया गाने सुना हाँ। हमारा तो मन खुश हो गया
0: लेकिन घरे जाएगा सास नाराज जरूर हो जाए आज है ना चलो ठीक बा तो पनगिटे पे एक ईमेल संदेश जो पहले सुन लिया जाए तो फिर और बतियावा जाए बहनी हरन से
1: चलो सुन पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: panghatprogram@gmail.com स्पेलिंग है PANGHATPROGRAME@gmail.com panghatprogram@gmail.com एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौने बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
1: गंगा बहनी
0: हाँ बहनी
1: हम सबके बहनियन के भी इंतजार रही
0: बिल्कुल इंतजार रहा था देखा पनघटे पे आवे के इस, मतलब मन कहा था कि सखियन मिली है बातचीत होए
1: मौसम लेकिन हम सब घर से अपन पनघटे चली आई थी
0: पनघटे चली आई थी
1: चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कितनो
0: घाम रहा कुछ हो मौसम रहा है पनघटे पे आए के बाद मन देखा इतना खुश हो जाते बहनी हरन से बतियाए के
1: बिल्कुल
0: की जाए के मन बिल्कुल ना कहा
1: इतना अच्छा अच्छा हम सब गाँव नहीं बजवाई थे इतनी अच्छी अच्छी बातचीत करी थे
0: बिल्कुल
1: मन एकदम बीत जाला कि पता नहीं चला था
0: बिल्कुल अच्छी अच्छी जानकारी अच्छे अच्छे गीत के साथ है पनघट के पनघट के बहुत है पनघटे पे हम सब इतना बढ़िया बढ़िया बतिया ही थे और देखा रसोईया घर से इतना बढ़िया स्वाद के बाद जानकारी के बाद सेहत के बाद
1: सही बात है
0: तो अच्छा कितना लागत है
1: बिल्कुल
0: लेकिन पनघटे पे आए के

0: बाद देखा इतनी सखी ना अपन जौन है, इन कितना मन से सुनत हिन कि पनघटे पे काव काव जात बा। तो अपन प्रतिक्रिया जरूर दें जैसे हमें सबके भी संबल मिले, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा
0: तो अब देखा चले के बेला होत बा। बहनी हरन से राम राम किया जाए। राम
1: राम बहनी हरे।

ग्रामीण बहनें अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए

0: में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को

0: सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहाँ चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी

0: मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए देवी गीत हरीश चंद्र पांडे और साथियों की आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे खेमटा, हरीश चंद्र पांडे और साथियों की आवाज में। लीजिए अब सुनिए इन्हीं की आवाज में नकटा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं। प्राइमरी चैनल पर हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, सुनते रहिए विविध भारती।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। धरती के गीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लालकेश्वर प्रसाद के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में गंगा गीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम

लालकेश्वर प्रसाद के गाए इस विदेशिया के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

हेलो दोस्तों, बारिश की इन नटखट बूंदों ने और चल रही मौसम में इन ठंडी ठंडी हवाओं ने आज मौसम को कुछ यूँ खूबसूरत बना दिया है कि मन जैसे कह रहा है बस खिड़की के पास बैठ जाएं, चाय की चुस्की लें और सुनते रहें अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम। शाम का ये सुहाना वक्त, आसमान में बादलों की हल्की सी चादर, मिट्टी की सूंधी खुशबू और रेडियो की गर्माहट, और इन सब के बीच मैं हूँ आपके साथ, आपका होस्ट एंड दोस्त यानी आपका अभिषेक। तो साथियों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये शाम सिर्फ बारिश में भीगने की नहीं होगी, बल्कि बातों की, संगीत की, विचारों की और कुछ खूबसूरत एहसासों में भीगने की शाम होगी। साथियों, कभी बारिश हमें पुराने किस्सों तक ले जाती है, कभी किसी धुन की याद दिलाती है और कभी मन में नए सपनों की खिड़की खोल देती है। और साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, शायद ही उससे कोई युवा साथी अनजान हो। जी हाँ, आज बात होगी सिनेमा की, वही सिनेमा जो कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी रोमांचित करता है और कभी थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी हमारे मन में कोई सवाल छोड़ जाता है। साथियों, सोचिए ज़रा, अंधेरा सा कमरा, सामने बड़ी सी स्क्रीन, चारों तरफ बैठे दर्शक और फिर अचानक शुरू होती है कहानी। कुछ घंटों के लिए हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं, कभी किसी किरदार के साथ हंसते हैं, कभी उसके संघर्ष में खुद को तलाशते हैं और कभी उसकी जीत पर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो जीत हमारी अपनी हो। लेकिन सिनेमा सिर्फ 2-2.5 घंटे का मनोरंजन है क्या? ये हमें सोचना चाहिए, शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि सिनेमा की असली ताकत उस समय दिखाई देती है जब फिल्म खत्म होने के बाद भी उसकी कहानी हमारे साथ साथ पैरेलल चलती रहती है। साथियों, भारत में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का मीडियम नहीं रहा है, इसने समाज की बदलती तस्वीर को भी पर्दे पर बखूबी दिखाया है। अलग अलग दौर में फिल्मों ने परिवार, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण जीवन, युवाओं के सपने, सामाजिक भेदभाव और बदलते रिश्तों जैसे कई विषयों को हम सभी के सामने रखने का काम करता रहा है। युवा दर्शकों के लिए तो सिनेमा एक तरह से समाज को देखने की खिड़की भी बन सकता है। किसी फिल्म के जरिए हमें ऐसी जगहों, लोगों या परिस्थितियों के बारे में पता चलता है जिनसे हमारा प्रत्यक्ष परिचय शायद पहले कभी ना हुआ हो, या फिर किसी फिल्म का कोई किरदार हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है, कोई कहानी हमें असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना सिखाती है, और कोई फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस समस्या को हम सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं, शायद उसके पीछे की पूरी ज़िंदगी उसमें छिपी हुई होती है। और यही सिनेमा की खूबसूरती है और ये सवाल जो हम सभी को ये सवाल पूछना सिखा सके कि आखिर हमें समाज में क्या करना चाहिए, और जो भी सिनेमा हम देखते हैं, जो भी चीज़ें उनसे सीखते हैं, हम दूसरों को उनसे क्या सीख देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात ये भी है कि हर फिल्म में दिखाई गई चीज़ वास्तविक जीवन की सच्ची तस्वीर हो, ये ज़रूरी भी नहीं होती। फिल्म कहानी होती है, उसमें कल्पनाएं होती हैं, नाटकीयता होती है, और कई बार चीज़ों को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए एक युवा दर्शक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सिर्फ फिल्मों को देखे नहीं, उन्हें समझे, महसूस करे। श्रोता साथियों, बहुत सारी बातें करेंगे इस खास विषय पर, लेकिन

वेलकम बैक दोस्तों। हम बातचीत कर रहे थे युवा और सिनेमा के बारे में कि कैसे युवाओं के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में सिनेमा मनोरंजन से बदलाव की स्थिति तक पहुंच रहा है। साथियों, आज सिनेमा देखने का तरीका काफ़ी बदल गया है। पहले फिल्म देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था, पर फिर टेलीविज़न आया और फिल्में घर घर तक पहुँच गईं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल स्क्रीन ने सिनेमा को हमारी पॉकेट तक पहुँचा दिया है। एक क्लिक और दुनिया भर की कहानियाँ हम सब के सामने। इस बदलाव ने युवाओं को अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों की फिल्मों से परिचित होने का मौका दिया है। अब कोई युवा भारत के किसी छोटे शहर में बैठकर दुनिया के दूसरे हिस्से की कहानी देख सकता है, अलग भाषा के सिनेमा को समझ सकता है और नए तरह के विचारों से परिचित भी हो सकता है। यानी सिनेमा की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है अब, और इतनी बड़ी दुनिया में चुनाव की जिम्मेदारी भी हमारे सामने बढ़ गई है। जैसे आज हमारे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि विकल्पों की भरमार है। तो ऐसे में हमें ये तय करना होता है कि हम अपना समय किस तरह के कंटेंट को दे रहे हैं और उसका हमारी सोच पर, हमारे काम पर, हमारी जीवन शैली पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि जो हम लगातार देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी धारणाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए मनोरंजन ज़रूरी है, लेकिन जागरूक मनोरंजन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, सिनेमा बदलाव का मीडियम कैसे बन सकता है, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी फिल्म में एक ऐसा युवा कैरेक्टर है जो कई बार असफल होता है। उसके आसपास के लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को समझता है, फिर प्रयास करता है और धीरे धीरे अपनी राह फिर बनाता है। अब हो सकता है फिल्म खत्म होने के बाद हम उस किरदार की कहानी भूल जाएं, लेकिन उसके संघर्ष की भावना हमारे भीतर रह जाए, और शायद यही सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार एक किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, कोई भाषण हमें प्रेरित करता है, और कभी कभी किसी फिल्म का सिर्फ एक दृश्य हमारे भीतर कई सवाल पैदा कर जाता है। सिनेमा हमें हमेशा जवाब नहीं देता, कई बार वो हमें सही सवाल पूछना भी सिखाता है। और युवाओं के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर किसी बड़े आंदोलन से नहीं, बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है। क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? इस सवाल से भी हम समझ सकते हैं और समाज में तरह तरह की चीज़ें हम अपने उस सिनेमा और साहित्य के जरिए भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: दोस्तों, अगर कुछ हम और बातें करें इस बदलते दौर में, कैसे युवाओं के साथ सिनेमा बदल रहा है और उसमें हमारे जो युवा साथी हैं वो कैसे भाग ले रहे हैं या वो किस तरह से सिनेमा का हिस्सा बन रहे हैं, तो साथियों इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज हम सभी के पास मोबाइल कैमरा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इन सभी प्लेटफॉर्म ने युवाओं की कहानी को, उनके रास्तों को और आसान बना दिया है। अब कहानी कहने के लिए हमेशा बड़े स्टूडियोज़ की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा सा कैमरा, एक अच्छा विचार और उसे प्रस्तुत करने की समझ भी किसी कहानी को लोगों तक पहुंच सकती है और उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो पॉडकास्ट हो या कहानी के माध्यम से हो या शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हो, हम देश दुनिया तक लोगों के सामने आज पहुंचा सकते हैं। यानी साथियों, आज का युवा केवल सिनेमा देखने वाला मूक दर्शक नहीं है, वो कहानी कहने वाला भी बन सकता है। वो अपने शहर की कहानी बता सकता है, अपने गाँव की संस्कृति को दुनिया तक पहुँचा सकता है, किसी सामाजिक मुद्दे पर छोटी फिल्म बना सकता है या अपनी क्रिएटिविटी से कोई नई कहानी सामने ला सकता है। और शायद यही वो जगह है जहां सिनेमा मनोरंजन से आगे बढ़कर अभिव्यक्ति और बदलाव का मीडियम बन जाता है। लेकिन बदलाव का मतलब हमेशा हम ये सोचे कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, तो ऐसा भी नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी विषय पर सोचने के लिए प्रेरित कर देना भी बदलाव की ही निशानी है। किसी युवा को अपने सपने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देना भी बदलाव है। किसी सामाजिक समस्या को लेकर संवेदनशील बना देना भी एक बदलाव की निशानी है, उसकी पहचान है। सिनेमा साथियों, अगर हमें कुछ देर के लिए मनोरंजन देता है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोचने पर फिर हमें मजबूर भी करता है, तो शायद उसने अपना सही और सार्थक काम कर दिया। और उसके बाद बारी होती है हमारी कि उस सिनेमा को या उस साहित्य को हमने कैसे स्वीकार किया और उससे सीख लेकर हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने इस देश दुनिया को क्या सीख दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत का सार शायद यही है कि सिनेमा को सिर्फ पर्दे पर चलती तस्वीरों की तरह मत देखिए, कभी कभी उसके पीछे छिपी कहानी को भी समझिए, किरदारों के फैसलों पर सोचिए, उनके संघर्षों को महसूस कीजिए और सबसे ज़रूरी, जो कुछ देख रहे हैं उसे अपनी वास्तविक ज़िंदगी के संदर्भ में परखिए, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई हर चीज़ को अपनाना ज़रूरी नहीं और हर कहानी को सच मान लेना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर अच्छी कहानी से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर संभव हो जाता है। सिनेमा हमें सपने दिखा सकता है, सवाल दे सकता है, संवेदनशील बना सकता है और कभी कभी बदलाव की शुरुआत भी कर सकता है। और शायद इसीलिए कहा जा सकता है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं चलता, कभी कभी वो हमारे विचारों में हमारे साथ साथ चलता है। तो अगली बार जब

दोस्तों, इस प्यारे से और एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ अब बढ़ते हैं हम आप आज के अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है प्रेरणा पुंज। और आज के प्रेरणा पुंज में

कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने उस समय भविष्य की कल्पना की जब दुनिया के लिए वो भविष्य अभी तक बहुत दूर की बात हुआ करती थी। एक ऐसा गणितज्ञ जिसने मशीनों से सिर्फ गणना करवाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि ये सवाल भी पूछा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलन ट्यूरिंग की। 23 जून 1912 को लंदन में जन्मे एलन ट्यूरिंग बचपन से ही मैथ्स और साइंस में गहरी रुचि रखते थे। उनके लिए सवाल केवल किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, वो सवालों के पीछे छिपी संभावनाओं को हमेशा तलाशते थे। किसी समस्या का उत्तर मिल जाने के बाद भी उनका मन शायद ही पूछता था, क्या इसे और किसी तरीके से समझा जा सकता है? और युवाओं के लिए उनकी कहानी की पहली सीख शायद यही से शुरू होती है कि हमें हमेशा अपनी जिज्ञासाओं को जीवित रखना चाहिए, उन्हें बढ़ा कर रखना चाहिए, क्योंकि नई खोज अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां कोई व्यक्ति सामान्य सवालों से आगे बढ़कर कोई नया सवाल पूछता है। ट्यूरिंग ने गणित और कंप्यूटर विज्ञान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1936 में उन्होंने एक सैद्धांतिक मशीन की अवधारणा प्रस्तुत की जिसे आज ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। ये वास्तविक मशीन नहीं थी, बल्कि ये समझने का एक गणितीय मॉडल थी कि किसी समस्या को चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के माध्यम से कैसे हल किया जा सकता है। आज हम कंप्यूटर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग की दुनिया में जीते हैं, लेकिन ये याद रखना दिलचस्प है कि कंप्यूटिंग की कई बुनियादी अवधारणाओं पर ट्यूरिंग ने उस समय विचार किया था जब आधुनिक कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी नहीं हुआ करते थे। यानी कभी कभी भविष्य को देखने के लिए भविष्य में जाना जरूरी नहीं होता, कल्पना करने की क्षमता ही काफ़ी होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने ब्रिटेन के कोड तोड़ने के प्रयासों में अपनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो ब्लेचली पार्क में जर्मन सैन्य संचार में इस्तेमाल होने वाले एनिग्मा कोडों को समझने के प्रयास में शामिल थे। उनके साथ काम करने वाले अनेक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रणालियों के सामूहिक प्रयासों ने इस काम में योगदान दिया था। ट्यूरिंग ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण तकनीकी और गणितीय योगदान दिया था। यहाँ से युवा साथियों के लिए एक और सीख सामने आती है, बड़ी उपलब्धियाँ अक्सर अकेले नहीं बनती। किसी समस्या को हल करने के लिए ज्ञान, सहयोग, धैर्य और लगातार प्रयास, इन सब की ज़रूरत होती है। युद्ध के बाद भी एलन ट्यूरिंग की रुचि कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में बनी रही। 1950 में उन्होंने एक प्रसिद्ध शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ये विचार रखा कि मशीनों के सोचने उनके सवाल को किस तरह से व्यवहार के आधार पर परखा जा सकता है। इसी चर्चा से जुड़ा परीक्षण आगे चलकर ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। सोचिए दोस्तों, आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स और मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तब ट्यूरिंग का वो पुराना सवाल और भी दिलचस्प लगने लगता है कि मशीन की बुद्धिमत्ता को आखिर हम कैसे समझें। लेकिन एलन ट्यूरिंग की कहानी केवल विज्ञान और गणित की कहानी नहीं है, उनका जीवन ये भी दिखाता है कि समाज की असहिष्णुता और भेदभाव किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता अपराध हुआ करती थी और ट्यूरिंग को उनके समलैंगिक होने के कारण कानूनी कार्रवाई और गंभीर व्यक्तिगत कठिनाइयों का काफ़ी सामना करना पड़ा था। ये इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण मानवीय सीख देता है, किसी व्यक्ति की पहचान, प्रतिभा और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी को उसकी अलग सोच, उसकी अपनी अलग पहचान, अलग होने के कारण उसको कमतर किसी से भी नहीं समझना चाहिए, और ऐसी चीज़ें ऐसी बातें बिल्कुल समाज में प्रगति में बाधा बनती हैं। 1954 में 31 वर्ष की एज में एलन ट्यूरिंग का निधन हो गया। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनके विचारों की यात्रा बहुत लंबी साबित हुई। और आज कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में उनका नाम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, ट्यूरिंग की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर युवा को गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ही बन जाना चाहिए। उनकी असली सीख इससे कहीं और अधिक व्यापक है, इससे और ज़्यादा बड़ी है। अपने सवालों को दबाइए मत, उनको दोहराइए, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए, कठिन समस्याओं से भागिए मत, उनसे लड़ना सीखिए। और अगर आपका विचार नया है तो उसे समझने और विकसित करने का साहस रखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपका सवाल सिर्फ आपको दिलचस्प लगे, लेकिन कल वही सवाल किसी नए रास्ते की शुरुआत बन जाए। एलन ट्यूरिंग ने मशीनों के भविष्य के बारे में सोचा था, आज हम उस भविष्य के बीच खड़े हैं। यही तो उस

समय की खूबसूरती है जो विचार कभी कल्पना लगता है वही आने वाली पीढ़ियों की वास्तविकता बन सकता है। तो आज की प्रेरणापुंज से बस इतना याद रखिए, सवाल छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें जिज्ञासा है तो उसे पूछिए, रास्ता कठिन हो तो सीखते हुए आगे बढ़िए, और दुनिया आपको तुरंत ना समझे तो भी अपने विचारों को समझने और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखिए।

दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स की खबरों की। साथियों, एशियाड में शुक्रवार का दिन भारत के लिए इस बार का अब तक का सबसे सफल दिन साबित हुआ। हमारे खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक अपने नाम कर देश की पदक संख्या को 20 के पार पहुंचा दिया है। इससे पहले लगातार 2 दिनों में पाँच पाँच पदक जरूर मिले थे, पर स्वर्ण की चमक अभी तक नहीं दिखी थी। 2 दिन पहले महिला क्रिकेट के स्वर्ण के बाद आखिरकार युवा निशानेबाज सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर लंबे इंतजार का अंत किया। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ऐश्वर्य रुद्रांश और नीरज की तिकड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। फिर जब बात एथलेटिक्स की आई तो गुलवीर उम्मीदों पर खरे उतरे और 10,000 मीटर में रजत दिलाने में कामयाब रहे। बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में भारत का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में मामूली अंतर से चूकी शॉट पुटर मनप्रीत कौर ने कांस्य जीत एशियाड में पदक पाने का अपना सपना साकार कर लिया। वहीं टेबल टेनिस की जोड़ी मनुष शाह और दिया चिताले ने 8 वर्षों बाद भारत को मिश्रित स्पर्धा का पदक दिलाने में सफलता पाई। और वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की 29 वर्षीय पोल वॉल्टर बरानिका एलंगोवन की, तो उन्होंने एशियाड में ऐसा इतिहास रच दिया है कि वो इस खेल में भारत की पहली पदक वीर बनी है। उन्होंने 4.15 मीटर छलांग लगाकर कजाखस्तान की पोलिना इवानोवा के साथ कांस्य शेयर किया है। किसान परिवार में जन्मी बरानिका स्कूल में लंबी कूद और स्प्रिंट किया करती थी और साल 2016 का समय आता है जब उन चेन्नई के एथिराज कॉलेज में कोच मेलबर्न बर्टिन रसेल ने उन्हें पोल वॉल्ट की ओर मोड़ा और यहीं से बरानिका का सफ़र इस ओर मुड़ चला। तो साथियों, अगर आप भी रखते हैं खेलों में रुचि और खेलना चाहते हैं गेम और अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं देश दुनिया के सामने, तो अपने आप में, अपने जीवन में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं, अपने शरीर को फिट रखें, सही पढ़ें और हर रोज़ अपनी इंटरेस्ट के गेम को समय ज़रूर दें। तो साथियों, उम्मीद है कि ये करंट की जो जानकारी है आपको काफ़ी सही लगी होंगी और इनसे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हम अपने प्रोग्राम में आपको चलते चलते सुनवाते चलते हैं अपने प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

साथियों, चलते चलते अब आपको देते चल रहे हैं एग्ज़ाम अलर्ट की कुछ जानकारियाँ। साथियों, 28 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2026 को यूपीपीएससी पीसीएस इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। उम्मीदवार के व्यक्तित्व, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी और समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आत्मविश्वास और उनका विषय ज्ञान कितना है वो भी परखा जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, upsc.up.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड टेट परीक्षा दे रहे हैं, तो वो ये परीक्षा 29 सितंबर 2026 को आयोजित हो रही है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, वो UKUTET.com पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का

0: उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुनेंगे रात 9:30 बजे। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत

पुरुषोत्तम लाल से घनश्याम सिंह की बातचीत, परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा और हमारा दायित्व। किसानवाणी कार्यक्रम 6:50 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। शाम 7:31 पर डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता सुनवाई जाएगी, भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनिएगा आदित्य राय के गाए भजन और गीत। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। दिन में 11 बजे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात सुनिएगा। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अमित मौर्य से राकेश कुमार की बातचीत, स्टीविया की खेती कैसे करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन सुनिए सुबह 7:31 पर। और दोपहर 12:15 सुनिएगा गीता बनर्जी का ख्याल गायन। लोगी सुनिए शंकर लाल पाल और साथी, सरोज सिन्हा, शोभा लाल और साथियों से दिन में 2:30। और लोकमाधुरी कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर रंजीत कुमार और साथी, आकांक्षा भारती और साथियों के गाए लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अंजू मुखर्जी की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:50 पर। मुक्ति शर्मा के गाए भजन और गीत शाम 7:45 पर प्रसारित होंगे। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो अनुरोध कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे मेघना वशिष्ठ की वार्ता, जाने अपने शहर के धरोहरों के बारे में। शाम 5:15 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, इसमें युवा साथी सुनेंगे सैर कर दुनिया की गाफिल। विश्व पर्यटन दिवस पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह से की गई बातचीत। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे लोक भाषा कविता पाठ। रात 8:00 श्रोताओं के पत्रों और संदेशों पर आधारित कार्यक्रम होगा चिट्ठी आई है। श्रोता अपने पत्रों और संदेशों का उत्तर सुनेंगे नेहा गुप्ता से, जिनके साथ होंगी वंदना राठौर। आज इतवार है, ये कार्यक्रम रात 8:30 होगा। इसमें हम आपको सुनवाएंगे दिनेश भारती की लिखी झलकी संडे की सैर। और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण होगा रात 9:30। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। रमेश कुमार यादव पूरे मसवन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अंशिका यादव, जिनकी आयु है 17 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है, वो दिनांक 2 अगस्त 2026 से लापता हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। पता नोट कर लीजिए, रमेश कुमार यादव पूरे मसवन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़। और इसी क्रम में मनोज कुमार पुत्र

रामचंद्र, पूरे नागिया पर्वतपुर थाना जेठवारा, जिला प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अनुराधा दिनांक 30 जून 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 15 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9004404571। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9004404571। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।

रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन निर्मितानां अवसराणां उपयोगाय संबद्ध संकटान् निवारणाय आहूतवान्। न्यूयॉर्क नगरे अंतर्राष्ट्रीय शान्तेः सुरक्षायाः च संदर्भे एआई इत्यस्मिन् विषये आयोजिते कार्यक्रमे सः अध्यक्षः अभवत्। श्री जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभां संबोधयिष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री इत्येषः विकासशील राष्ट्राणां कृते अधिकं स्वरं दातुं यूएनएससी इत्यस्य तात्कालिक परिष्काराय आहूतवान्। ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार उत्तर प्रदेशेषु च निरंतर वृष्टिः सामान्य जीवने बाधां जनयति। अद्य उत्तर प्रदेशस्य उत्तराखण्डस्य छत्तीसगढ़स्य मध्यप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टि संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च भारतीय पुरुष महिला कबड्डी दलानि एशियन क्रीडा

0: बाल्यावस्थायाः पुनः स्थापनं, मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य निवारणं तथा च परिचर्यायाः संरक्षणस्य च आवश्यकतायां बालकानां पुनः एकीकरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा सत्रं सम्बोधयनासीत्। मुख्य न्यायाधीशः मादकद्रव्याणाम् उपयोगेन पीडितानां बालकानां सुरक्षायाः, चिकित्सायाः, परामर्शस्य, पुनर्वसनस्य, शिक्षायाः, पारिवारिकजीवनस्य च पुनः आरम्भस्य अवसराणां सुनिश्चिततायाः विषये अवधानं दत्तम्। वित्तमन्त्रालयेन उद्घोषितं यत् उपभोक्तॄणां सौविध्याय श्वः रविवासरे सर्वाः सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंकसंस्थाः, क्षेत्रीयग्रामीणबैंकसंस्थाः च उद्घाटिताः स्थास्यन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अयं निर्णयः मासस्यास्य अष्टाविंशतितः त्रिंशत् दिनाङ्कपर्यन्तं युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा आहूतस्य त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यावरोधस्य संदर्भे गृहीतः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य सचिवा पुण्य सलिला श्रीवात्सवः इत्येषा न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य उच्चस्तरीय सभायां वैश्विक महामारी सज्जतां प्रतिक्रियां च सुदृढीकर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवती। सभां संबोधयन्ती सचिवा सर्वकारस्य, समाजस्य च मध्ये महामारी निवारणस्य प्रतिक्रियायाः च विषये भारतस्य समन्वित दृष्टिकोणं प्रकटितवती, यस्मिन् संभाव्य स्वास्थ्य आपत्कालस्य विस्तृत श्रेणी अन्तर्भवति। सा भारते प्रयोगशालायाः जालस्य विस्तारः, आपत्काले समन्वयः, स्वास्थ्य कर्मचारिणः चिकित्सा क्षमतायाः कृते च कृताः प्रयत्नाः अधोरेखितवती, येन सुनिश्चितं भवति यत् स्वास्थ्य आपत्कालेषु प्रभाविरूपेण प्रतिक्रियां दातुं व्यवस्थाः सुसज्जिताः सन्ति। श्रीमती श्रीवास्तव इत्येषा कोविड 19 महामार्याः पाठान सुस्थिर निवेशरूपेण संस्थागत क्षमतायां स्थिते स्थापक स्वास्थ्य प्रणाल्यां च परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवती। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेशेषु च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। एतदतिरिच्य बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु अपि वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकाशितम्। उत्तर प्रदेशे 63 जनपदानि अतिवृष्ट्या प्रभावितानि सन्ति। अतिवृष्टेः पूर्वानुमान कारणात् तत्रत्य विद्यालयाः, महाविद्यालयाश्च पिहिताः आसन्। सर्वेषु जनपदेषु प्रशासनेन उच्च संचेतनापि प्रसारिता। जनाः अपि अध्यर्थिता यत् ते गृहात् बहिः मा गच्छन्तु। भारतीय क्रीडकैः अद्य जापान देशे प्रवर्तमानायां नागोया एशियाई क्रीडास्पर्धासु कबड्डी, एथलेटिक्स, स्क्वास, शूटिंग प्रभृति चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि पदकानि प्राप्य स्वीय स्थानं दृढीकृतम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, पंचायत घर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
5: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

पंचो राम राम। देखो किसान भैया बहनी हरे, यह समय दौर राजा ते एकदम काम से गजब धाय हैं। एक बात और है, समय समय पे सरकार किसान भैया बहनी हरे विदा नया नया योजना लावत है, और यह समय योजना जो चलत है भैया 15 अगस्त 2019 से हर घर जल योजना। भैया एक जो मुख्य वजह है वो है कि ग्रामीण क्षेत्र में वो हर घरे के स्वच्छ पानी नले के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त मिले, जौने से भैया उनकर पेयजल के उपलब्धता बरकरार रहे। अच्छा एक बात और है भैया, किसान भैया बहनी हरे काम से हमारा जौन प्रोग्राम है या पंचायत घर उमन खेती किसानी से बातचीत होत रहे थे, तो एक भैया जीरो टिलेज खेती है जेके शून्य खेती कहा जाता है, यानी शून्य जुताई खेती। ई उ आधुनिक कृषि पद्धति है जौन में बिना खेती का जुताई किए किसान भैया बहनी हरे अपन अनाज पैदा कर सके थे, सीधे पिछली फसल का अवशेष जौन रहे थे भैया बचा रहे थे ओके ठूंठ जेके कहते छोड़ दें, और मशीनी के द्वारा काम से भैया ड्रिल करके मदद से बीज बोआ जाता है, जौने से किसान भैया बहनी हरन के लाभ होते, लागत में कमी रहते हैं, नमी का संरक्षण बचा रहता है और मिट्टी का बचाव होता है, और जौने से भैया सबसे बड़ी चीज़ है प्रदूषण का रोकथाम। देखा भैया बात बात पंचायती में बात बात कही तो होते रहें, लेकिन एक लोकगीत है हरिश्चंद पांडे और संघाती के स्वच्छता गीत, धरवा घरवा दुअरवा के कैला सफाई, किसान भैया बहनी हरे सुने।

0: हाँ देखा हो भैया, लोकगीत रहन हरिश्चंद्र पांडे और संघाती के, स्वच्छता गीत घरवा दुअरवा के कैले सफाई। और साथे साथे भैया देखे, यह समय किसान भैया बहनी हरिन के साथे साथे अपनी ग्रामीण परिवेश में भी जोन पश्चिमी सभ्यता है भैया उ घर के गए हों। और जोन के सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में जोन बुजुर्गन के उपेक्षा होत है, और वो उपेक्षा के ख़त्म करे बिदा आम जनमानस के और हमार सभन के रोल जोन दायित्व है उ का है, एकरे बारे में भैया पुरुषोत्तम लाल से घनश्याम सिंह भैया बातचीत किए हैं, जोन है कि परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा और हमारा दायित्व। सुन ले भैया।
1: किसान भाई, देखा एक समय रहल हो कि जब गदेला साँझ होत इंतजार करें कि साँझ हो बाबा दादी के घुटना पे चढ़ के भैया उनका जो है झुलुआ झूली और उनसे बढ़िया कहानी सुनी। धीरे धीरे समय बदलल, आदमी अपने अपने काम में व्यस्त हो गल, लड़का पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गई। घर के जौन बुजुर्ग रहें, जहाँ की हर बात शुरू करे से पहले उनसे बिना राय मशवरा के ना होत रहल, धीरे धीरे धीरे धीरे सब लोग एकदम से रिजर्व होए लगने और निर्णय अपन स्वतः लेवल लगने। कहीं न कहीं से घर के जौन बुजुर्ग हैं वो उपेक्षित भईने कुछ हद तक, और वो उनके मानसिक रूप से दर्द और पीड़ा जरूर देले से अपन समाज कमजोर भैले से। हमार तोहार जौन घरे के वृद्ध हैं, जौन बुजुर्ग हैं, उनकर उपेक्षा करब हमारे समाज बदे, घर बदे, देश बदे कितना नुकसानदायक भैल। उनकर उपेक्षा करे से कितना हमार जौन रहन सहन हो बिगड़ल, आ हमें हमार दायित्व तो का होक चाहिए उनके प्रति। आज यही सबके बारे में ढेर सारी बात करे बदे हम श्री पुरुषोत्तम लाल जी के अपने स्टूडियो में आमंत्रित के लिए है। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने ही कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते कि जो आज समाज का एक ढांचा कहीं ना कहीं से थोड़ा सा बिगड़ल महसूस होता है, जहाँ पर कि घर के बुजुर्ग सबसे ज़्यादा सम्मान पाओ के पात्र हैं और उनकर सलाह मशवरा के बिना कोनो काम के शुरुआत ना होत रहा, आज कहीं ना कहीं से कुछ हद तक उपेक्षित होते हैं। क्या कारण होता है ये उपेक्षा का आपके नज़र में, थोड़ा बताओ।
2: मेरा ऐसा मानना है
1: जी
2: कि आज जो है परिवार में बुजुर्गों की जो उपेक्षा हो रही है
1: जी
2: वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर पाश्चात्य जो है संस्कृति की छाप पड़ने लगी है। और हमारी प्राइमरी पाठ्य स्कूलों के जो पाठ्यक्रम हैं उन पाठ्यक्रमों में जो हम परिवार को जोड़ने की शिक्षा
1: जी
2: देते थे,
1: जी
2: उनके बुजुर्गों के प्रति सम्मान की बात करते थे, उनके साथ रहन सहन किस तरह से उनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए वो हम जब सिखाते थे, तो आज हम पूरी तरह से हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम इस तरह से बदल दिए गए हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति से कहीं मेल मिलाप नहीं खाते हैं।
1: बिल्कुल, जहाँ से कि सही बात है कि जहाँ से कि बचपन वही बुजुर्ग के गोंद से
2: जी
1: शिक्षा लेके आगे बढ़त रहल,
2: जी
1: आज बचपन और गोंद में कुछ दूरी जरूर बन गई हो।
2: जी जी
1: कारण यह एकमात्र आपके समझ में यह है,
2: जी
1: और क्या कारण हो सकल है एकर?
2: और उसका कारण एक ये है
1: जी
2: कि आज जो है जिस बुजुर्ग ने,
1: जी
2: बुजुर्ग जो है वो मकान की बुनियाद होती है
1: बिल्कुल,
2: जिस पर पूरा मकान खड़ा होता है, परंतु जब वो मकान खड़ा होकर के
1: जी
2: ऊपर लगे हुए जो
1: जी
2: कंगूरे
1: जी
2: हैं
1: जी, जी.
2: वो कहीं ये उनको महसूस होने लगता है कि नहीं, सारी जो है मकान की शोभा वो हमारे से ही है, ये सारी चीज़ें हमारी से हैं वो कहीं होने लगता है, तो निश्चित रूप से जो बुजुर्ग जो है बुनियाद की तौर से जो परिवार का मुखिया है उसमें कहीं उपेक्षा की भाव पैदा होती है।
1: बिल्कुल
2: और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो बुजुर्ग एक सीमा तक तो उपेक्षा को बर्दाश्त करता है, परंतु यदि वो उपेक्षित बुजुर्ग यदि परिवार में बुनियाद की तरह जाए थोड़ा सा भी अलग होता है तो पूरा का पूरा जो है मकान रूपी जो है जो परिवार का ढांचा वो बिखर जाता है।
1: बिल्कुल। पुरुषोत्तम लाल जी, आज समय बदलल, हमार तोहर बचपन रहल, याद बाय कि पप्पा

0: दादी के पास बैठ के घंटा दू घंटा शाम के बीतत रहल, खिस्सा कहानी होत रहल, अच्छी अच्छी बात होत रहल। वो समाज से आज के समाज में कितना अंतर आपके दिखाई देता?
1: बहुत बड़ा फर्क हो गया
0: जी।
1: अब हम परिवार में बुजुर्गों के साथ बैठना ही छोड़ दिया है।
0: जी जी
1: हम तो आज जो पाश्चात्य कल्चर और पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, हम आधुनिक जीवन में हम मोबाइल से हमारे बच्चे ज़्यादा जुड़े रहना पसंद करते हैं, टीवी से जुड़े हुए ज़्यादा पसंद रखना चाहते हैं, पर किसी बुजुर्ग के साथ बैठ करके उनके पैरों में बैठ के उनके चरणों में बैठ करके उनसे कोई अच्छी ज्ञान युक्त बातें न तो सीखना पसंद करते हैं न उनके पास बैठना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल, एक तरह से जो संकेत आपके गैल है कि चाहे वो मोबाइल हो चाहे टीवी हो, लेकिन देखिए मोबाइल के बाद और टीवी के बाद, टीवी में भी तमाम ऐसा अच्छा कार्यक्रम आवत है कि ओके भी देख करके सीख मिल सकल, लेकिन कहीं ना कहीं से एक कार्यक्रम के और ज़्यादा बढ़ावे की जरूरत है, जहाँ से कि हमारा छोट बच्चा जो है चाहे वो कार्टून के रूप में चाहे वो कहानी के रूप में किस्सा के रूप में उनके दिखावल जाए कि बुजुर्गन के प्रति सम्मान कितना आवश्यक है और उनके आशीर्वाद से उनके स्नेह से कितना आगे बढ़ल जा सकेगा।
1: मैं तो साहब ये कहता हूँ कि आज प्राइमरी स्कूलों से लेकर के हम लोगों ने जब शिक्षा अध्ययन किया था 1950-51 में प्राइमरी में मैं आया
0: जी जी
1: तो उस समय पिता और माता के बाद गुरुजन होते थे
0: जी,
1: और पिता और माता की किसी भी कही हुई बातों को कभी हमने एक आदेश मान के उसको हमेशा जो है मानने की कोशिश किया। उसके बाद गुरुओं की बातों को उसी तरह से जो है हमने लेने की बात कही, परंतु आज जो है जिस माता पिता ने सारे दुख सारे अपने सुखों को भूल करके अपनी कुर्बानी दे के अपने बच्चे को तैयार करते हैं, आज वो बच्चा जब पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके वो आगे खड़ा होता है तो वो उस बुजुर्ग की इस तरह से उपेक्षा ही नहीं करता है कि बातों से उपेक्षा कर रहा है, बल्कि जब उसे लाठी की तरह से एक सहारा चाहिए था उस समय उसे भोजन की ज़रूरत है, उसे तीमारदारी की ज़रूरत है, उसे जो है इलाज की ज़रूरत है, उसे अच्छे संरक्षण की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है, परंतु उसकी जगह पर आज हमारे जो है जो युवा पीढ़ी है वो कल्चर इस तरह से डेवलप हो गया है कि माँ बाप को घर से निकाल देंगे, धक्के मार के निकाल देंगे, और ऐसे जो है असहाय माँ बाप को ये उनके लिए मौत सबसे बड़ी होती है। और मैंने तो ये देखा कि तमाम सारे सामाजिक संस्थाओं ने बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम खोल रखा है जहाँ ऐसे जो है अनाथ और असहाय बुजुर्ग जो अपने परिवार से उपेक्षित हैं वहाँ उन्हें जो है रख करके लोग उनको हर तरह से जो है उनकी सेवा शुश्रूषा उनकी देखभाल करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ भारत सरकार से या राज्य सरकारों से भी कि ऐसे उपेक्षित और ऐसे जो है असहाय और अनाथ वृद्धों को जिनको कोई सहारा नहीं है उनके लिए हर जिले में कम से कम वृद्धाश्रम का निर्माण करें जहाँ उन्हें मनोरंजन से लेकर के उनकी जो है शुश्रूषा से सेवा से लेकर के उन्हें दवा से लेकर और भरपूर उनके भरण पोषण तक कर सारा चीज़ें होना चाहिए। और दूसरी बात आज हमारे जो है जो पाठ्यक्रम है स्कूलों का उस पाठ्यक्रम में जो है अपने परिवार के प्रति अपने बुजुर्गों के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका बोध कराने के लिए पाठ्यक्रम में डालने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखें जौन बुजुर्ग रहन घरे का
1: जी
0: जौन वृद्ध महिला रहें
1: जी
0: वो डेवढ़ी पे बैठे तो घर का श्रृंगार बढ़ जाता
1: जी जी जी,
0: द्वारे बुजुर्ग बैठत रहना
1: जी
0: तो द्वार अजोर होत रहना
1: जी जी।
0: आज कहीं ना कहीं से एक हमें लगत एक कारण ये भी बनल कि गांव से शहर की ओर लोग पलायन की ना
1: जी
0: न घर न वो तरह से ड्योढ़ी बनल न वो तरह से द्वार रहल
1: जी,
0: मिला जुला के वृद्ध थे गांव पे रह गई ना
1: जी
0: जिनका सेवा करे के चाहिए उस शहर की ओर पलायन की ना
1: जी,
0: ऐसे भी कहीं ना कहीं से वो उपेक्षित भई ना।
1: हम ये मानते हैं कि ये इससे जो है हमारा बुजुर्ग उपेक्षित, मगर अगर हम जो है हमारा परिवार का जो युवा है अगर वो रोजगार के लिए या नौकरी के लिए वो बाहर शहर की तरफ पलायन करता है तो बुजुर्ग को अपने साथ ले जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि बुजुर्ग असहाय हालत में हम उसे गांव में नहीं छोड़ सकते। जिस बुजुर्ग ने अपनी सारी खुशियों को कुर्बानी करके अपने खून से अपने पसीने से आपको बड़ा किया पढ़ाया लिखाया जमान किया तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है जिस तरह से उन्होंने बच्चे की तरह हमको पाला और हमारा भरण पोषण और हमको लिखाया पढ़ाया योग्य बनाया, इसी तरह से जब बूढ़ा हमारा बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी जाती है कि उसी तरह से उनकी छोटी छोटी भावनाओं को हम ख्याल

0: करके उनके प्रति आदर के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी हिफाजत, उनका जो है इलाज, उनका पूर्ण तरह से संरक्षण हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है।
1: कहे का मतलब ये भी तो है भैया कि हम अगर अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार न करब तो हमार लड़का वह देख के सीखी,
0: बिल्कुल
1: कल के लिए हम भी बुजुर्ग हो तो हम उसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे करब।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हम व्यवहार दूसरों के साथ अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही व्यवहार हमारे बच्चों के साथ बच्चे भी हमारे साथ करेंगे
1: जी।
0: तो ये दुखदाई है। आज हमारे भारत में हमने जो है ये हमारी सोच है कि हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, हमने वसुधा पर रहने वाले समस्त लोगों के को अपना परिवार हमने माना है, परंतु आज ये विडंबना ये है कि पाश्चात्य संस्कृति ने इस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर दिया है कि हम अपने ही बुजुर्गों को उपेक्षित कर रहे हैं, उनको असहाय अनाथ की तरह हम रहने। अब जरूरत है कि हमें सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तर पर पाठ्यक्रमों, स्कूलों में पाठ्यक्रमों के द्वारा भी, और चाहे वो टीवी हो, आकाशवाणी हो, इन चीज़ों से भी हमें जो है आज के नौजवानों की इस बात की सीख देनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों के प्रति हमें किस तरह से जो है उन्हें जो है पेश आना चाहिए और किस तरह से उनके प्रति हमें जो है अपना भाव रखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल है पुरुषोत्तम लाल जी, आप अपने जो बुजुर्ग हैं परिवार के उपेक्षित कहें बदे उठुआ कहाँ से उठुआ, बहुत अच्छा इस पर आप अपना विचार दिए हैं और हमार सबका दायित्व का हो, समाज का दायित्व का हो, एक बारे में भी आपका विचार हमारे किसान भाई सुनने वाले भाई तक पहुँचल। आपके ये विचार व्यक्त कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखे हो भैया, किसान भैया बहनी हरेन, परिवार कल्याण की बातचीत में परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा और हमारा दायित्व पे पुरुषोत्तम लाल से घनश्याम सिंह भैया का बातचीत रहन। अच्छा किसान भैया बहनी हरेन के हमार जोन ये कार्यक्रम है कैसन लगत है, कार्यक्रम संबंधित अपन जोन भी सुझाव देवे चाहते हैं वो व्हाट्सअप नंबर है 800-4926-250। फिर से एक बार नंबर नोट कर लें 800-4926-250। देखे भैया अब विदा लेवे के समय होता है, तो पंचो राम राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ पुनीता बहनी।
1: भैया खेती करे माध्यम से नहीं अपन पंचन के आय बढ़े और माटी के उर्वरता भी बनी रहे और खेती पर्यावरण के अनुकूल होए, इके उद्देश्य से नहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के यहाँ बढ़ावा दिन जा रहा है।
0: बिल्कुल बहनी, और अपन खेती पाती तो प्रकृति पर आधारित होते।
1: अबे 20-25 साल पीछे चले जाओ तब हूँ यहाँ होता रहा है कि खतवा में यहाँ एक फसल लीन जात रहे तो के खतवा खाली छोड़ दिन जात रहे। अब का है, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, हमार जोत जोन है वह कम हो गए है, तो ज्यादा से ज्यादा फसलें हम पंच लिए थे, इसी खातिर माटी का स्वास्थ्य हमार खराब हो रहा है।
0: बिल्कुल बहनी, तो अब सरकार ये जोर दे रही कि लोग रसायन पर ना ध्यान के प्राकृतिक खेती पर लौटे, यह बदियो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लेके आई है।
1: और अभिषेक भैया अपनी खेती पाती में यहाँ तमाम तरह के चीजें के हमका सबका आवश्यकता होते, चाहे वो बीज संबंधी हो, चाहे खाद संबंधी हो और चाहे कोनो

0: कृषि यंत्र संबंधी ई कामन के खातिर हमार सरकार हमका सबका कैसे मदद करत है तो सुन लीन जाए, यह बारे में है आज की खबरें।
1: उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को अब 6% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को खेती बाड़ी और कृषि मशीनरी से जुड़े कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत पात्र किसानों को 6,00,000 रुपए तक का ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर देने की व्यवस्था है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में करीब 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाना है। योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराना और उन्हें कृषि गतिविधियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को अब पहले की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।
0: अभिषेक भैया,
2: हाँ बहनी,
0: भैया जहाँ हम पंच खेती पाती करे थे, बाग बागवानी करे थे, हाँ। और उसके साथ साथ तमाम अन्य प्रकार के व्यवसाय भी करे थे, उमा से एक है प्रमुख मत्स्य पालन, तो पुनर्चक्रीय मत्स्य पालन कैसे की जाए, इसके बारे में हम बता रहे हैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ मत्स्य पालन से आप जुड़े हैं या मत्स्य पालन शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन है क्या?
4: सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। जहाँ तक पुनर्चक्रीय जल कृषि की बात है तो ये एक मछलियों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली है। इसमें पानी का निरंतर इस्तेमाल होता है, कहने का मतलब वही पानी बारंबार उपयोग होता है।
3: तो इसमें कुछ खास प्रजातियों का चुनाव होता होगा?
4: हाँ, इसमें विशेष प्रजातियों का चुनाव किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पंगास मछली आजकल उत्तर प्रदेश में काफ़ी चल रही है, तो ये काफ़ी सहसून है इस प्रकार के मत्स्य पालन के लिए। उसके अलावा तिलेपिया मछली लाभकारी है, कामन कार्प मछली है, तरुण कार्प मछली है, रोहू भाकुर जो हैं 200-300 ग्राम के वजन तक का इनका पालन किया जा सकता है। रंगीन मछलियाँ जो हैं उनका भी पालन इस पद्धति में किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एक बेनामाई झींगा है उसका भी पालन किया जा सकता है।
3: तो आखिर ये शुरुआत क्यों करें किसान भाई बहन पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन? डॉक्टर साहब,
4: किसान भाई बहन इस पद्धति का उपयोग इसलिए करें क्योंकि आज जो परिवारों का विघटन हो रहा है और भूमि और जल का जो उपलब्धता है वो कम हो रही है जनसंख्या विस्फोटन की वजह से, ऐसी दिशा में सभी को भूमिगत तालाब उपलब्ध होना बहुत ही उपयोगी नहीं हो रहा। इस दिशा में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कम जमीन और कम पानी में अधिक से अधिक उच्च उत्पादन लेने की पद्धति से पुनर्चक्रीय जल कृषि करके उच्च उत्पादन लिया जा सकता है।
3: और ऐसा तालाब में संभव नहीं है?
4: ऐसा तालाब में संभव नहीं है, और जलवायुगत परिवर्तन के मद्देनज़र आज जिसकी चर्चा की जा रही है बहुत ही उपयोगी है। ये कहीं भी किसी भी तरह की ज़मीन में, मिसाल के तौर पर ऊसर वाली ज़मीन में, बंजर जमीन में, यहाँ तक रेतीली जो ज़मीन है, बलुई मिट्टी वाली ज़मीन है जो बेकार पड़ी है, वहाँ पर उपयोग करना होता है। केवल भूमिगत जल जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए।
3: तो इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना तैयार करनी होगी?
4: इसके लिए आधारभूत संरचना के लिए सर्वप्रथम हमें एक टैंक बनाना चाहिए जिसमें मछली पालन करना चाहिए। के अलावा हमें वाटर पंप रखने होंगे 3-5 हॉर्स पावर के चाहिए, जिसकी क्षमता 1-2 लीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ड्रम फिल्टर लगाते हैं, ये ड्रम फिल्टर में एक तरह के 40-100 माइक्रॉन की छन्नी होती है जिससे पानी छन के जाए, जो भी बेकार चीज़ें हों उससे छन जाए। उसके अलावा रासायनिक फिल्टर का भी उपयोग किया जाता है जिसमें जियोलाइट का उपयोग किया जाता है, जो विषाक्त गैस होती है उसको शुद्धिकरण किया जा सके। इसके अलावा जैविक फिल्टर होता है जिसमें, चूंकि इसमें कृत्रिम आहार देने होते हैं तो उससे अमोनिया का निर्माण होता है, उसको फिल्टर करने के लिए बैक्टीरिया जो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया होता है उसकी उपयोगिता होती है, जो विखंडन करता है अमीनो एसिड को और नाइट्रेट में बदलता है विभिन्न प्रोसेस के द्वारा, तो इसके लिए जैव फिल्टर की आवश्यकता होती है। सर्दियों में ये प्रभावित हो जाता है तो इसे बीच बीच में

0: दफा कर लेना चाहिए। उसके अलावा डीगैसिंग चैम्बर भी होते हैं, यूवी स्टरलाइजेशन भी कहीं कहीं लगाए जाते हैं जिससे किसी प्रकार के रोगाणुओं का विनाश किया जा सके। इस व्यवस्था के साथ नर्सरी सिस्टम भी रखना चाहिए, बच्चे जो छोटे आकार के होते हैं उनको लाकर उसमें पालन करना चाहिए और जब 20-25 ग्राम के हो जाएं तो उसको इस पुनः चक्री जल कृषि पद्धति वाले टैंक में उपयोग करना चाहिए जिससे उत्पादकता अच्छी मिल सके।
1: तो जो किसान भाई बहन शुरू करना चाहते हैं पुनर्चक्री पद्धति से मत्स्य पालन, तो कितने से शुरुआत करें, कितने क्षेत्रफल से तो अच्छा रहेगा?
0: इसमें जैसे विभिन्न प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकार के ये टैंकों के निर्माण के लिए सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे 50 लाख के लिए 8 टैंक के द्वारा है, उसके अलावा 10 लाख के लिए भी हैं 6 टैंक के हैं, और उसके अलावा आपका 25 लाख का भी है।
1: अलग अलग परियोजनाएं,
0: अलग अलग परियोजनाएं, यहाँ तक एक टैंक जो रंगीन मछलियों का करना होता तो 50,000 रुपए का एक छोटा सा कर सकता है टैंक लेकर, एक घन मीटर में भी कर सकता है और इसमें उत्पादन ले सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो पुनर्चक्रीय पद्धति है रीसर्कुलेटरी सिस्टम से मत्स्य पालन, तो इसके फायदे क्या क्या हैं?
0: इसके मुख्य फायदे में देखा जाए तो पानी की जो जरूरत होती है कम होती है, क्योंकि पुनर्चक्रण होता रहता है, वही पानी बारंबार उपयोग में लाया जाता है, तो ये काफी लाभकारी है। उसके अलावा उच्च संचय दर, इसमें मछलियों का संचय अधिक मात्रा में किया जा सकता है, साथ साथ स्थल चयन में लचीलापन होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया किसी भी भूमि में इसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा जैव सुरक्षा के मद्देनजर जैसे कोई रोग व्याध होता है मछलियों में, उनके उन्मूलन के लिए ये पूर्ण तरह से नियंत्रित व्यवस्था होती है, तो आसानी से इसमें किया जा सकता है और कम से कम इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन सघनता के माध्यम से लिया जा सकता है।
1: लेकिन इसमें आहार व्यवस्था कैसे देनी होती है?
0: इस पद्धति का जो प्रमुख घटक अगर क्रियान्वयन के रूप में देखें तो आहार ही के द्वारा इसमें सभी उत्पादन लिया जा सकता है। वही आहार जो आजकल बाजारों में जलप्लावित आहार है जो मिलता है 25-30% उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, उसका उपयोग किया जाता है। और मछलियों में जो अगर 1.5 किलो आहार आप देते हैं तो 1 किलो मछली पैदा हो जाती है, उससे आहार भी नष्ट नहीं होता है और नीचे जो बचा हुआ खाना होता है या मल इत्यादि होता है उसकी भी सफाई एक तो फिल्टर करता है, एक साइफन करके किसान भाइयों को चाहिए कि स्वतः उसको उन्मूलन कर लें जिससे आपके फिल्टर पर ज़्यादा दबाव ना पड़े।
1: क्या प्राकृतिक भोजन भी पुनर्चक्रीय पद्धति में दिया जा सकता है?
0: प्राकृतिक भोजन की उतनी महत्ता नहीं है जितनी की कृत्रिम आहार जो हमने बताया जलप्लावित आहार उसकी है, तो इसमें पूर्णतः कृत्रिम आहार आधारित प्रणाली है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में कितना तक मिल सकता है और मुनाफा क्या होगा?
0: इसमें 100 से लेकर 150 टन तक उत्पादन आधा एकड़ के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तालाबों से लिया गया है, विशेषकर पंगास मछली में, जिनकी बाजारू जो माप रही है वो 400 से 600 ग्राम रही है, और कुछ लोग इससे ज्यादा भी दुगुना तिगुना भी उत्पादन ले रहे हैं, उनको काफी लाभ हो रहा है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 9838077630 9838077630 9838077630।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं मत्स्य पालक भाइयों बहनों का? अक्सर
0: किसान भाई जिन्होंने ये पद्धति का उपयोग राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से लगाया हुआ है, अगर उन्हें कठिनाई भी आती है तो अपना साहस न छोड़ें और निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी।
1: डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी।

0: और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रीता बहनी, कितना बढ़िया मौसम चल रहा है, और बेमौसम न कही के कहा जाए मौसम, बताना पानी झमाझम बरस रहा है आजकल। तो भैया संझा बेदिया, जब सत्तारी सबको हुई तो कुछ गीत गौ नहीं लोक गीत हुई जाए तो एकदम मजा आ जाए। तो बहनी देखो, हम पंचनबद्ध एक बढ़िया नकटा लोक गीत लेके आए हैं, सुनाए रही आमनी पांडे बहनी, तो सुना जाए और मौज लीन जाए।

0: अभिषेक भैया, हम पंच बात करें बाग बागवानी के,
1: हाँ
0: खेती
1: बहन।
0: के, उके साथे साथ मत्स्य पालन के, और भैया अब बारी है तरकारी के। तो
1: हाँ
0: फूल गोभी और पत्ता गोभी उत्पादन कैसे कीन जाए, इके बारे में हम बता रहे हैं आज के किसान बाबूलाल मौर्य भैया।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर गांव, जहां के प्रगतिशील किसान बाबूलाल मौर्य भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। बाबूलाल मौर्य भैया नमस्कार।
3: नमस्कार साहब।
2: बाबूलाल भैया, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई लिखाई जो है इंटरमीडिएट रखी हुई है, साइंस साइड मेरा था गणित विषय से, और इसके बाद मैंने ओबरा से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, अपने खेती बाड़ी में लग गया।
2: कितनी साल पुरानी बात है
3: ये सर? हम लगभग 92 में ओबरा में पढ़ रहे थे।
2: यानी लगभग 34 साल?
3: जी सर।
2: तो 34 साल से खेती से जुड़ गए आप? फिर
3: खेती से, देखिए हम लोगों का पैतृक व्यवसाय ही खेती था, तो खेती से तो जन्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से खेती करने के लिए हम 2007 से जुड़े हुए हैं।
2: अच्छा, लगभग 19 साल।
3: जी, ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं 2007 से।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: हमारे सर घर का जो जमीन है 5 एकड़ है, लेकिन और बटाई का लेकर के हम 13 एकड़ में काम करते हैं।
2: यानी लीज पर लेकर के कुल 13 एकड़ पर आप वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं?
3: जी।
2: इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब, मिर्च है, नेनुआ है, मूली, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और पाली हाउस लगा है उसमें खीरा है, और जो है करेला है, ये सब चीजें हैं।
2: यानी सब्जियों की विविधता आपके पास है?
3: डॉक्टर साहब, मेन ये है ना कि जैसे फूल गोभी हमारे यहाँ 12 महीने होती है, 365 दिन पूरे, गर्मी, बरसात, जाड़ा।
2: तो कोई खास वैरायटी लगाते हैं?
3: जी, इसकी अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कि गर्मी के लिए अलग वैरायटी है, जाड़ा के लिए अलग वैरायटी है, बरसात के लिए अलग वैरायटी है।
2: आप कौन सी वैरायटी लगाए हैं?
3: इस समय सर जो हम नर्सरी डाले हैं वो रोहन नाम से है।
2: और गर्मी में कौन सी करते हैं?
3: गर्मी में हैप्पी के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर।
2: तो ये बताएं कि फूल गोभी और पत्ता गोभी का रकबा है कितना आपका?
3: जैसे हम कुल मिला के 6 बीघा में करते हैं, यानी हो गया 4 एकड़ में, तो 4 एकड़ में जो हमारी सब्जी होती है, तो फूल गोभी 12 महीने, तो एक ही खेत से हम फूल गोभी 3 से 4 बार ले लेते हैं किसी किसी खेत में।
2: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं आप?
3: जी, बिल्कुल। तो कुल मिला के यदि फूल गोभी का ले लिया जाए तो लगभग 6-7 एकड़ हो जाएगा पूरे वर्ष में।
2: तो इस समय रकबा आपका फूल गोभी और पत्ता गोभी का 4 एकड़ है?
3: नहीं, इस समय जैसे हमारा 1 एकड़ लगा हुआ है, फिर जैसे 15-15 दिन पर हमेशा हमारे यहाँ लगता रहता है,
2: जी।
3: तो जो 3 महीने बाद खेत खाली होगा फिर गोभी लग जाएगा उसमें, इस तरह से हमेशा चलता रहता है उसका चक्र।
2: तो फूल गोभी की नर्सरी खुद तैयार करते होंगे?
3: जी बिल्कुल, हमेशा तैयार, अपने घर से तैयार करते हैं, हमेशा 10 दिन 8 दिन पर नर्सरी पड़ती रहती है, 10 दिन पर लगता रहता है, अपने यहाँ नर्सरी तैयार करके अपने यहाँ से लगाते हैं, अपने बीज डाल करके।
2: तो पाली हाउस में आप नर्सरी डालते होंगे?
3: जी, पाली हाउस में नर्सरी तैयार करते हैं और बाहर लगाते हैं ओपन में।
2: क्या पोर्ट्रे में?
3: प्रोट्रे में भी डालते हैं और सीधे खेत में भी, पाली हाउस में डालते हैं।
2: पत्ता गोभी का भी आपने नाम लिया, तो इसकी कौन कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप?
3: पत्ता गोभी डॉक्टर साहब, देखिए एक 22 नंबर आता है, 22 नंबर बड़ी ही अच्छी वैरायटी होती है, वो 1 से 5 किलो तक होता है, बल्कि छोड़ देगा तो 7-8 किलो हो जाता है, तो वो वैरायटी हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद एक और वैरायटी सम्राट नाम से आती है, तो उसको भी लगाते रहते हैं, और हमको जिसे कम दिन की वैरायटी चाहिए तो 43 नंबर आता है, तो उसको लगाते हैं।
2: तो पत्ता गोभी क्या पूरे साल करते हैं क्या?
3: पत्ता गोभी लगभग 8-9 महीने हो जाता है, बरसात में थोड़ा सा उसको नहीं लगाते हैं, 2 महीना छोड़ देते हैं।
2: और पूरे साल गोभी वर्गी सब्जियों में फूल गोभी और पत्ता गोभी पैदा करते हैं?
3: जी, और टमाटर भी जो करते हैं तो वो भी स्टेकिंग से करते हैं, 5-6 फीट उसको तार बांस की सहायता से ऊपर करके चढ़ा के फराते हैं, तो एक पेड़ से लगभग 8 से 10 किलो तक उत्पादन भी हो जाता है।

0: तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की बात करें तो इसकी रोपाई का अंतरण क्या रखते हैं और रोपाई में कुछ खास बारीकी रखते होंगे?
1: इसमें डॉक्टर साहब क्या होता है कि इसको पहले हम बेड बनाते हैं। बेड इस तरह से बनाएंगे कि एक बेड पर दो पौधे लग जाएं दोनों किनारे पर, और नाली से हमारी जल निकास हो जाए, और ऊपर जो है ड्रिप पाइप लगा देते हैं।
0: यानी ड्रिप से सिंचाई करते हैं?
1: हाँ, डॉक्टर साहब ड्रिप से इतना मतलब फायदा होता है डॉक्टर साहब कि हर पौधे को पानी मिलता है, और उसी से हम उसका पोषक तत्व प्रबंधन भी कर देते हैं
0: अच्छा, फर्टिगेशन करते हैं।
1: जी। और हमारे फालतू जो जगह बचता है बीच में उसमें खरपतवार नहीं उगता है, इसलिए किसानों को काफी लाभ होता है, काफी उनकी दवा का खर्च बच जाता है और उर्वरक भी बचता है।
0: तो गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती, खास करके फूल गोभी और पत्ता गोभी में कौन कौन सी बारीकी करते हैं आप?
1: इसमें बारीकी डॉक्टर साहब ये देखना होगा तो जो नर्सरी हमारी होती है वो लगभग 22 से 26 27 दिन पर 25 दिन पर ये नर्सरी जब लग जाती है तो उस पौधे का विकास अच्छा होता है, और लगाने के बाद पोषक तत्व प्रबंधन जो है उसका थोड़ा सा बढ़िया देख रेख करते हैं, क्योंकि इस समय हाइब्रिड गोभी ही ज्यादा लगता है, तो लगाने के 60 दिन बाद निकासी हो जाती है, तो बीच में यदि हम उसका देखभाल बढ़िया से नहीं करेंगे पौधा कमजोर रहेगा तो उसमें फूल जल्दी आ जाता है।
0: तो फसल की भूख कैसे मिटाते हैं आप?
1: फसल की भूख मिटाने के लिए पहले तो हमारे यहाँ 112 बकरियां हैं और 8 गाय भैंस हैं,
0: जी
1: इसका हमारे यहाँ काफी मात्रा में गोबर का खाद हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट भी हम बनाते हैं, और गोबर गैस लगा उसकी सैलरी यूज करते हैं, और इसके बाद हल्का फुल्का रासायनिक खाद का सहारा लेना पड़ता है।
0: आजकल ढेर सारे स्मार्ट उर्वरक भी आ गए हैं, जल विलेय उर्वरक आ गए हैं, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस आ गया है, इसका भी इस्तेमाल आपने किया?
1: ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी खाद है जो दानेदार हम लोग खाद देते हैं, ये तो लगभग आधा से भी ज्यादा वेस्ट चला जाता है, लेकिन जो जल विलेय का आपने नाम लिया है, जल विलेय हम आकाशवाणी से सुन करके ही, इफको कंपनी का उसमें था, उसी समय से हमने जल विलेय का प्रयोग शुरू कर दिया, और इतनी अच्छी वो खाद है कि बिना दानेदार का प्रयोग किए अपने जल विलेय से उत्पादन ले सकते हैं।
0: तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की बात करें तो एकड़ में आपकी लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: उसमें डॉक्टर साहब देखिए कि जो गोभी का सबसे महंगा और सबसे सस्ता महीना होता है, हम लोग मार्केट जाते जाते रोज अनुभव हो गया है, तो गोभी का सबसे सस्ता महीना फरवरी होता है और सबसे महंगा महीना जो है जुलाई होता है फूल
0: जी
1: गोभी के मामले में, तो हम लोग चाहते हैं कि जुलाई में ज्यादा निकालें और फरवरी में कम निकालें जो कम रेट रहता है, तो जो हम लोग ये बरसात और अक्टूबर जैसे आ रहा है तो इसमें जो हमारा गोभी निकलेगा सबसे अच्छा रेट मिलता है, तो 1 एकड़ में यदि बात की जाए तो लगभग 15-16 हजार इसमें पौधे लगते हैं,
0: हाँ
1: और जो हमारी लागत आती है तो लागत इसमें लगभग हम लोग अपना घर से भी कुछ काम कर लेते हैं, उर्वरक कम देते हैं, तो 30-35 हजार इसमें लागत आ जाता है 1 एकड़ में।
0: और उत्पादन?
1: उत्पादन तो हम जो पहले साल हम किए थे जो हमें जिले में पुरस्कार मिला था, तो 1 एकड़ से जो है 1.5 लाख रुपया शुद्ध लाभ हुआ था हमें।
0: अच्छा, आप फूल गोभी और 8-9 महीना पत्ता गोभी करते हैं तो केवल गोभी वर्गीय सब्जियों से कितना कमा लेते हैं?
1: इसमें देखिए बाजार भाव कभी फसल भी कम बेसी होता रहता है, तो इसमें वही 7-8 लाख 6 लाख मिल जाता है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है गोभी वर्गीय सब्जियों का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों से हम यही कहेंगे कि गोभी देखिए 3 महीने में पूरी तरह से खेत खाली हो जाता है, एक खेत में हम यदि चाहें तो 3 से 4 बार फसल ले लेंगे, कभी कभी हम लोग इंटरक्रॉपिंग जैसे कि गोभी हमारी जैसे 50% कट जाती है जब खेत से, तो उसी समय नया गोभी लगा देते हैं, और जैसे ही हमारी गोभी जो है थोड़ा सा सीधा होने लगती है उसी समय काट के पूरा खेत खाली हो जाता है, तो किसान भाइयों से हम कहेंगे गोभी एक अच्छी फसल है और नकदी फसल है और जल्दी तैयार होकर जल्दी पैसा देने लगती है, इसलिए सभी किसान भाइयों को गोभी की खेती करनी चाहिए।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी 84-230-76-225, 8-4-2-3-0-7-6-2-2-5, 84-230-76-225।
0: बाबूलाल मौर्या, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप पूरे साल फूल गोभी की खेती करते हैं अपने खेत पर और पत्ता गोभी की पूरे साल में 8 से 9 महीना खेती करते हैं, कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं और किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रीता बहनी, और अब बारी है अपने पंचन से बातचीत करे के। रुई कह सकते हैं उनका चिट्ठी पत्री के माध्यम से ने या फिर ईमेल के माध्यम से ने, तो चलो बता दें जाए पंचन के यहाँ पता।
4: भैया हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसान मान

0: लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रीता बहनी, और अब बारी है अपने पंचन से बातचीत करे के। रुई कह सकते हैं उनका चिट्ठी पत्री के माध्यम से ने या फिर ईमेल के माध्यम से ने, तो चलो बता दें जाए पंचन के यहाँ पता।
4: भैया हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
3: अपन जो हमारा ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
4: भैया अब अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
3: जय

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर।
2: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक बारिश और आंधी तूफान के चलते गई 15 लोगों की जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ के जोन ए में 16,726 अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का दिया आदेश। शहर के बाकी हिस्सों के अवैध निर्माण को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती, इटावा सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गुरुवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी है। भारी बारिश के चलते लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज स्कूल बंद रहे। राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जारी भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए

0: राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। राहत आयुक्त ने बताया कि पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण प्रदेश में 15 जनहानि, 4 पशुहानि तथा 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्ति घायल हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राहत आयुक्त ने बताया कि पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई है। फरुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना तथा कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राहत आयुक्त ने बताया कि नेपाल में हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत सीमावर्ती जनपदों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में नदियों के जलस्तर के बढ़ने की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपील की है कि नागरिक अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क कर सूचना दें। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 सितंबर के बाद हालात में सुधार होगा।
2: कल यानी कि 27 सितंबर को दिन चढ़ने के साथ साथ प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा में प्रभावी तौर पर कमी आने, परंतु तराई इलाकों में 27 सितंबर को भी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। तदुपरांत 28 सितंबर से इसकी तीव्रता पूर्णतया समाप्त हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश में जारी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर थम जाने की संभावना है तथा बारिश जो है 28 सितंबर से प्रदेश के तराई इलाकों में छिटपुट वर्षा तक सीमित हो जाने की संभावना है।
0: लगातार बारिश के चलते अमरोहा, जौनपुर सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में गन्ना, धान और सब्जियों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारी वर्षा से जलभराव हुआ है और तेज हवाएं चलने से फसलें खेतों में गिर गई हैं। इससे धान, गन्ना व सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने सोमवार तक बरसात जारी रहने की आशंका जताते हुए खेतों में जमा पानी निकालने को कहा है। शारदा और देवहा नदियों में बैराजों से काफी अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को कहा। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को फिरोजाबाद के ODOP ग्लास वर्क से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही

0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किस्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
2: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
1: जौनपुर के लाभार्थी नीरज गुप्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से मिले ऋण ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दिया और आज उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई यह स्वनिधि योजना है, एक छोटे मोटे रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि एक बोस्टर काम करता है और ये उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम किया है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए ऐसी योजनाओं को उन्होंने लाया जिससे गरीब लोगों का विकास हो सके।
1: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रूपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ यह कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। राहुल यादव, आकाशवाणी समाचार, जौनपुर।
0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन यूपीज जर्नी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर टू AI एंड सेमी कंडक्टर पावर हाउस सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अगला ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाना है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक बारिश और आंधी तूफान के चलते गई 15 लोगों की जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ के जोन ए में 16,726 अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का दिया आदेश। शहर के बाकी हिस्सों के अवैध निर्माण को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता, भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान।
5: आज मैं जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ वह केवल एक महान सन्यासी के जीवन का विषय नहीं है, बल्कि यह उस चेतना की कहानी है जिसने भारत को स्वयं से परिचित कराया। विषय है भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान। भारत ने संसार को केवल गणित, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म ही नहीं दिया, भारत ने संसार को मनुष्य को देखने की एक दृष्टि दी है। उपनिषदों ने कहा है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, गीता ने कर्म का संदेश दिया, बुद्ध ने करुणा का, महावीर ने अहिंसा का और आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का। लेकिन 19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब विदेशी शासन के साथ साथ भारतीय समाज ने भीतर भी आत्मविश्वास का संकट था। ऐसे समय में एक युवा सन्यासी उठता है और पूरी दुनिया के सामने कहता है, भारत कमजोर नहीं है, भारत

सोया हुआ है, और यदि भारत जाग जाए तो दुनिया को नई दिशा दे सकता है। वह युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में हुआ था। वे एक भिक्षु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शनों से परिचित कराया और उन्हें पश्चिमी दुनिया के वेदांत और अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय दर्शन को केवल ग्रंथों और मठों तक सीमित नहीं रहने दिया, उन्होंने दर्शन को जीवन से जोड़ा। उनके लिए वेदांत केवल यह जानना नहीं था कि ब्रह्म क्या है, उनके लिए वेदांत का अर्थ था मनुष्य में छिपी हुई शक्ति को पहचानना। वे बार बार मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति का बोध कराते हैं। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल व्यक्तिगत सफलता का मंत्र नहीं है, यह एक सभ्यता के जागरण का मंत्र था। विवेकानंद भारतीय चिंतन में आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और आत्मसम्मान के प्रतिनिधि बनकर सामने आए। भारतीय दर्शन की महान परंपराओं में अद्वैत वेदांत का विशेष स्थान है। विवेकानंद ने अद्वैत को आधुनिक समाज के संदर्भ में समझाया। उनके लिए यदि प्रत्येक व्यक्ति में वही दिव्य सत्ता विद्यमान है तो फिर मनुष्य मनुष्य के बीच घृणा, भेदभाव और अहंकार का क्या औचित्य है। यहीं से उनके चिंतन में मानव एकता का विचार जन्म लेता है। उन्होंने धर्म को विभाजन का साधन नहीं बल्कि एकता का माध्यम माना। उनका विश्वास था कि विभिन्न धर्मों के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य मनुष्य को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाना है। इसलिए विवेकानंद का वेदांत केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, वह एक व्यवहारिक वेदांत था। अर्थात यदि मंदिर में ईश्वर है तो मनुष्य में भी ईश्वर है, यदि पूजा में ईश्वर की खोज है तो पीड़ित मानव की सेवा में भी ईश्वर की खोज होनी चाहिए। विवेकानंद के भारतीय चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है मानव सेवा। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में बैठे भगवान को ढूंढने से पहले अपने आसपास के इंसानों में भगवान को देखो। उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी, यानी गरीब, भूखे और पीड़ित की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उनका विचार था कि यदि करोड़ों लोग भूखे हैं, अशिक्षित हैं और दुखी हैं तो केवल धार्मिक कर्मकांडों में व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाना है। इसलिए विवेकानंद के चिंतन में सेवा ही साधना है, मानवता ही धर्म है और मनुष्य का उत्थान ही भारत का उत्थान है। यह विचार भारतीय अध्यात्म को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ता है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के उन प्रमुख चिंतकों में थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीयों को अपनी विरासत पर गौरव करना सिखाया, लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। वे भारत की महानता को दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और मानवीय क्षमता को संसार के सामने रखने में देखते थे। इसलिए उनका संदेश था, पहले स्वयं पर विश्वास करो, अपने राष्ट्र पर विश्वास करो और अपनी संस्कृति की शक्ति को पहचानो। विवेकानंद का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय युवाओं पर पड़ा, क्योंकि उन्होंने युवाओं से केवल ने नहीं कहा कि देश के लिए कुछ करो, उन्होंने पहले कहा अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। विवेकानंद का मनुष्य कमजोर, भयभीत और निराश मनुष्य नहीं था। उनका आदर्श था शक्तिशाली शरीर, निर्भीक मन, स्पष्ट बुद्धि और करुणामय हृदय। विवेकानंद शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने या नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान पूर्णता को अभिव्यक्त करना। यह भारतीय शिक्षा दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधुनिक व्याख्या है। आज हम शिक्षा को अक्सर अंकों, डिग्रियों और रोजगार से जोड़ते हैं, लेकिन विवेकानंद पूछते हैं, क्या शिक्षा ने हमें चरित्रवान बनाया? क्या शिक्षा ने हमें निर्भीक बनाया? क्या शिक्षा ने हमें दूसरों के

प्रति संवेदनशील बनाया? क्या शिक्षा ने हमें अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाया? यदि नहीं तो शिक्षा अधूरी है। इसलिए विवेकानंद के चिंतन में शिक्षा, ज्ञान, चरित्र, आत्मविश्वास, सेवा, ये सारी चीजें शामिल थी। विवेकानंद के भारतीय चिंतन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिकता। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनके संबोधन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की ओर आकर्षित किया। उन्होंने भारत की उस परंपरा को सामने रखा जो कहती है सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। विवेकानंद ने हिंदू धर्म को केवल कर्मकांडों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने उसे एक ऐसी व्यापक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में समझाया जिसमें ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, योग है और मानव सेवा है। उन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ दिया। भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में विवेकानंद ने स्त्रियों की शिक्षा और उन्नति को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका विचार था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसकी स्त्रियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त न हों। वे भारतीय परंपरा में नारी की शक्ति को पहचानते थे। उनके लिए भारतीय समाज के उत्थान का अर्थ केवल पुरुषों का उत्थान नहीं था। इसलिए विवेकानंद का सामाजिक चिंतन भारतीय परंपरा और आधुनिक सुधार दोनों के बीच एक सेतु बनाता है। विवेकानंद का योगदान केवल भारत के भीतर ही सीमित नहीं था, उन्होंने पश्चिमी जगत के सामने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। वे पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टि, संगठन क्षमता और कर्मशीलता से प्रभावित थे। दूसरी ओर वे भारत की आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और मानव एकता की दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उनका आदर्श था भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की वैज्ञानिक कर्मशील दृष्टि का समन्वय, अर्थात न अंधा पश्चिमीकरण, न अंधा परंपरावाद, बल्कि वह श्रेष्ठ है उसे ग्रहण करो, जो दुर्लभ है उसे सुधारो और अपनी आत्मा को मत खोवो। विवेकानंद के विचार केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना के माध्यम से अपने विचारों को संस्थागत रूप दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता समाज से अलग होकर नहीं बल्कि समाज के भीतर रहकर भी जी जा सकती है। यही उनका व्यवहारिक वेदांत था। उन्होंने संन्यास को केवल व्यक्तिगत मुक्ति की यात्रा नहीं माना, उन्होंने संन्यास को समाज की सेवा से जोड़ा। यह भारतीय संन्यास परंपरा की आधुनिक पुनर्व्याख्या थी। यदि हम आधुनिक भारत के निर्माण की बौद्धिक यात्रा को देखें तो विवेकानंद का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। उन्होंने भारतीयों में आत्मगौरव पैदा किया, उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास पैदा किया, उन्होंने धर्म को सामाजिक सेवा से जोड़ा, उन्होंने शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ा। इस अर्थ में विवेकानंद केवल एक धार्मिक विचारक नहीं थे, वे दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, राष्ट्रवादी चिंतक थे और सबसे बढ़कर मानवतावादी के दार्शनिक थे। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय चिंतन को तीन महान संदेश दिए। पहला, आत्मविश्वास, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दूसरा, सेवा, मनुष्य की सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाओ। तीसरा, समन्वय, ज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान और संस्कृति, व्यक्ति और समाज, भारत और विश्व, इनके बीच संवाद स्थापित करो। विवेकानंद ने भारत को केवल यह नहीं बताया कि उनका अतीत महान था, उन्होंने भारत को यह विश्वास दिलाया कि उसका भविष्य भी महान हो सकता है। आज आवश्यकता विवेकानंद को केवल पढ़ने की नहीं है, आवश्यकता है विवेकानंद को जीने की, क्योंकि विवेकानंद का संदेश केवल उठो नहीं था, उसमें आगे बढ़ने का संकल्प भी था। उठो क्योंकि भारत को तुम्हारी आवश्यकता है, जागो क्योंकि राष्ट्र का भविष्य तुम्हारे चरित्र से बनेगा, और आगे बढ़ो क्योंकि लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि मानवता का कल्याण है। नर में नारायण को देखना, सेवा में साधना को खोजना,
अपने भीतर शक्ति को पहचानना और भारत को विश्व के सामने आत्मविश्वास से खड़ा करना, यही स्वामी विवेकानंद के भारतीय

0: चिंतन की सबसे बड़ी देन है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं आदित्य राय के गाए भजन और गीत। तो सबसे पहले इनके स्वर में कबीरदास की ये भक्ति रचना सुनिए।

और इसी गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीटर मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। मैं आपका दोस्त सुधांशु पांडे उपस्थित हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम चित्रपट संगीत को लेकर। दोस्तों, सुरों की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुँचती बल्कि सीधे रूह में उतर जाती हैं। कल 28 सितंबर है, यानी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की जन्म जयंती। लता दीदी का कंठ भारतीय संगीत के इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसे समय की कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। जब ये गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर भाव, चाहे वो विरह की तड़प हो, मिलन का उल्लास हो या समर्पण की गहराई हो, अपने सबसे पवित्र रूप में ढल कर हमारे सामने आता है। लता दीदी की इसी अमर साधना को नमन करते हुए आज के सफर की शुरुआत करते हैं साल 1991 के फिल्म लेकिन के इस रूहानी नगमे के साथ। गुलजार साहब की नाजुक कलम, हृदयनाथ मंगेशकर जी की धुन और लता दीदी की मखमली आवाज़ जिसमें इंतज़ार की आँच साफ महसूस हो रही है।

सितंबर को लता दीदी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम आपको उन्हीं की आवाज़ में कुछ प्यारे प्यारे गीत सुना रहे हैं। मित्रों, लता दीदी के सुरों का ये जो जादू है जो सन्नाटे को भी एक मीठा संगीत बना देता है, और जब लता दीदी की आवाज़ के साथ सिनेमाई कैनवास पर राज कपूर साहब का विज़न जुड़ता है तो बनता है एक और अमर तराना। साल 1982 के फिल्म प्रेम रोग, जिसके बोल लिखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। लता दीदी और सुरेश वाडेकर जी की युगल आवाज़ों में ये गीत प्रेम के अंकुर फूटने और उसके बिखरने के दर्द की एक अनोखी दास्तान कहता है। मित्रों, कहते हैं ना कि कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, और महसूस करने के दौरान ही कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलते देना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लता दीदी की आवाज़ में ये एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों कहते हैं कि जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, पर इंसान वही है, अच्छा इंसान वही है जो दोनों ही परिस्थितियों में सामान्य बना रहे। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम फूल को, किसी एक फूल को देखते हैं, तो जो हमारा उसका जो हम पे प्रभाव होता है वो भले ही थोड़ा कम हो, पर जब हम कई सारे फूलों को एक कतार में देखते हैं, या यूँ कहिए कि एक माला में पिरो कर देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की जो खूबसूरती है वो एक साथ हमारे सामने आ गई है। गीतों की इस कारवां में रुख करते हैं 90 के दशक के उस खास दौर की तरफ, जहां मेलोडी और नज़ाकत की एक नई परिभाषा गढ़ी गई थी। साल था 1999 और तब की फिल्म थी ताल, संगीत AR रहमान साहब का और शब्द आनंद बख्शी साहब के थे। सुखविंदर सिंह और हरिहरन के साथ जब लता दीदी की आवाज़ गूंजती है तो जैसे धड़कनों में एक नई ताजगी भर जाती है। प्रेम, वो महसूस गुजारिश जहां दिल अपनी बात कहने के लिए ठहरने की इल्तिजा करता है। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला ये

प्रेम की करते हैं, इश्क की करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक ढाई अक्षर का ये जो पूरा शब्द है, इसमें जाने कितनी यादें, कितना कुछ छिपा होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम इसी चीज़ को और गहराई से समझने पर उतरते हैं, तो हम ये भी देखते हैं और सुनते हैं कि जाने कितने चिंतक हुए हैं दुनिया भर में, जो इसी प्रेम की व्याख्या पर अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। अभी गाने में कबीर का भी जिक्र हुआ था, और ऐसे ही बहुत सारे चिंतक हैं जो प्रेम पे बहुत सारी बातें कहते हैं, लिखते हैं, पर प्रेम ऐसी चीज़ है ना कि उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो ना तो दिखावे की चीज़ है, ना तो आप उस पर बहुत ज़्यादा तटस्थ होकर बात कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ है प्रेम। मतलब प्रेम का मतलब ये है कि एक बीच का रास्ता, जहाँ कुछ भी ना हो, जहाँ पर आप बहुत तटस्थ भी नहीं हो सकते, बहुत भावुक भी नहीं हो सकते। एक बीच का जो रास्ता है, वो हमें एक अच्छे प्रेम की तरफ ले जाता है। और दोस्तों, हम कहते हैं ना कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके होने का जो क्रम होता है वो तय होता है। जब बात इश्क के जुनून, उसकी गहराई और मुकम्मल अफसाने की हो, तो साल 1976 की क्लासिक फिल्म महबूबा, जहां आनंद बख्शी के लफ्ज़ों को पंचम दा पहचान गए होंगे, यानी कि आरडी बर्मन के संगीत से सजाया गया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की जुगलबंदी में ये गीत प्रेम के हर इम्तहान को पार कर जाने का सच्चा इजहार है। तो आइए झूम उठते हैं इस दिल नशी तराने के संग। ये गीत महबूब के साथ दुनिया की खूबसूरती और उसके बिना सब सूना होने के गहरे एहसास का जश्न मनाता है।

सुरों का यह सिलसिला कभी थमता नहीं है दोस्तों, और लता दीदी की आवाज़ तो इसी जमी से आसमान तक हर दिल की धड़कन में हमेशा जिंदा रहेगी। आज के चित्रपट संगीत का वक्त यही मुकम्मल होता है। अपने प्रस्तोता को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए दिलकश तरानों का यह सफ़र। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना।

दाग दहलवी की लिखी इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 366.3 किलोहर्ट्ज़ DRM में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।

0: दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना, और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
0: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
4: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से, मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
5: PM नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
0: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ

0: साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिस

0: से मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतल्लिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने मर्दों की शॉट पुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर BLOs इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी की मुहिम SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। इसके बाद BLOs उन दस्तावेजात को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन की मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। कमीशन ने वजाहत की कि इस तरह के अफराद को इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से समात के लिए तलब नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि समात सिर्फ गैर मामूली हालात की सूरत में ही की जाएगी और वो भी तरजीहन ऑनलाइन होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार और मगरबी बंगाल समेत 20 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी का काम मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने

0: सकता है कि एसआईआर के दौरान अगर किसी शख्स का नाम शामिल नहीं हो पाता और वो अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो मुतल्लिका इंतखाबी रजिस्ट्रेंस अफसर को दरख्वास्त दे सकता है। चीफ इंतखाबी अफसर, ज़िला इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर इन वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी मुहिम का आगाज़ करेंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर की दरख्वास्त के पेश नज़र दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिसों, दावों और एतराज़ात को निपटाने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
1: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बराए मीडिया आशीष गोयल ने कहा कि आज कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 जून को तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए जारी किया गया SIR का हुक्म कमीशन की इतफाक राय पर मबनी मंजूरी के साथ जारी किया गया था, जिसका आगाज़ बिहार से हुआ। कमीशन ने यह वजाहत भी की के काबीना सेक्रेटरी को भेजा गया खत इंतखाबी कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर

0: कर दी गई है। नोटिसों, दावों और एतराजात को निपटाने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
1: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बराए मीडिया आशीष गोयल ने कहा कि आज कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 जून को तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए जारी किया गया SIR का हुक्म कमीशन की इतफाक राय पर मबनी मंजूरी के साथ जारी किया गया था, जिसका आगाज बिहार से हुआ। कमीशन ने यह वजाहत भी की कि काबीना सेक्रेटरी को भेजा गया खत इंतखाबी कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर या उसके IT डिवीजन से मुतालिक नहीं था, बल्कि यह खत इंतखाबी कमीशन में डिपुटेशन पर आए एक ऑफिसर के कामकाज से मुतालिक था। BJP ने अपोजिशन पार्टियों, बिलखसूस कांग्रेस की जानिब से SIR के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन पर आयद किए गए इल्जामात की मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJP के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंतखाबी कमीशन प्रेस के लिए एक नोटिस जारी कर चुका है जिसमें उसने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी, SIR से मुतालिक फैसले आला इंतखाबी कमिश्नर और दोनों इंतखाबी कमिश्नरों की रजामंदी से किए गए हैं। जनाब प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने एतराफ किया है कि उसकी जीत की एक वजह SIR था, क्योंकि इस अमल के सबब उन जाली वोटरों को हटा दिया गया जो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थे।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले फेक वोटर्स और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलाआत और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने आज केरलम के कोल्लम के नज़दीक कुंद्रा में सारिफीन से मुतअल्लिक भारतीय कौमी इमदाद बाहमी फेडरेशन NCCF के तहत मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में केरलम के मुस्तकबिल की खातिर बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और इमदाद बाहमी के शोबे को इसे बरूए कार लाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी के बाद से लोगों की हमेशा ये मांग रही है कि मरकज़ में इमदाद बाहमी से मुतअल्लिक एक अलहदा वजारत हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तदार संभालने के बाद इस सिलसिले में इकदामात किए गए।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी की 73वीं सालगिरह तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने खिदमत को एक मिशन में तब्दील करके एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत के जज्बे को एक तहरीक में बदला जो दुनिया भर में लोगों तक पहुँची।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों के दरमियान मंशियात के इस्तेमाल को एक अवामी सेहत के मामले के तौर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के तहफ्फुज़ के एक मामले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। वो पटना में आज बचपन की

0: खाली मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और देखभाल और तहफ़ के ज़रूरतमंद बच्चों को असर नौ मरबूत करना के मौजू पर होने वाले सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि मंशियात के इस्तेमाल से मुतासर बच्चों को तहफ़ इलाज काउंसलिंग बाज़ाबादकारी और तालीम नेज ख़ानदानी ज़िंदगी के बहाली के मौाक़े फराहम किए जाएँ। जस्टिस सूर्यकांत ने तालीमी तसलसल महफूज ख़ानदानी माहौल और बाज़ आबादकारी के अमल में देखभाल की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने पटना में मुल्क का अवलीन मुतासरीन के हकूक़ के मरकज़ का भी इफ्तिताह किया। अपनी नौइयत का ये अवलीन मरकज़ बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इमारत में कायम किया गया है। यह मरकज़ मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक़ और ज़रूरी तआवुन फराहम करेगा, जिसमें वो मुतासरीन भी शामिल हैं जो नज़र नहीं आते। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र सिंह पटेल ने आज कच्छ ज़िले में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 150 टन योमिया सलाहियत वाले ई मेथनॉल प्लांट का संग बुनियाद रखा। इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि इस प्लांट के आगाज से मुल्क भर में रोजगार के मुतअद्दिद इम्कान पैदा होंगे।
1: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की JNPA और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
0: वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज 81वीं अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली के हाई लेवल इजलास से ख़िताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली का 81वां इजलास इस मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है, एतमाद की बहाली, काया पलट के लिए इंतज़ाम करना, ऐसा अक़वाम मुत्तहदा जो सब के लिए हो। जनरल असम्बली में तमाम 193 अक़वाम मुत्तहदा मेंबर मुल्कों के सदूर हज़रात, वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा हो रहे हैं, जो बड़े बैन अल-अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहदा के मुताबिक इस इजलास में आलमगीर तआवुन को नई जिंदगी अता करने, पायदार तरक्याती अहदाफ में पेशरफ्त और अमन वक़ार और मसावात के लिए इज्तमाई कार्रवाई को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा पहल के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: परीक्षा पे चर्चा सालाना बातचीत का एक प्रोग्राम है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के दबाव से निमटने और खुशी के साथ सीखने के अमल के बारे में तलबा, असातज़ा और वालदेन से बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स तहरीक के तहत 2018 में इस मुल्कगीर मुहिम पहल का आगाज हुआ, जिसने नौजवानों को इम्तिहानात बगैर दबाव के साथ एतमाद से देने में मदद की। इस पहल ने इम्तिहानात को बोझ के बजाय मौके के तौर पर पेश किया। परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत में वज़ीर आज़म ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव से निमटने की खातिर खुद को मजबूत और बासलाहियत बनाएं।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना होता
2: है। इस प्रोग्राम ने करोड़ों भारतीय नौजवानों की सिर्फ कारकर्दगी से तवज्जो मजमूई तरक्की की जारी मुंतकिल की, जिससे इम्तिहान का दबाव कम हुआ और उनकी जहनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत ख़जाना ने ऐलान किया है कि सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक सारफीन की सहूलत के लिए कल इतवार के रोज़ खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि यह कदम इस माह की 28 तारीख से 30 तारीख तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों की जानिब से 3 रोज़ा मुजवजा मुल्कगीर बैंक हड़ताल के तनाजुर में उठाया गया है। इस हड़ताल से कबल 26 और 27 सितंबर को हफ्तावार छुट्टियां थीं। उधर सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोज़ा बैंक हड़ताल के दौरान ATM से किए जाने वाले लेन देन पर माहाना मुफ्त हद के बाद आयद होने वाले चार्जेस को ख़त्म करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल उत्तराखंड में कुछ मकामात पर तेज से बहुत

तेज बारिश और दूर दराज के मकामात पर इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर तेज से बहुत ज्यादा तेज बारिश की पेशगोई की है। भारत ने जापान में आइची नगोया एशियाई खेल 2026 में आज तमगों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और ख्वातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। ख्वातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनीखेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलीट्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉर्ट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर CP राधा कृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गंगाए डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित कर

0: लगता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहा है।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वाज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड नाउ by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai jo ministry of mines, department of science technology kafi sare haath milakar kaam kar rahe hai us par, kyunki isme problem aise hai na ki ek hota hai extraction from mines is one type of thing, second is recycling, jo apne electronic equipment hoti hai, batteries hoti hai, batteries mein lithium hota hai, uska lithium ek bar battery die ho gayi to kaise extract kare, wo kafi sari technologies develop ho rahi hai जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज्ड बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग

0: खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये फिफ्टी परसेंट हाँ ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो। मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, so it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इफ यू लुक एट इट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलार हो वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ फेलियर्स। दूसरी चीज है कि हार्डवर्क के सिवा कुछ नहीं होता है, अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्डवर्क करना चाहिए।
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है इसका एक रेफरेंस सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो वो समय को रखता है उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा, उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को। आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे, तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम

0: ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
1: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
2: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
3: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
4: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
3: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
4: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी

0: और एनवायरनमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और इन्वायरमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट इन्वायरमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
1: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
2: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के वैज्ञानिक भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉडराइज पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
2: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल

0: शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
1: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी। और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है, उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया, और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
2: जी,
1: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सू की आवाज़ निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में, तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी, और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई, और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक ना ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु, या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है। इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं, गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी। कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
3: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
0: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
3: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।

0: थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन। उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुची श्रीयार तायमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोरसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नादद्वीप रत्नाकर, लय तिलकम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंधनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। लीजिए सुनिए मिश्र जाति त्रिपुट तालम।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विच फीचर्स लय विन्यासम। फर्स्ट अ मृदंगम रिसाइटल बाय विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन, फॉलोड बाय अ डोलू रिसाइटल बाय विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया। To begin with, listen to Mridangam rendition of Vidwan Selam Shri K. Srinivasan.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर दुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया।
1: In the National Program of Music featuring Laya Vinyasam, you just heard Mridangam recital by Selam Shri K. Srinivasan. He was accompanied by Tenkasi Shri H.

0: பிரமசிவம் ஒன் த கஞ்சீரா, அந்தநல்லூர் ஸ்ரீ ஆர் ரெங்கநாதன் ஒன் த கட்டம். வயலின் ரிஃப்ரெயின் வாஸ் பை திருச்சி டாக்டர் ஆர் கோவிந்தராஜன். தி ப்ரோக்ராம் வாஸ் ரெக்கார்டட் இன் தி ஸ்டுடியோஸ் ஆஃப் ஆகாஷவாணி திருச்சிராப்பள்ளி.
1: ये आकाशवाणी है. आज रात के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम.
2: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया.
1: श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया आकाशवाणी हैदराबाद के ए ग्रेड तविल कलाकार हैं. उनकी संगीत यात्रा का प्रारंभ वर्ष 1990 में उनके प्रथम गुरु श्री वी एन लक्ष्मी नारायण के मार्गदर्शन में हुआ. बाद में उन्होंने श्री यल्लूरु श्री निवासुलु तथा श्री तिरुकडेयूर टीजी बाबू से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया. वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया. वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है. उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है. अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु.
2: श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद. हिज म्यूजिकल जर्नी बिगैन इन द ईयर 1990 under the guidance of his first guru Sri V.N. Lakshmi Narayanan. Later he received training and guidance from Sri Yellur Srinivasulu and Sri Tirukkadayur T.G. Babu. In the year 2018 he was honored with the Eminent Citizen Award of Telangana State, and in 2019 he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami Temple in Yadadri. He has had the privilege of providing tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication and profound experience, Sri V. Chinnavenkata Subbaya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying on Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
1: Aaiye ab sunte hain Sri V. Chinna Venkat Subbaya dwara Tavil Lay Vinyasam, jo Chaturashtra Jati Triput Taal mein nibadh hai.
2: Let us now listen to the Tavil Lay Vinyasam by Sri V. Chinna Venkat Subbaya, set to Chaturashtra Jati Triputa Talam.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the Tavil Laivinyasam by Sri V. Chinnavenkata Subbaya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashvani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashvani.

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन